नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 अगस्त सन 2026। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: ये है विविध भारती। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार सुनिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक

0: अतिरिक्त पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही आनंद से भरी होगी। इसीलिए कभी भी कठिन परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। ये था आज का चिंतन। वंदनवार में आइए सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती। झरोखा में लीजिए सुनिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद सुनिएगा श्री रामचरितमानस का भाग 278, 6:35 से 6:45 से सुबह व शाम, संगीत सरिता। इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार गायिका शुभा मुद्गल। इस कार्यक्रम का 12वां भाग आज आप सुनेंगे। सात बजे से लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम है राही प्यार के। आठ बजकर पंद्रह मिनट से सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 और 8:15 से चित्रलोक लेकर आएंगे। आज के फनकार आज केंद्रित होगा अभिनेत्री श्रीदेवी पर। समय सुबह व रात्रि 9:30 से। दस बजे से पिटारा में सेल्युलॉइड के सितारे में अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चैटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग आज आप सुनेंगे। ग्यारह बजे से पियानो वादक, संगीतकार, गायक पद्मश्री अदनान सामी से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। बारह बजकर पांच मिनट से लेकर आएंगे यादों की महफिल। 1 बजे से सुनिएगा सुरीला सफर। 2:30 से सदाबहार नगमे का वक्त होगा। दिन में 3 बजे से सखी सहेली। विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, साड़ियों का संसार, खंडुआ साड़ी, शब्द हमारा, विचार आपके में मेहनत, व्यंजन में ओट्स के व्यंजन,

दिनचर्या में अखबार पढ़ने की आदत, ये होंगे आज के विषय। चार बजे से पिटारा में आज के मेहमान में लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे। पांच बजे से छायागीत, 5:30 से तराने नए पुराने, 6:35 से संध्या रंजन। 7:00 से फौजी साथियों के लिए जयमाला लेकर आएंगे।

7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग। रात 8 बजे सुनिएगा हवा महल में प्रहसन आंधी, लेखक निर्देशक भृंग तुपकरी। नौ बजे से लेकर आएंगे प्रोग्राम आपके लिए। दस बजे का वक्त होगा छाया गीत का। दस बजकर 30 मिनट से ढलती जाए रात। ये थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज से आरंभ होता है श्री रामचरितमानस के पांचवें सोपान सुंदर कांड का संगीत बद्ध पाठ। मंगलाचरण के श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति की याचना करते हुए जगदीश्वर के राम रूप की वंदना की है। माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले रघुकुल मणि, शांत चित्त, शाश्वत शांति देने वाले सर्वव्यापी और सभी प्रकार के प्रमाणों से परे हैं। इस वंदना के पश्चात भक्त कवि ने अतुलित बल वाले पवनसुत हनुमान को प्रणाम निवेदित किया है, जिन्हें सुमेरु पर्वत के समान कांति प्राप्त है, किंतु जो दैत्यों का विनाश करने के लिए अग्नि रूप धारण कर लेते हैं। सागर तट पर रीछराज जांबवान के प्रेरणा भरे वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान को अपनी क्षमता और सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त हुआ।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस का भाग 278।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

वर्षा चौमासा प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। इनसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। वर्षा चौमासा।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, और कल की कड़ी में हमने शुभाजीत से सुनी थी कजरी। और जैसा मैंने कहा था कि एक और कजरी सुनने का मन है तो शुभाजी आज फिर से कजरी हो जाए।
1: जी जरूर, और कुछ ऐसी कजरी सुनाना चाहूंगी आपको और उनके बारे में बात भी करना चाहूंगी जो हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि से जुड़ी हुई बातें हैं। काशी के एक विख्यात साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी,
0: इनको और इनके नाम को कौन नहीं जानता।
1: तो उनकी बहुत सारी कजरी जो है वो उन्होंने प्रकाशित भी की और हमने उनकी रिकॉर्डिंग्स भी सुनी है। जैसे एक बहुत उनकी जानी मानी कजरी, उनकी लिखी हुई, कहनवा मानो हो दिल जाने, ये इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनी है। और विख्यात गायिका से श्रीमती गिरजा देवी जी, उनसे भी हमें सुनने को मिलती हैं ये चीजें। तो भारतेंदु जी ने तो बहुत कुछ लिखा और हर ऋतु के लिए लिखा, हर

0: उत्सव के लिए लिखा, दीपावली के लिए भी लिखा सब, लेकिन जो कजरी का उनका संग्रह है वो कुछ विशेष है। और वो उनके मित्र और अन्य जो साहित्यकार थे उनके साथ वो एक मैगजीन भी निकालते थे जिसमें कि प्रेम घन इत्यादि जो लोग थे उनकी भी कजरियां प्रकाशित होती थी और उनकी भारतेंदु जी, भारतेंदु बाबू की स्वयं जो कजरियां थी वो भी प्रकाशित होती हैं।
1: शुभा जी, जैसा आपने कल बताया कि कजरी के दंगल होते थे
0: जी,
1: तो उसके लिए भी तो ये चीज चाहिए किसे गाया जाए
0: जी। बिल्कुल,
1: तो तब ये जो प्रचलन था
0: जी
1: कि कजरी के अखाड़े, कजरी का दंगल, एक दल सुनाएगा फिर दूसरा दल सुनाएगा, तो इसमें कुछ और शब्दगत खासियत भी होगी, विशेषता होगी जो आप आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही कजरी सुनाने जा रही हैं?
0: जी, आज उन्हीं की कजरी सुनाऊंगी।
1: तो
0: और वैसे तो उनकी एक बहुत ही मतलब प्रख्यात कजरी है जो कि झूले के बारे में है कि राधे झूलन पधारो झुकी आई बदरा, वो बहुत प्रचलित है। लेकिन मुझे लगा कि एक कुछ दूसरी कजरी सुनाई जाए आपको भारतेंदु बाबू की। तो बिन सांवरे पियरवा जीय की जरन न जाए। वैसे तो भारतेंदु बाबू की जो ये पंक्तियां मिलती हैं वो केवल चार पंक्तियां हैं उनकी इस कजरी में, प्यारी झूलन पधारो झुकी आए बदरा।
1: वो कैसे हैं?
0: एक सेकंड आपको पूरी रचना सुनाती हूँ, फिर उसके बाद क्या हुआ है वो भी देखते हैं। तो ओढ़ो सुरख चुनरी तापे श्याम चदरा, ये लिखते हैं वो, देखो बिजुरी चमके बरसे अदरा, हरिचंद तुम बिन पिय अति कदरा। ये जो चार पंक्तियां हैं ये उनकी उनके संग्रह में मिलती हैं। लेकिन अब जैसे वृंदावन यदि आप जाएं या ब्रज का जो ब्रज में अगर आप जाएं तो ब्रज भाषा की में भी ये बहुत प्रचलित है, उस एरिया में भी बहुत प्रचलित है ये, और वहाँ पाठ भेद और पाठांतर काफी मिलता है। तो मंदिरों में जो कजरी गाई जाती है वो कुछ इस प्रकार की है जिसमें कि पहली जो पंक्ति है वो तो भारतेंदु बाबू वाली ही है, लेकिन उसके बाद काफी कुछ अलग हो गया है वो इस प्रकार।

0: ऐसे करके और भी अंतरे जोड़ दिए गए हैं
1: जी,
0: तो ये पाठ भेद आ गया है
1: जी। लेकिन आज जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कजरी आप सुना रही हैं वो ये नहीं है कुछ?
0: नहीं, ये तो बहुत सुनने में आती है, मुझे लगा कि एक दूसरी कजरी आपको सुनाऊं। बिन सांवरे पियरवा जी की जरन न जाए, जी नहीं बहलत प्राण पिया बिन, कीने लाख उपाय, बिन सांवरे पियरवा जी की जरन न जाए।

0: ये थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना। हमने शुभा जी से कजरी सुनी। शुभा जी, कजरी को लेके मेरे मन में कुछ एक सवाल हैं
1: जी।
0: लेकिन आज हम यहीं रुकते हैं। श्रोता मित्रों से आज्ञा चाहते हैं और आपसे भी मैं आज्ञा चाहूंगी। नमस्कार।
2: संगीत चरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

हेमंत कुमार, सुधा मल्होत्रा और मन्ना डे की आवाजों में गीत अभी आपने सुना। नरसी भगत फिल्म का नाम था। जीएस नेपाली ने इसे लिखा, रवि का संगीत।

मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में गीत अभी आपने सुना। नया दौर फिल्म का नाम था। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। ओपी नैयर का संगीत।

0: लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। भरत व्यास ने इसे लिखा, एस एन त्रिपाठी का संगीत।
1: एक आवाज जिसमें है जोश जुनून।

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे।
1: वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का।

0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।
1: Tell Mali, jump in.

सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन सुन सुन अरे बेटा सुन इस चमपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन अरे बेटा सुन इस चमपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक

0: झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ।
1: तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए संसद ने पारित किया अधिकरण सुधार विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को गर्व के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने को कहा। विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा अंतिम निर्णय। और ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। इससे पहले विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक आधुनिक स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
0: विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा।

0: गंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस बीच प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेश के सभी मदरसे भी भाग लेंगे।
1: इस अभियान से उत्तर प्रदेश के जो तमाम मदरसे वो भी जुड़ेंगे। हमने मदरसा के तमाम छात्रों से भी अपील की है, अपने प्रमुख सचिव को भी निर्देशित किया है, डिपार्टमेंट को भी निर्देशित किया है, उत्तर प्रदेश के हर मदरसे इस अभियान से जुड़े, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इस अभियान को हम ले जाएं और हर व्यक्ति देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत हो। इस अभियान का जो मकसद है उसको हम धरातल पर ले जाएंगे।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया।
2: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की नियुक्ति के लिए कल से साक्षात्कार शुरू हो गया। इस पद के लिए करीब 5,200 आवेदन आए थे, जिनकी स्क्रीनिंग के बाद 18 अभ्यर्थियों को अंतिम चरण के लिए चुना गया है।
3: राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के लिए राम मंदिर परिसर स्थित पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर में 9 लोगों का साक्षात्कार लिया गया। बाकी बचे 9 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 3 सदस्यीय चयन समिति इंटरव्यू के बाद चयनित व्यक्ति की जानकारी ट्रस्ट को सौंपेगी। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कल इस एक्सपो का अनौपचारिक शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 684 करोड़ रुपए की लागत वाली 201 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच से खलीलाबाद तक बन रही रेलवे लाइन संत कबीर नगर के विकास का आधार बनेगी।
4: जो ये सड़कें बन रही हैं, ये जो बाईपास बन रहे हैं, ये जो बस स्टेशन बन रहे हैं, बहराइच से लेकर के बांसी होते हुए खलीलाबाद तक जो ये रेलवे लाइन बन रही है, ये रेलवे लाइन ये विकास करेगी, बेहतर कनेक्टिविटी देगी। और हम लोगों ने तय किया है लैंड बैंक जैसे ही यहाँ का तैयार होगा तो हम लोग संत कबीर नगर में भी एक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर में 70 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सनोली नौतनवा गोरखपुर मार्ग से माधोपुर बंधे तक 2-लेन मार्ग का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मार्ग की कनेक्टिविटी से अब वाराणसी, लखनऊ, नेपाल, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलरामपुर आदि स्थानों पर जाने वालों को शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी।
5: अब बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमाव होता था। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग 4-लेन की सड़क से जुड़ चुका है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारे बनकर के तैयार हो भी गए हैं।
0: सावन माह की शिवरात्रि के पावन अवसर पर कल प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। बागपत के ऐतिहासिक श्री परशुरामेश्वर महादेव मंदिर, वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम और हापुड़ के श्री गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर सहित प्रदेश के

0: कई प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दर्शन पूजन कर जलाभिषेक किया।
1: जनपद हापुड़ में सावन मास की महाशिवरात्रि पर मंदिरों में सुबह से ही भगवान आशुतोष को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिससे वातावरण शिवमय बना रहा। जनपद हापुड़ के गर्मुक्तेश्वर के मुक्तेश्वर महादेव, कल्याणपुर के कल्याणेश्वर महादेव, प्राचीन शिव मंदिर सबली, सरावा के झारखंडी महादेव के अलावा जनपद के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं ने गंगा जल, बेलपत्र, आग, धतूरा, चंदन आदि से भगवान आशुतोष का अभिषेक किया। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल से जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए संसद ने पारित किया अधिकरण सुधार विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को गर्व के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने को कहा। विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा अंतिम निर्णय। और ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत जीवन मृत्यु फिल्म से अभी आपने सुना। आनंद बख्शी ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

छोटी सी बात, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, योगेश ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।

फिल्म धरती से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था। और इससे पहले जो आपने गीत सुना छोटी सी बात, उसके गायक कलाकार थे येसुदास और आशा भोसले। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, मन मोर मन

0: मस्ताना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम है राही प्यार के।

0: शाम ये सुहानी रुत मस्तानी, शाम ये सुहानी रुत मस्तानी, झूम जवानी ओ के दीवानी, मेरे पास न आ ओ हसीना
1: प्यार की बराती।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को इस वक्त आप सुन रहे थे हिम्मत फिल्म से। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

रातों का राजा इस फिल्म से अभी ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा आरडी बर्मन की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम हम है राही प्यार के यहीं संपन्न होता है।

0: कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
6: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या

0: के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देशभर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
2: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
3: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में JPSC JSSC परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, CBI जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें

0: पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
3: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बेछोरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांति मोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक, और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्ता की पहली सुर्खी है पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट, जबकि

0: मेट्रो इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे सोहम की आवाज में। सईद कादरी, संदीप श्रीवास्तव और अमिताभ वर्मा ने इसे लिखा। प्रीतम का संगीत।
1: एक आवाज जिसमें है जोश जुनून।

0: आ रही हैं विविध भारती पर
1: सुन जरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे शेखर रावजियानी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन की आवाजों में। अन्विता दत्त ने इसे लिखा, विशाल शेखर का संगीत।

बैनी दयाल की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, टू स्टेट्स फिल्म का नाम था। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत। आपको बता दें कि आज है इंटरनेशनल यूथ डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। हर साल 12 अगस्त को इसे मनाया जाता है। इसका मुख्य मकसद युवाओं से जुड़ी समस्याओं, अधिकारों और उनकी शक्ति पर ध्यान देना है। आज इस दिन दुनिया भर में युवाओं के विकास पर चर्चा होती है।

0: दिल धड़कने दो, ये था फिल्म का नाम। याशिता शर्मा, शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये था फिल्म का नाम। फरहान अख्तर और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में गीत दिल चाहता है फिल्म से हमने आपको सुनवाया। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का,

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की आवाजों में गीत वजीर फिल्म से अभी आपने सुना। रोचक कोहली का संगीत था, गुरप्रीत सैनी और दीपक रमोला ने इसे लिखा।
1: एक आवाज जिसमें है जोश।

शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में गीत आप पीके फिल्म से सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा, शांतनु मोइत्रे का संगीत। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं संपन्न होता है।

0: हस्ती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में बातें उस अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय, अपने नृत्य और अपनी खूबसूरती से हंगामा मचा के रखा था।
1: हवा!

4 बरस की थी श्रीदेवी जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार थुनैवन नामक फिल्म में काम किया था, और इसके बाद बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वो बेबी श्रीदेवी के नाम से जानी गई और केरला स्टेट का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला, और आगे चलकर कई तरह के अवार्ड्स श्रीदेवी को मिले। फिर फिल्म जूली आई, जिसमें श्रीदेवी ने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। सन 1976 बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने फिल्म संसार में कदम रखा तमिल फिल्म मुंडुरु मोडीचू के जरिए। निर्देशक थे महान निर्देशक के बालचंदर। दक्षिण भारत में श्रीदेवी का एक बड़ा ही जबरदस्त और कामयाब करियर रहा है, लेकिन यहाँ हम उस करियर की बातें नहीं कर रहे, हमें तो भाई हिंदी फिल्मों की बातें करनी है। तो आइए सन 1979 पर आते हैं, जहां श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखा। फिल्म थी 16 सावन।

0: इसकी 4 साल बाद श्रीदेवी ने जैसे मुंबईया फिल्म जगत में तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी हिम्मत वाला। श्रीदेवी के हीरो थे जितेंद्र।
1: नहीं,

हिम्मत वाला ने जबरदस्त धमाका किया। इस फिल्म के गाने बहुत चले, ये फिल्म भी बहुत चली और इसके बाद श्रीदेवी भी हिंदी सिनेमा में खूब खूब चली। आइए उस दौर की

इसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने उस दौर की कुछ नामी फिल्मों में काम किया। एक छोटी सी झलक इन गानों की, फिल्म मवाली। माना, माना।

0: फिल्म जस्टिस चौधरी।
1: मम्मिया मम्मिया प्यार की गाड़ी दे चलाओ, एक्सीलेटर और दबाओ।
2: तीन गली में मोड़ बहुत है, देखो दिल के तोड़ बहुत है, रास्ता मुड़ जाने वाला है, मेन रोड आने वाला है। स्टॉप
1: लव
2: मम्मिया
1: पम पम
2: मम्मिया
1: पम पम।
0: सन 1986 में श्रीदेवी ने फिल्म नगीना में काम किया। ये अपने दौर की एक बहुत ही कामयाब फिल्म बन गई।

मिस्टर इंडिया एक कल्ट फिल्म बन गई और इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने ये गाना भी गाया था पर्दे पर, जिसे असल में गाया कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: सन 1989 में ही श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म में काम किया। इस फिल्म पर यश चोपड़ा बरसों बरस से काम कर रहे थे और आखिरकार कई हीरोइनों के नाम की संभावनाओं की खबरों के बीच ये तय हो गया कि श्रीदेवी ही हैं यश चोपड़ा की
1: चांदनी। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
0: जब फिल्म चांदनी की बात हो तो भला इस गाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है।
2: मिले

सन 1992 श्रीदेवी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण साल बन गया। इस साल श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। फिल्म थी खुदा गवाह।

साल 1993, श्रीदेवी की एक ऐसी फिल्म आई जिसे बहुत लोग आज याद नहीं करते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इसके बाद श्रीदेवी संजय दत्त के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म गुमराह में नजर आईं। निर्देशक थे महेश भट्ट। सन 1994 में श्रीदेवी अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला में दिखी। सन 1997 फिल्म आई जुदाई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर और उर्मिला मातूंडकर।

0: जिसके बाद श्रीदेवी ने जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी रचा ली और वो फिल्म संसार से लंबे समय तक दूर हो गईं। लंबे समय तक फिल्म संसार से दूर रहने के बाद श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे पर वापसी करने का मन बनाया। साल 2011 में आई गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश।
1: My wife's English is not very good, so...
2: May I? Meera, Kevin, this marriage is a beautiful thing. It is the most special friendship. Friendship of two people who are equal. Life is a long journey. Meera, sometimes you will feel you're less. Kevin, sometimes you will also feel you're less than Meera. Try to help each other to feel equal. It will be nice.
0: इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई।

श्रीदेवी की आखिरी फिल्म बन गई फिल्म मॉम, और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। लेकिन जब तक ये घोषणा आई

श्रीदेवी की आखिरी फिल्म बन गई फिल्म मॉम, और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। लेकिन जब तक ये घोषणा आई, श्रीदेवी इस फानी दुनिया से अलविदा कह चुकी थी।

24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन हो गया। जब राष्ट्रीय पुरस्कार बांटे गए तो अपनी मां की ओर से श्रीदेवी की बेटियों ने और उनके पति बोनी कपूर ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया।

जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी अपने चाहने वालों की याद में हमेशा रहेंगी और बनी रहेंगी वैसी ही शोख, चंचल और खूबसूरत अदाकारा।

0: अभिनेत्री श्रीदेवी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: सेलुलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी।
1: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूँ, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया। हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई, है ना। अब बात ये है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
2: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
1: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
2: जी
1: है।
2: जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहाँ उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
1: ओके।
2: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे गाना, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
1: अरे अरे।
2: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर, और पूरी रात हम गाना गाते थे। और सुबह 4 उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, उनको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में, बस यूं ही करके। और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म
1: ऑडिशन से मिली थी।
2: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी। हाँ, और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
1: जिनके नाम हम नहीं लेने चाहेंगे।
2: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का। एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वही पे स्कोर किया।
1: क्या बात है।
2: की और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था। एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
1: यू हैव टू सिंग।
2: ओके।

0: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर। तो इस फिल्म ने बहुत नाम दिया।
1: हाँ,
0: और एक्सपीरियंसेस किस तरह से रहे कि इंटरनेशनल टीम के साथ काम करने के?
1: इंटरनेशनल टीम के साथ, क्योंकि योगन योगस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे वो विम वेंडर्स की फिल्म
0: टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड,
1: यस, सो एक एक नाम ऐसे आ रहे थे तो हमें लग रहा था माय गॉड, हम लोग ऐसे लोगों के साथ, और पहला ब्रेक होता है। उसके बाद जब फिल्म बन गई और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग ट्रैवल हुए, वो पहला एक्सपीरियंस था। टोरंटो से शुरू हुआ, फिर हम बर्लिन आ ले गए, और बर्लिन में हम बड़े स्टार्स से मिले, मतलब कियानो रीव्स तो वो मतलब बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस।
0: चार पांच धड़कन मिस
1: बिल्कुल टोटल, और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। अच्छा, वो पहली पिक्चर थी जहां हम लोगों को इतना मतलब वो मिला था, पैसे भी अच्छे मिले थे, लेकिन तभी भी स्ट्रगल पीरियड था। तो बर्लिन आले जब होती है ना, बहुत ठंड होती है वहां, -10। मेरे पास एक ही कोट था, कपड़े भी ठीक ढंग से नहीं थे, एक साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट और कोट भी, मतलब वहां जाके मुझे फ्लोरियन ने और एक कोट मतलब दिया, एक विंटर कोट, की दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि मेरे पास दिल्ली के ठंड वाली कोट थी।
0: बिल्कुल,
1: इंडिया में वैसे कोट्स मिलते ही नहीं थे, वो तो बाद में ब्रिक लेन करने के बाद जब मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी, देन आई अंडरस्टूड व्हाट विंटर कोट्स आर।
0: क्या एक्सपीरियंस था वो? हाँ,
1: मतलब बूट्स भी नहीं थे, चप्पल और सॉक्स पहन के गए थे बर्लिन आले अटेंड करने और मिल रहे किसे, कियानो रीव्स।
0: वाह वाह वाह,
1: पर ये
0: तो मजा है,
1: बहुत ही कमाल। और मेरे को एक्टर प्रशांत नारायणन वो भी आए थे, और हम लोगों को रिट्स कार्लटन में ठहराया गया था, तो हम तो पागल हो गए थे, मतलब लाइक द होटल इज सो ऑप्यूलेंट,
0: ग्रैंड,
1: या बट thankfully later in life this became a norm and life, like many more films happened like this, jahan matlab bahut travel maine kiya, jury mein bhi rahi, aur ye dheere dheere ye part of life ban gayi.
0: Bilkul bilkul, lekin ye jo
1: this is the beginning, yeah,
0: yes, bilkul, lekin iske baad international films aur unme awards lene aur tareef paane ka silsila lagatar chalta raha.
1: Ji,
0: to iske baad kaun si film aayi?
1: इसके बाद मैंने यहाँ 12 आना किया, मतलब इंडिया में एक फिल्म की
0: मेनन के साथ,
1: राजा मेनन के साथ ही किया एक, और फिर ब्रिकलेन हैपेंड, फिर कुछ दिन कुछ साल मुझे बहुत अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी, फिर भी देख इंडियन सर्कस करके एक फिल्म की मैंने उस समय, और उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत काम मिल रहा था, ऐसा
0: उस दौरान एक बांग्ला फिल्म भी की,
1: बिबौर, हाँ बांग्ला बिबौर भी की, फिर मुझे ब्रिकलेन मिला, और एक फ्रेंच फिल्म भी की थी मैंने, लेट द विंड ब्लो, हवा आने दे करके, फिर ब्रिकलेन के बाद मैं लंदन शिफ्ट हो गई कुछ साल के लिए।
0: ये डिसीजन किस चीज पर बेस्ड था?
1: ये एक्चुअली वहां से कुछ अच्छे काम मिल रहे थे इसलिए था, और मैंने शादी भी कर ली ये भी था,
0: ये भी था,
1: हाँ, प्यार हो गया ये भी था, दोनों चीजें थी। और मैंने वहां पे म्यूजिकल थिएटर भी किया, बहुत बड़ा वेस्ट एंड पे, यू नो, रॉयल ओपरा हाउस में, जॉसलिन पुक जिन्होंने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में म्यूजिक दिया, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे इस म्यूजिकल के, तो बहुत मजा आया काम करके। और फिर
0: कितना फर्क है इंडियन थिएटर की दुनिया और ब्रॉडवे की दुनिया में?
1: द थिंग इज, इंडिया में हमें थिएटर, मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर जैसे प्रोफेशनल थिएटर है, लाइक प्रोफेशनली चलती है वो, लेकिन हिंदी थिएटर में प्रोफेशनल थिएटर एक रेपुटरी कंपनी या ऐसे छोड़ के नहीं है, तो प्रोफेशनलिज्म जो है, क्योंकि जहां आपको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे अपनी जिंदगी बिताने के लिए कि आप सिर्फ थिएटर कर रहे हो, वो नहीं होता यहाँ, तो अगर वो नहीं होगा तो आपकी क्वालिटी जो है वो सफर करेगी। क्योंकि अभी मैं एक प्ले कर रही हूँ जो मैंने और शारिब हाशमी हम दोनों ने मिलकर लिखा, पर क्या होता है कि हमें जब फ्री वक्त मिलता है तभी हम वो कर पाते हैं, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिलते हैं इससे, ये हॉबी हो जाती है, जबकि हम अपने पूरे, मतलब अब हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर भी उसको एक लेवल के

0: प्रोफेशनलिज्म तक ला पाते हैं, बट नो वन इज फंडिंग अस,
1: तो इसके सहारे जिंदगी नहीं बिताई जा सकती।
0: या तो उसमें फर्क हो जाता है। अभी जब मैं वहां पे प्ले कर रही थी तो हम जो 8 वीक्स का रिहर्सल कर रहे थे, हमें बाकायदा फुल पेमेंट मिलता था उसका, वीकली मनी, विच यूज टू बी वेरी गुड। उसके बाद शोज जब कर रहे हैं तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उस समय। तो अगर ऐसा हो तो मैं तो जिंदगी भर थिएटर ही करूं।
1: बिल्कुल,
0: बिकॉज आपको लाइव परफॉर्मेंस में जो मजा आता है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो रिएक्शन मिलता है, वो फिल्म में नहीं मिलता है।
1: ऑफ कोर्स,
0: बट द थिंग इज वी ऑलवेज हैव टू बैलेंस इट, बिकॉज वो है ही नहीं।
1: तो लंदन में थिएटर होता रहा।
0: हाँ,
1: अलग अलग प्रोडक्शंस में काम
0: किया। और यहाँ पे भी मैंने पोस्टकार्ड्स फ्रॉम गॉड करके एक बहुत बढ़िया प्रोडक्शन किया दक्षा शेठ और उनके डांस कंपनी के साथ, इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्तियाज धारकर्स पोएम्स, और म्यूजिकल ही था वो।
1: इट वाज
0: फैंटास्टिक। तो ऐसी ऐसी चीजें करती गई मैं, बट ब्रिक लेन चेंज्ड अ लॉट ऑफ
1: एवरीथिंग। यस, मुझे ये बताइए कि लंदन में रहते हुए और कौन कौन सी फिल्में भी हुई।
0: फिल्में भी हुई, मैंने देव बेनेगल के साथ रोड मूवी की, मतलब यहाँ आना जाना। फिर और एक फिल्म की थी मॉनसून शूट आउट करके, जिसमें नवाज और मैं हैं, गुनीत ने प्रोड्यूस किया था उसको। बॉम्बे समर करके एक अमेरिकन डायरेक्टर के साथ एक फिल्म की। सो ऐसी चीजें मैं करती गई।
1: और लंदन का ये जो प्रवास है, ये कब और कैसे खत्म हुआ?
0: धीरे धीरे क्या हुआ कि इकोनॉमिक वहां पे स्टैग्नेशन आ रही थी ना, 2009-10, ये दैट वाज लाइक यू नो, जो उनका स्टॉक मार्केट पूरा गिर गया, लीमन ब्रदर्स वगैरह सब क्रैश हो गए। सो वर्क वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट देयर। आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क हियर ओनली।
1: अच्छा,
0: तो मतलब जैसे देव बेनेगल की फिल्म है, मैं रह वहां रही थी पर यहाँ काम कर रही थी काफी सारा। सारी फिल्में इंटरनेशनल टाइप की थी, बट आई वॉज डूइंग वर्क हियर, तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा वक्त ज्यादा बिताया जाए।
1: तो आप वहां से वापस आ गई?
0: वापस आ गई।
1: और
0: एक चीज थी, मैंने पहले ही कहा था मुझे ठंड पसंद नहीं। सो द वेदर वॉज गेटिंग ऑन टू माई नर्व्स, वेदर आई लाइक इट और नॉट।
1: ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो है मुंबई आपका घर हो गया।
0: जी।
1: भोपाल वाली फिल्म तभी हुई?
0: भोपाल वाली फिल्म भी लंदन में रहते हुए हुई।
1: अच्छा,
0: क्योंकि वो भी वहीं का प्रोडक्शन था। या रवि कुमार जो डायरेक्टर थे, ही इज ब्रिटिश।
1: ओके।
0: या
1: उस फिल्म में अभय आपके साथ थे?
0: नहीं, भोपाल प्रेयर फॉर रेन में मैं और राजपाल यादव थे।
1: ओके।
0: और मार्टिन शीन, कार्ल पेन, वो इंटरनेशनल फिल्म थी।
1: जी जी जी, बिल्कुल। उसका एक्सपीरियंस कैसा था?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि मतलब डॉक्टर थे एक्चुअली, और उनकी ये पहली फिल्म थी।
1: अच्छा।
0: और
1: एक ट्रेजेडी होने वाली है उसके इर्द गिर्द।
0: हाँ,
1: बुनी
0: उसकी,
1: गई।
0: हाँ।
1: फिल्म।
0: फिर मैंने अन्ना कारेनिया भी किया उस समय व्हेन आई वाज इन लंदन, जो राइट के साथ, मतलब काफी सारा वहाँ इधर दोनों का काम कर रही थी।
1: बिल्कुल मजेदार है ये। मुझे लगता है कि यहाँ भी एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की बात करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो अब बताइए कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है?
0: मुझे नूर जहान के गाने जो है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा।
1: क्या बात है, उन्हीं ने गाया है, आवाज दे कहाँ है।
0: बिल्कुल,
1: वो भी सुना जा सकता है।
0: वो भी, हाँ हाँ, वो भी सुना जा सकता है।

0: इन तमाम फिल्मों की बात हो रही है, इस बीच में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने आई लव न्यू ईयर जैसी फिल्म भी की, मीना की, सिद्धार्थ की, ये सारे इंटरनेशनल फिल्म है, इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी कहा जा सकता है। क्या बम्बैया चमक दमक वाले सिनेमा ने आपको आकर्षित नहीं किया?
1: आई लव एन वाई सनी देओल और कंगना रनावत है उसमें,
0: वो एक फिल्म थी,
1: वो मेन स्ट्रीम फिल्म ही थी। और सो आई प्ले हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड आई डंप हिम, सो आई हैड द प्लेजर ऑफ डंपिंग सनी देओल ऑन स्क्रीन,
0: डंपिंग द मेन हीरो। क्या बात है, मजे की बात है।
1: नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली, मैं तो सिद्धार्थ बहुत ही, मतलब रिचि मेहता जिन्होंने दिल्ली क्राइम डायरेक्ट की उनकी फिल्म थी, और बहुत ही अच्छी फिल्म मेकर है वो, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, दोस्त भी हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। ये सब फिल्में की मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा ही काम आता रहा मेरे पास। और मुझे लगता है कि ये ऐसा, आप हमेशा टाइप कास्ट हो जाते हो ना, कि आपको स्लॉट में ढाला जाता है कि आपने ऐसा काम किया है तो आप ऐसे ही हो। और स्पेशली आप अगर ड्रामा स्कूल से हो तो लोग ये समझते हैं आप अगर अच्छे एक्टर हो तो आप मेन स्ट्रीम काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है।
0: एक सील ठप्पा, एक टाइप कास्ट वाला
1: मामला, बट ऐसा नहीं होता है, यू नो, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स पार्च्ड की मैंने पार्च्ड
0: मैं बस उसी की तरफ आ रहा था कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म आपके करियर की है पार्च्ड, जो महिलाओं की जिंदगी पर एक तरह से कहा जाना चाहिए।
1: यस, और पार्च्ड वाज एक्चुअली अ स्टोरी दैट आई हैड रिटन इनिशियली।
0: अरे वाह,
1: यस,
0: ये तो कमाल की बात है, ये मुझे नहीं पता था।
1: हाँ
0: वाह,
1: मैंने ये लिखा था, और मैंने एक दिन, हम लोग मिले थे लीना और असीम, और हम सोच रहे थे कुछ करे, तो मैंने लीना को ये कहानी सुनाई और उसको बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि यार इसको बनाते हैं, मैंने कहा बनाओ मैं दे देती हूँ तुमको। सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड, देन आई टुक हर टू दैट प्लेस जहां से मुझे सोर्स मिला था उस कहानी का, एंड देन शी डिड हर रिसर्च एंड शी रोट द स्क्रीन प्ले, और ऐसे करके बनी वो
0: एक शानदार फिल्म।
1: हाँ, वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी है कि द जर्म ऑफ द आइडिया केम फ्रॉम मी। और
0: इसकी शूट से जुड़ी हुई कुछ बातें,
1: हाँ, तो उसके बाद राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, इन सबकी कास्टिंग हुई, एंड वी हैड like a very very interesting time, you know, shooting this together, bonding, and हमने साथ में बनाई इस फिल्म को, you know.

0: ऑल गॉट टूगेदर एंड मेड द फिल्म. रसल कार्पेंटर जिन्होंने टाइटैनिक शूट किया है, ही इज अ सिनेमाटोग्राफर ऑफ एवटार्स एंड टाइटैनिक, ऐसे बड़े बड़े फिल्मों ही शॉट द फिल्म. और ये असीम बजाज की वजह से है,
1: हु
0: इज आवर प्रोड्यूसर और लीना के पार्टनर भी हैं वो. सो असीम इज रियली इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर. वो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आए,
1: वाह,
0: एक छोटी फिल्म जो है उसका विजन बड़ा हो गया,
1: बड़ा हो गया. और फिल्म बात भी बड़ी करती
0: बड़ी,
1: है.
0: हाँ.
1: और इसलिए वो बहुत दूर तक पहुंची.
0: यस, एंड लीना टुक दैट लिटिल स्टोरी दैट आई हैड, वो उसको वहां तक लेके चली गई.
1: वाह,
0: यू नो, सो इट वाज रियली फैंटास्टिक. एंड आल्सो वर्किंग विद सच अमेजिंग एक्टर्स, सब लोग बिंदास खुल के हम लोगों ने काम किया.
1: बिल्कुल सही है. जोरम के बारे में बात कीजिए, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है.
0: हाँ, तो अगेन देवाशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मुझे उसका काम, सिर्फ काम ही पसंद नहीं है, मुझे वो इंसान बहुत पसंद है.
1: वाह,
0: ही इज अनअपोलोजेटिक अनकॉम्प्रोमाइजिंग आर्टिस्ट.
1: बिल्कुल,
0: जो
1: अपनी तरह की फिल्में करनी है
0: आज की तारीख में आपको बहुत कम मिलती है. और मैं इसलिए देवाशीष को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ. तो जब जोरम वो कास्ट कर रहा था, तो मैं एक्चुअली आबूधाबी में थी. आई वॉज शूटिंग फॉर फिल्म कॉल येल्लो बस, और वो भी एक इंटरनेशनल फिल्म है, अमेरिकन डायरेक्टर की फिल्म है. तो देवाशीष ने कहा मुझे कि मेल ड्रिवन फिल्म है, बट आई वॉन्ट यू बिकॉज दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड आई वॉन्ट समबडी हु विल जस्ट बी एफर्टलेस. मैंने कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं कर रही हूँ.
1: वाह,
0: दैट्स ऑल.
1: क्या बात है. और जोरम ने काफी नाम कमाया, काफी चर्चा बटूरी देवाशीष की तमाम फिल्मों की तरह.
0: बिल्कुल कमाल. और मुझे मनोज के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा. जीशान मेरा जूनियर है और बहुत अच्छा एक्टर है, तो इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आया. एंड मनोज भी बहुत अच्छे इंसान है.
1: बिल्कुल,
0: यू नो, इज सच अ ब्यूटीफुल पर्सन. एक्टर तो सबको पता ही है वो है.
1: बिल्कुल. तो ये आपकी जो फिल्मोग्राफी है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है. मुझे गौरी हरी दास्तान का नाम भी आपकी फिल्मोग्राफी में दिखता है.
0: बिल्कुल.
1: और मुझे लगता है कि इस फिल्म की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अनंत बहुत अलग तरह से फिल्में बनाते हैं.
0: अनंत जी के साथ मैंने 4 फिल्में की है.
1: हाँ बिल्कुल, पीछे
0: मैंने
1: भी
0: गौर हरी दास्तान से शुरू की, वो जर्नी जो है गौर हरी दास्तान से शुरू हुई. फिर रफ बुक करके मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ, और वो काफी साल तक थी, अभी शायद वो हटाई गई है.
1: अच्छा.
0: थी वो, और उसको थिएट्रिकल रिलीज भी विवेक वासवानी ने प्रोड्यूस किया था. वो एजुकेशन सिस्टम पे था, वहां पे मैंने एक फिजिक्स टीचर का किरदार निभाया था. और एक्चुअली रफ बुक में मैंने अपने आप को कास्ट कर लिया था.
1: अच्छा,
0: आनंद जी के ऑफिस में मैं उनसे मिलने गई थी, उन्होंने कहा मैं रफ बुक करके एक फिल्म लिख रहा हूँ. तो यू नो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ फिजिक्स टीचर एंड ही डज दिस एंड ही, एंड व्हाई कांट इट बी अ शी. Because he was actually offering me a role in the film, but not the central character.
1: Right.
0: So he said, okay. और मैं Dallas जा रही थी next day किसी और फिल्म के लिए. When I came back, he said कि okay, these are your dates and you come. And yeah, now it's not he, it's she. I was like, okay.
1: Wow, wow.
0: Wonderful.
1: क्या बात है.
0: देन उसके बाद मैंने डॉक्टर रखमा बाई,
1: वो भी उनके साथ ही, उनके साथ जिसका जिक्र हमने अभी पीछे किया.
0: बिल्कुल,
1: देश की पहली डॉक्टर, महिला डॉक्टर,
0: देश की प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर
1: जी. हाँ,
0: वो की मैंने. और उसमें तो बहुत ही, मतलब इट वाज अ हार्ट, क्योंकि ये जर्नी थी उसकी. और आई हैड टू लर्न ऑल्सो मराठी फॉर दैट. पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिला, तो वहां लोगों को लगा कि मैं तो पुणेचा मुलगी हूँ.
1: क्या बात है.
0: और मुझसे ऑडियंस ने आके मराठी में बातचीत करना शुरू किया, एंड आई वॉज लाइक कंफ्यूज्ड, कि मैंने कहा मैंने उतना ही सीखा
1: जो वहां दिख रहा है.
0: वहां दिख रहा है. एंड इट वॉज ओल्ड मराठी ऑल्सो.
1: यस,
0: इट्स नॉट द बोलचाल मराठी दैट इज बींग स्पोकन नाउ. अपनी बेटी को मैं ये जरूर कहती हूँ कि प्लीज आप मराठी सीखो, यू नो, बिकॉज यू आर स्टडिंग मराठी इन स्कूल, तो आपको सीखना है और आप बिल्कुल सीखो, अच्छे से सीखो.
1: क्या बात है. तो 3 फिल्मों की बात हुई ना अनंत महादेवन के साथ.
0: अभी पास्ट टेंस करके और एक फिल्म अभी मैंने उनके साथ अभी खत्म की है.
1: क्या बात है, एक ही डायरेक्टर के साथ 4 फिल्म.
0: हाँ, उनके साथ मुझे काम करने में बहुत मजा आता है. वो सब्जेक्ट हमेशा बहुत ही अलग अलग चूज करके लाते हैं, मतलब दे आर सो

0: तो पास्ट टेंस में परेश, और स्टोरी टेलर भी की फिफ्थ। यस
1: लीजिए, एक फिल्म तो छूटी गई थी।
0: आई हैव डन स्टोरी टेलर आल्सो विद आनंद जी।
1: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एंग्री इंडियन गॉडेस भी आपके करियर की एक इम्पोर्टेंट फिल्म है और बहुत फेस्टिवल्स में इस फिल्म ने अपना झंडा लहराया।
0: जी जी जी जी, एंग्री इंडियन गॉडेस एक्चुअली पूरा इम्प्रोवाइज्ड फिल्म है और वो बहुत ही कमाल का प्रोसेस था उसमें, क्योंकि वहां पैन नलिन जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था। ऑल दी एक्सेप्ट फॉर माय कैरेक्टर, एवरीबॉडी आल्सो डेवलप्ड देयर ओन कैरेक्टर्स। मैं एक्चुअली और एक फिल्म शूट कर रही थी उस समय विकास मिश्रा की, इसलिए मेरे पास डेट्स नहीं था। दैट्स व्हाई आई ज्वाइन दैट प्रोसेस लेटर। तो इसलिए मुझे नलिन ने कहा कि आई हैव टू गिव यू अ कैरेक्टर वेर यू हैव टू फिट इन एंड रिजॉल्व द थिंग्स नाउ, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, दे हैव गॉन थ्रू द 20 डेज वर्कशॉप विच आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ, आई कुडंट बी। जबकि मैं, मतलब इट वॉज अ थिंग दैट आई ऑलवेज फील अ लिटल कि यू नो आई वॉज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस और वो एंड एनी वे। सो it was like completely devised and it was a very different kind of an experience, kyunki us samay nirbhaya ka case hua tha ek saal pehle aur sab log hile hue the ki jis dhang ka violence dekha gaya, jis dhang ki matlab conversations public mein aayi, you know, everything was, so the film came out of that. So it's a personal film for all of us, Angry Indian Goddesses.
1: वाह, बिल्कुल। और उस फिल्म को अपना प्रॉपर ड्यू मिला, उसका काफी नाम हुआ उस फिल्म का। यहाँ भी एक गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कौन सा गाना होगा?
0: इस समय मुझे लगता है स्वानंद किरकिरे, मेरा दोस्त भी है और मेरे प्ले में उसने गाना लिखा भी है, उसका जो मतलब मेरा फेवरेट गाना बावरा मन।
1: हमने अब तक स्वानंद की आवाज में सुना है, अब हम तनिष्ठा की आवाज में सुनना चाहते हैं।
0: स्वानंद माफ कर दे। पर ये एनएसजी में जब हम थे ना, वो तब से गाता था।
1: तब से गाते, बिल्कुल बिल्कुल।

0: अब बातचीत को हमें उस मोड़ पर ले जाना होगा जहां आपकी जिंदगी अचानक एक दिन पूरी तरह से बदल गई। वो क्या था और वो कैसे सामने आया?
1: मैं फुल प्लेट शूट कर रही थी। फुल प्लेट की जर्नी बहुत मुश्किल रही क्योंकि प्री प्रोडक्शन में आई लॉस्ट माय फादर एंड आई वाज वेरी क्लोज टू हिम और इट जस्ट मतलब उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं फिल्म क्यों बना रही हूँ, मैं कर क्यों रही हूँ ये। और मेरे असिस्टेंट्स और मेरा पूरा टीम बहुत वरिड था कि ये बना भी पाएगी कि नहीं। एक पॉइंट पे मैंने सोचा था कि नहीं अभी नहीं कर सकते, बट देन माय प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि तनिष्ठा एडवांसेस जा चुके हैं, यू नो द होल टीम वाज वर्किंग, वो उनके सैलरीज नहीं आएंगी, इफ यू कैन आई अंडरस्टैंड बट सो आई सेड ओके गिव मी सम टाइम एंड देन विल। उसके बाद काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई फिल्म में, मतलब व्हाइल वी वर शूटिंग इट, सो इट वाज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। और फिर फिल्म खत्म हुई, शूटिंग खत्म हुई तो मुझे दूसरे और एक को प्रोड्यूसर को लाना पड़ा टू फिनिश द फिल्म। इट वाज इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल। फिर जब वो हुआ और हमने एडिट खत्म की, मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब लग रही थी एंड आई हैड जस्ट randomly gone to my gynecologist to do some checkups. लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा। और वहाँ उन्होंने मतलब स्क्रीनिंग और इन सब के बाद कहा कि मुझे स्टेज 4 metastatic कैंसर है।
0: लेकिन इसके कोई लक्षण पहले कहीं नजर नहीं आया, आप काम करती रही लगातार,
1: तो इतना फैल गया था मेरा कैंसर मेरे बॉडी में
0: और उसने कोई संकेत नहीं दिए।
1: मतलब संकेत अभी मुझे लगता है कि शायद दिए, लेकिन वो ऐसा कुछ मतलब नहीं था, यू नो दैट इट इज, सो आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: यू नो, एंड इट वाज अनरियल। और इट वाज जस्ट लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक आई लॉस्ट माय फादर टू
0: द सेम थिंग।
1: या इट वाज, ही हैड क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया CML। सो आई डिडंट नो हाउ वुड आई टेल माय मदर।
0: ओ गॉड।
1: तो मैं रिपोर्ट्स जो है, हर दिन एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकलता था, मतलब आपके लिए वो नेगेटिव है उस समय, कि हर एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ये भी। तो मैं रिपोर्ट्स गाड़ी में रखती थी और फिर ऊपर आई हैड 9 ईयर ओल्ड, अभी वो 10 साल की, 9 साल की थी, डॉटर एंड अ मदर हु हैड लॉस्ट हर हस्बैंड जस्ट लाइक यू नो ईयर बैक एंड आई डिडंट नो हाउ टू टेल हर। बट ऑब्वियसली आई हैड टू टेल हर एट सम पॉइंट। मेरी बहन न्यूयॉर्क में रहती है, मैं उसके साथ बात कर रही थी और मेरे कुछ एक बहुत अजीज दोस्त है दिल्ली में, वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी है, वैसे दोस्त है बट ही इज सच अ काम एंड अ ब्यूटिफुल पर्सन। तो मैंने मतलब आई जस्ट ब्रोक डाउन एंड आई वॉज टॉकिंग टू दीज टू पीपल।

0: मेरी बहन ने मुझे सबसे पहले ये कहा कि दीदी आई विल कम बट यू कांट डू दिस अलोन, आई एम टू फार अवे, यू आर इन टू मच ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं सिंगल हूँ, मेरी बेटी के लिए एक माँ है सिर्फ और कोई नहीं है, मेरी मम्मी के लिए भी मैं ही सपोर्ट सिस्टम हूँ, नाउ दैट माई डैड इज नॉट देयर, इमोशनली प्रैक्टिकली फाइनेंशियली देयर इज नोबडी एल्स, so how would I do this, and the expenses of my treatment is obnoxiously high.
1: Oh, oh, oh.
0: Initially insurance also refused my claim.
1: क्यों?
0: उनके बहुत ही गंदे फंडे होते हैं, उसके अंदर मैं जा ही नहीं रही हूँ, and I had to fight and fight and fight with the insurance.
1: आप जीती?
0: Yes. But the thing is there were too many battles. You know, इसमें मैं heal कैसे हूँ? Because it's also about healing and I was coming and the stress of the film.
1: वो तो रखा ही हुआ था.
0: तो it was just I had reached the rock bottom the day the insurance claim got rejected. मेरा अगले हफ्ते कीमोथेरेपी शुरू और मेरा इंश्योरेंस का मैंने जो पेपर वर्क करके दिया था, जो मांगा था मैंने सब कुछ दिया उनको, उन्होंने फिर भी मुझे मैसेज आया कि योर इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड. That day I really hit the rock bottom. कि यार इसके आगे अब अच्छा ही होगा, इससे बुरा और क्या होगा.
1: बिल्कुल.
0: But my sister told me कि नहीं, तुमको अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा. You have to tell your friends. नहीं तो if not now then when? वो सिर्फ पार्टी करने के लिए है क्या? That's when I reached out. मेरा एक girl gang है. मैंने सबसे पहले उनको बताया.
1: वो लोग कौन है?
0: शबाना जी हमारी गैंग की लीडर है.
1: इसलिए तो मैंने नाम पूछे हैं जी.
0: और उसमें दिया है, दिव्या है, तन्वी है, कोंकोना है, विद्या है, शहाना है, संध्या मृदुल है, उर्मिला मतौंदकर है, दिस वाज आवर गर्ल गैंग, ऋचा चड्डा है. तो ये इन्होंने मुझे एक्चुअली रिचा ने मुझे डॉक्टर का मतलब रेफरेंस दिया जिनके पास मैं गई फाइनली. शबाना जी आके मेरी मम्मी से मिलके, यू नो जावेद साहब शबाना मतलब टर्न बाय टर्न घर आए थे, उनको जो मतलब हौसला दिया दैट रियली सॉर्ट ऑफ मेड माय मदर्स लाइफ इजियर, कि उनको लगा कि नहीं अकेली नहीं है. एंड अपार्ट फ्रॉम देम आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो मेरे घर के आसपास रहते हैं. संजय सूरी है, ऑनीर है, मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं दीप्ति गुप्ता जो सिनेमाटोग्राफर हैं. और मतलब उसका तो मैं क्या कहूँ कि रात के 2 बजे भी उसको फोन करो तो वो आ जाती है.
1: गजब.
0: हाँ, अनुराधा शेट्टी है, सब बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो सब टर्न्स लेने लग गए मेरे हॉस्पिटल के साथ. एंड तो ये जर्नी फिर ऐसा लगा कि प्यार और मोहब्बत से ना सब कुछ जीता जा सकता है. मेरा जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रीटमेंट खत्म हुआ, अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आई एम स्टिल ऑन अ टारगेट मेडिसिन. मुझे हर
1: 1.5 साल बीत चुका है.
0: हाँ, 21 दिन बाद मुझे अभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है मेरे टारगेट मेडिसिन के लिए. बट जो मेन मतलब कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, इन सबके बाद मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे. और मुझे यही उस समय एहसास हुआ दैट हम लोग मतलब सब चीज रोबोट्स के थ्रू रिप्लेस करने जा रहे हैं, AI, बट इट इज एक्चुअली जस्ट द टच ऑफ अ रियल ह्यूमन बीइंग विच हील्स एवरीथिंग. और मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे यही कहा था कि अगर तुम पॉजिटिव रहोगे, माइंड डाइवर्टेड रहेगा, एंड इफ यू बिलीव दैट यू विल बी ओके, देन यू विल बी ओके.
1: सो
0: ये मुश्किल नहीं था बिकॉज मेरे पास ये सपोर्ट था. और मेरी बहन आई थी, मेरी बहन मेरी बेटी को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके गई कुछ महीने के लिए जब मेरा कीमो चल रहा था. एटलीस्ट 1 पर्सन इज टेकन केयर ऑफ. मैंने बोला था मेरी मम्मी को भी लेके जाओ, दोनों को ले जाओ तुम, पर मम्मी ने रिफ्यूज किया कि मैं तुम का अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी. आई थिंक दैट्स द थिंग दैट ये सपोर्ट. और फिर मैंने कीमोथेरेपी के दौरान इसी वजह से आई कुड फिनिश माई फिल्म. आई स्टार्टेड राइटिंग अ प्ले कॉल्ड ब्रेस्ट ऑफ लक.
1: प्ले का आइडिया जो शुरू होता है, ये वाली कहानी बताइए.
0: ये शारीर
1: पूरे दौर से आप
0: बिल्कुल गुजर रही जिस थी. दिन मुझे फर्स्ट मेरा रिपोर्ट आया था, मैं शारिब से मिलने

0: वाली थी और मैंने सोचा मैं मिल क्यों रही हूँ उससे, और मैंने सोचा था कैंसिल करूं, फिर मुझे लगा कि नहीं यार मिलती हूँ क्योंकि माइंड
1: डाइवर्ट होगा।
0: मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं उसको बताऊंगी कैसा रिपोर्ट में आया है, पर मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, एंड आई ब्रोक डाउन। उसने मुझे अपने पत्नी नसरीन से बात करवाया फोन पे, बिकॉज शी हैड गॉन थ्रू माउथ कैंसर,
1: वेरी डिफिकल्ट टाइम,
0: वेरी डिफिकल्ट। शी गेव मी अ लॉट ऑफ होप, और मैंने जैसे फोन रखा मैंने शाहरुख को, अभी लिखते हैं हम इसी के बारे में लिखते हैं,
1: क्या बात है।
0: एंड इमेजिन दैट वॉज इवन बिफोर आई हैड स्टार्टेड द ट्रीटमेंट, तो That evening was incredible, क्योंकि हमारा और एक दोस्त इंद्रनील जो भी मेरे फिल्म में है वो भी आया हमसे मिलने, और दैट वॉज द लास्ट इवनिंग। एक तरफ से रो रहे हैं, दूसरी तरफ से मजाक कर रहे हैं कि अरे यार क्या है,
1: देख लेंगे।
0: मेरा ही बॉडी है ना, मैं ही बॉडी को कहूंगी कि अब ठीक हो जा, अपने ही सेल्स है विच हैव गॉन रूग, इट्स अप टू मी इफ आई कैन हील। ये मतलब इट जस्ट वेंट बैक एंड फोर्थ लाइक दैट, एंड दैट्स द डे मतलब शारिब को मैंने बताया कि यार यही इसी सब्जेक्ट पे करते हैं हम अपना प्ले। फिर मेरा कीमो शुरू हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया, और जब एक ढांचा लिख लिया था मैंने, फिर शारिब और मैं मतलब हम लोग जैम करते गए और उसको आगे बढ़ाते गए, डायलॉग्स पे काम करना शुरू किया, और लास्ट कीमो साइकिल पे मैंने शारिब को बुलाया अपने कीमो हॉस्पिटल में, और वहां से एक बहुत ही कॉन्क्रीट शेप लेना शुरू किया प्ले ने।
1: क्या बात है, और इस पूरी जर्नी के दौरान वो आपने प्ले कंप्लीट भी कर लिया।
0: यस, हमने शोज भी किए अब तो।
1: पहला शो कब कहां हुआ था?
0: पहला शो G5A में फरवरी एंड में हुआ।
1: जी जी।
0: उसके बाद हम काला घोड़ा फेस्टिवल में हम लोगों ने परफॉर्म किया, लखनऊ में किया, और अभी 24 मई को रंगशीला में हमारा परफॉर्मेंस है, और फिर आगे और भी करेंगे शोज।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए,
0: हाँ
1: सुनते हैं।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: इस शो को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और जो लोग इस पूरे दौर से इस मुश्किल से गुजर चुके हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इससे?
2: तो ब्रेस्ट ऑफ लक को बहुत ही बढ़िया रिस्पांस, मतलब वी कुडंट थिंक सर्वाइवर से और ऑनकोलॉजिस्ट से और आम जनता हर तरीके के ऑडियंस से बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। जैसे मेरे ऑनकोलॉजिस्ट भी आए थे देखने और लखनऊ में बहुत फेमस ऑनकोलॉजिस्ट आए थे और उन लोगों ने भी यही कहा कि ये प्ले ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखानी चाहिए क्योंकि कॉन्वर्सेशंस अराउंड कैंसर एंड अराउंड ब्रेस्ट कैंसर अराउंड द फैक्ट दैट स्क्रीनिंग आप चाहे कितनी भी हेल्दी हो आपको क्या कब हिट करती है आप नहीं कह सकते। और ये चीज हम प्ले के तहत कहना चाह रहे हैं कि और इमोशनली कह रहे हैं क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हमने एक कहानी कही है। पर स्क्रीनिंग करवाना अगर आप 40 के हिट कर गए हो एज अ वुमन आज की तारीख में मैमोग्राफी करवाना टेस्ट करवाना ये बहुत जरूरी है। इवन इफ यू आर हेल्दी आपको पता नहीं है मैंने ये नहीं की ये गलती की मैंने क्योंकि मुझे लगा मैं तो फिट हूँ मुझे कुछ नहीं है मैं बहुत हेल्दी लाइफ लिव करती हूँ। सो बट यू जस्ट नेवर नो ये जो म्यूटेशंस क्यों होती है आज तक साइंस को नहीं मालूम। तो हम लोग बहुत सारे चर्चे करते रहते हैं कि अरे आयुर्वेदा कर लो या ये कर लो वो कर लो। हाँ उन सब चीजों से क्या होता है कि आपका जनरल हेल्थ अच्छा होता है तो प्रोग्नोसिस आपका अच्छा होता है लेकिन दैट डजंट गारंटी एनीथिंग। ये म्यूटेशंस क्यों होता है वी रियली डोंट नो साइंस डजंट नो इट। और आपको चीजों को साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू ही एनालाइज करना पड़ेगा और उस नॉलेज के बेसिस पे ही आपकी जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल इस तरह की जब लाइफ थ्रेटनिंग चीजें होती हैं तो करेज कायम रखना अपना मेंटल और इमोशनल बैलेंस कायम रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है एज अ सर्वाइवर। इतने सारे लोग जो इन चीजों से इन मुसीबतों से गुजर रहे हैं उनको आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे?
2: पहला तो ये कि मैं अपने आप को अभी भी सर्वाइवर कह सकती हूँ कि नहीं मुझे नहीं मालूम बट मैं ये मानती हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ बातचीत कर रही हूँ आज मैं अपने फिल्म को लेकर दुनिया भर ट्रैवल कर रही हूँ अपना प्ले कर रही हूँ अपनी जिंदगी जी रही हूँ अपनी बेटी को पृथ्वी में वर्कशॉप करवाने ले जा रही हूँ। आई एम लिविंग माई लाइफ एंड दैट्स ऑल आई कैन डू एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप यही कर सकते हो
1: और
2: हियर एंड नाउ कल का तो हमने ना तो आपको पता है ना मुझे ये रियलाइजेशन मुझे हमेशा से था बट अब तो मतलब ये इंटरनल है वी रियली डोंट नो। मतलब मैं एक दिन पूरा आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन द वेरी नेक्स्ट डे आई हैड अ टर्मिनल इलनेस। हाउ बिजार इज दैट। मेरे दोस्तों को जब पता चला वो सब ये कहने लगे कि टैन मतलब यू नो क्योंकि आई डोंट ड्रिंक आई डोंट स्मोक आई एम नॉट दैट यू नो सिगरेट मैंने आज तक जिंदगी में हाथ नहीं लगाया आई ईट हेल्दी आई हैव ऑलवेज बीन फिट। मेरा कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है रिप्रोडक्टिव कैंसर्स का मेरा ब्राका टेस्ट नेगेटिव है विच इज सपोज टू बी द हेरिडिटरी एलिमेंट ऑफ इट। सो हाउ देन यू जस्ट नेवर नो। तो आप वही पंडित रविशंकर ने जो कहा था ना कि जा हवार ता हवे आप अपनी जिंदगी जियो इस वक्त Here and now, मैं जब कीमोथेरेपी पे जाती थी मैं दोस्तों को बुला लेती थी वहाँ हमारे अड्डे चलते थे वहाँ कोई पोएट्री पढ़ रहा है कोई म्यूजिक सुना रहा है वो हम चुटकुले मतलब ये ताकि वो वक्त निकल जाए मेरे ट्रीटमेंट का जो पेन है बाल झड़ रहे थे मैंने शेव करवा लिए
1: और वो भी पब्लिक को दिखाया प्रॉपरली
2: यस
1: कि यस आई एम गोइंग

0: through this?
1: Yes, I lost a lot of weight. I mean, that's a part of my life. I am an artist and I experienced it. I'm experiencing different things and I will express myself through those experiences. Aur hum yahi karte hain aur yahi kar sakte hain.
0: Bilkul. Tarisha, क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स जैसी कोई चीज होती है लाइफ में, वो आपने कुछ कर रखा है कि अभी कल का क्या करना है?
1: नहीं मत कल का सिर्फ पता है क्योंकि मैं परसों दिल्ली जा रही हूँ, फुल प्लेट की एक स्क्रीनिंग है वहाँ हैबिटेट सेंटर में
0: तो क्या अगले प्ले की कोई प्लानिंग है?
1: कुछ चीजें लिख रही हूँ लेकिन वो कब आएगी, कब होगा ये पता नहीं अभी, बट आई एम राइटिंग सर्टन थिंग्स. फिल्म भी लिख रही हूँ, प्ले भी लिख रही हूँ.
0: तो एक्टिंग चलने वाली है या अभी आप डायरेक्टर हो गई हैं?
1: नहीं नहीं, एक्टिंग तो बिल्कुल चलने वाली है. अभी ब्रेस्ट ऑफ लक में तो मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ. हमने लिखा है, हम एक्टिंग कर रहे हैं. मैंने एक्चुअली लीना को रिक्वेस्ट किया कि आप डायरेक्ट कर दो. सो शी हैज डायरेक्टेड इट.
0: ओके, वाओ, बढ़िया बात है. तो अब मुझे ये बताइए कि जब आप प्ले या फिल्म या लिखना ये कुछ नहीं कर रही है, मतलब कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है, उस बीच में क्या चल रहा होता है?
1: हाँ, क्रिएटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है. फिर मैं स्विमिंग कर रही हूँ आजकल, बहुत मजा आ रहा है. तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द पूल, थोड़ा वहाँ रिलैक्स भी हो जाते हैं. बेटी भी सीख रही है, स्विमिंग सीख रही है. देन आई स्पेंड टाइम विद हर. खाना बनाने में मुझे मजा आता है और आजकल थोड़ा सा मुझे अपने डाइट पे भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तो मैं खुद अपना कुछ बना लेती हूँ.
0: क्या बनाती हूँ?
1: हाँ, मैं बोलूंगी ना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा मेरा आजकल जो हो रहा है. मम्मी कहती कि अच्छे इसको बुला लो, उसको बुला. मैंने कहा कि घर पे लोगों बुलाएंगे, खिलाएंगे क्या, क्योंकि क्यूजीन तो ये बन रहा है मेरी वजह से. अभी मेरी बेटी भी जो है वो हेल्दी सुन सुन के, उसका एक चैप्टर है साइंस में अबाउट फूड एंड विटामिन्स, उसको सब एफर्टलेसली आता है. इतना सुन चुकी है वो किस खाने में क्या विटामिन है, क्या खाने से क्या डेफिशिएंसी होगी.
0: राइट राइट, सो शी इज एन एक्सपर्ट नाउ.
1: या
0: बिल्कुल,
1: वो एक्चुअली मुझे टीज करने लगती है. अभी मम्मी पता है क्या कहेगी, ये देखो ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, इसमें पता है ये विटामिन है, वो मिनरल्स है और ये मिलेगा.
0: पहले ही बोल देती है. क्या बात है तनिषा, बहुत दिलचस्प बातचीत आपसे हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे फिर कभी बैठेंगे और फिर इसी तरह से बातें करेंगे.
1: बिल्कुल, और जाते जाते एक गाना
0: जरूर.
1: जीवन से भरी तेरी आंखें
0: मजबूर करें जीने के लिए, सफर फिल्म का ये गाना. इस गाने को इंदीवर ने लिखा है और म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी हैं.

0: तनिषा बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया चीजें शेयर करने में, एक्चुअली यहाँ आने में। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से और
0: जरूर आइए, स्वागत है।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।

வந்தே மாதரம். ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।

0: गायक संगीतकार और पियानो वादक पद्मश्री अदनान सामी से यूनुस खान की बातचीत।
1: बहुत बहुत स्वागत विविध भारती में अदनान जी, और मुझे ये बताएं कि इतना लंबा सफर म्यूजिक की दुनिया में तय करने के बाद भी जब कोई नया गाना रिलीज होता है क्या चल रहा होता है आपके दिल में?
2: वही चल रहा होता है जो पहले दिन चला था। मतलब कि जिस तरह की बटरफ्लाईज या गुदगुदियां अपने पेट में पहले दिन से थी शुरू से
1: जी,
2: वो आज भी बरकरार है और आज भी उतनी शिद्दत के साथ होती है और नर्वसनेस होती है, बेचैनी होती है कि हमारी जो मेहनत है वो लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, और बस यही दुआ रहती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आए। अब तक लोगों ने बेतहाशा प्यार दिया है जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बस दुआ यह है कि मैं उनकी जो उम्मीदें होती हैं उन पे मैं ठीक तरह से उतरूँ और उनको वो चीज़ें मैं दूँ। तो आज भी उतनी नर्वसनेस होती है, इसलिए जब मेरी नए गाने की जो वीडियो जब आप देख रहे थे तो मैं जब आपकी आपके रिएक्शंस सुन रहा था तो मैं उसी तरह से बेचैनी के साथ सुन रहा था जैसे कि मैं पहली दफा कर रहा हूँ, क्योंकि हर दफा जब आप कोई चीज करते हैं तो कोशिश ये होती है कि कोई अलग सी चीज करें, कोशिश करते हैं कि नई चीज करें, और उसके तहत कुछ पता नहीं होता कि लोगों को जो देख रहा होता है या सुन रहा होता है कि उनको वो चीज पसंद आएगी कि नहीं आएगी
1: जी।
2: तो और जितना एक और एक्स्ट्रा चीज जो होती है जो जो शुरुआत में नहीं होती
1: जी,
2: जब शुरुआत में आप जब काम शुरू करते हैं तो कोई आपका कोई पिछला गाना नहीं होता जिसमें लोग बोले कि नहीं वो ज्यादा अच्छा था, वो पहला गाना जो होता है वो कहते हैं यार वाह क्या बात है, क्योंकि कोई पुराना गाना होता ही नहीं है जिसके साथ वो कंपेयर करें। लेकिन फिर जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएं तो ये बहस शुरू हो जाती है कि कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार ये बड़ा अच्छा था, और फिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं लेकिन वो बात नहीं रही यू नो, या फिर वो बोलते हैं यार वो पिछला गाना ज्यादा बेटर था यू नो,
1: तो खुद से मुकाबला होता
2: है। हाँ फिर इंसान खुद से ज्यादा मुकाबला कर रहा होता है
1: जी।
2: तो और क्या है कि एक तरफ से आप ये कहने की कोशिश कर रहे होते हो कि यार वो उस वक्त का था उसके साथ मत कंपेयर करो, लेकिन मैं समझता हूँ लोगों के जज्बातों को भी कि क्योंकि नए गाने के ऊपर भी ये एक तरह की नाइंसाफी है, क्योंकि आप एक नए गाने को एक पुराने गाने जो आपके अंदर घुसा हुआ है
1: जी,
2: पता नहीं कितने सालों से जिसने वो एक मकाम बनाया हुआ है आपके पास, मैंने वो ओवरनाइट तो नहीं हुआ था
1: जी।
2: आज अगर जिस तरह से लोग तेरा चेहरा के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जी वाह क्या गाना है, लेकिन उसको भी वक्त लगा था
1: जी,
2: उसको भी वक्त लगा था क्या कहते हैं लोगों के दिमाग में बैठने के लिए। उस वक्त जब तेरा चेहरा आया तो उन्हें कुछ लोगों ने कहा नहीं भीगी भीगी रातों में ज्यादा बेहतर गाना था
1: जी।
2: तो मैंने कहा यार वो गाना जो है आपके अंदर आपके सिस्टम में सालों से बैठ गया है
1: जी,
2: ये नया गाना है इसको थोड़ा वक्त दो। अच्छा फिर वक्त के साथ साथ कुछ गाने जो हैं वो ज्यादा मकबूल हो जाते हैं
1: जी,
2: कुछ गाने जो हैं वो फेड आउट हो जाते हैं यू नो। अब जैसे कि एक मजे की बात ये कि मेरा गाना है नैन से नैन मिला, अच्छा जब वो रिलीज हुआ था तो किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल
1: व्हाट यू डू नॉर्मली।
2: हाँ मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कभी तो नजर मिलाओ, भीगी भीगी रातों में, तेरा चेहरा, मेरी याद रखना, एंड देन सडनली लिफ्ट करा दे
1: जी, बारिश
2: बारिश, एंड देन सडनली नैन से नैन आ जाता है जहां पे वो क्लासिकल भी है बीच में एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो शुरू शुरू में नहीं पसंद आया, लेकिन वो वक्त के साथ साथ इट बिकम अ काइंड ऑफ अ कल्ट सॉन्ग, वो बहुत पॉपुलर हो गए खासतौर पर डांस प्रोग्राम्स में एंड रियलिटी शोज में। तो वो कुछ गाने होते हैं जो बाद में अचानक उभर जाते हैं और कुछ गाने जो होते हैं वो फेड आउट भी हो जाते हैं। तो
1: ऐसे कौन से गाने हैं जो आपके दिल के करीब थे लेकिन पब्लिक से उतना खास रिस्पॉन्स शुरुआत में नहीं मिला लेकिन आपके दिल के करीब आज भी है?
2: दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक नैन से नैन
1: जी,
2: क्योंकि नैन से नैन
1: ये तो बेशक।
2: हाँ मतलब कि नैन से नैन जब मैंने बनाया था
1: जी
2: तो मैं उस गाने पे बहुत उस वक्त उम्मीदों के साथ में बैठा हुआ था कि ये गाना जो है ये एकदम लोगों को पसंद आएगा, और वो उस वक्त नहीं पसंद आया इतना, क्योंकि लोग जो गाने उससे पहले रिलीज हुए थे वो उसी एल्बम के, पहले तेरा चेहरा था, फिर मेरी याद रखना, फिर चैन मुझे आए ना गाना था, अच्छा उसके बाद फिर नैन से नैन आया। तो क्या था कि वो एकदम अलग किस्म का गाना था इन कंपैरिजन टू द प्रीसीडिंग सॉन्ग्स, तो वो कहीं पे लोगों को झटका लगा, तो क्योंकि दे वर कंपेयरिंग इट एट दैट पॉइंट इन टाइम।

दोस्तों नमस्कार, रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का रंग तरंग कार्यक्रम विशेष है। इस कार्यक्रम में आज हमने एक ऐसे कलाकार को आमंत्रित किया है जिनके गाने सुनते ही आपके पांव थिरकने लगते हैं, होठ संग संग गुनगुनाने लगते हैं। तो अब आपको बता दें, वो हैं जाने माने गायक, संगीतकार, पियानो वादक अदनान सामी। तो आइए सुने

0: with the other songs. तो वो वहां उन जॉनर्स में वो फिट नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब था. तो फिर बाद में तो मेरे अंदर थोड़ी सी मायूसी हुई, क्योंकि मैंने कहा यार ये तो होना चाहिए, यू नो इसमें राग दरबारी है, ये तो बड़े करीब है हमारे हमारे म्यूजिक में. राग दरबारी के तकरीबन सारे गाने सुपरहिट रहते हैं, राग ही ऐसा है. तो आई वॉज क्वाइट यू नो स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, यू नो. तो लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा पर ठीक है, यू नो आई मीन जो हुक्म जनता का उसको तो सर आंखों पे बंदा करता है, यू नो. तो कुछ सालों के बाद मैंने देखा कि इट वाज सडनली गेटिंग रिवाइव्ड,
1: राइट,
0: एंड इट वाज गेटिंग रिवाइव्ड फ्रॉम द रियलिटी शोज, क्योंकि उसके अंदर रिदम जो था ना वो बहुत यूनिक किस्म का रिदम था
1: जी.
0: तो वो जो डांसर्स थे उनको बेहद पसंद आ रहा था, क्योंकि वो इट लेंट इटसेल्फ टू अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इंटरेस्टिंग डांस.
1: वाओ.
0: तो वहां से अचानक वो गाना जो था
1: वापस आ गया,
0: वो वापस आया और फिर इट बिकेम वेरी पॉपुलर.
1: बिल्कुल.
0: सो मच सो कि फिर, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात, क्योंकि एक होता ना वो एक वो जो एक निग्लेक्टेड बच्चा होता है वो अचानक जो है उसको अपनी जगह मिल रही है, यू नो. तो देन आई हैड टू देन ऑल्सो इंक्लूडेड इन टू माई कॉन्सर्ट्स.
1: Yes.
0: क्योंकि अक्सर इंसान कॉन्सर्ट्स जो है वो उन्हीं गानों को शामिल करता है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं
1: जी,
0: यू नो. तो उसकी अहमियत ऐसी हो गई थी फिर, जिसकी वजह से वो फिर पॉपुलर हुआ.
1: जब आप आशा जी के साथ काम कर रहे थे
0: जी,
1: तो वो किस तरह की आपकी कैफियत थी और उनसे जुड़ी कोई यादगार घटना हमारे साथ शेयर कीजिएगा.
0: देखिए, जैसे मैंने अक्सर ये जिक्र किया है, आशा जी का और मेरा जो रिश्ता था वो एक बहुत ही अलग किस्म का रिश्ता था. एक तरफ से वो मेरी माँ का दर्जा था.
1: इसकी शुरुआत कैसे हुई है?
0: सबसे पहली मेरी मुलाकात उनसे हुई थी तकरीबन 10-11 साल की उम्र में. आई वॉज अ किड इन लंडन, और वो और पंचम दा दोनों आए हुए थे. उनका कॉन्सर्ट था रॉयल आल्बर्ट हॉल में. तो जो रिकॉर्ड भी हुआ है
1: जी,
0: उसकी रिकॉर्डिंग भी है. तो मैं उस कॉन्सर्ट में था. तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उस कॉन्सर्ट के वो हमारे फैमिली के जानने वाले थे. तो मेरी अम्मी ने उनसे कहा कि देखो हम उनसे मिलना चाहते हैं, और उनको पता था कि बेटा जो है वो बहुत म्यूजिक में है एंड ऑल दैट. तो उन्होंने उस कॉन्सर्ट के बाद उन्होंने एक मुलाकात करवाई लंदन में, क्योंकि वो कॉन्सर्ट के बाद देखो जस्ट स्पेंडिंग फ्यू डेज एज अ हॉलीडे. तो मैं वहाँ पे गया अपनी वालदा के साथ. तो मैं म्यूजिक 5 साल की उम्र से मैं बजा रहा था. तो लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में बजाता था. तो मैं अपनी कैसेट लेके गया हुआ था, कुछ रिकॉर्डिंग्स थी मेरी पियानो पे. तो आशा जी मिली. तो आशा जी को मैंने अपनी पोर्टेबल मशीन पे मैंने उनको म्यूजिक सुनाया. उन्हें बेहद पसंद आया. तो उन्होंने कहा कि एक सेकेंड ठहरो,
1: पंचम
0: ये तो मैं पंचम को मनाती हूँ, ये तुमको पंचम को भी सुनाना पड़ेगा. मैंने कहा जी ठीक है. आई यूज टू लव आरडी बर्मन. बल्कि बचपन में हम जब लिस्बन में रहते थे तो वहां पे हिंदी फिल्में जब आती थी तो मैं बस ये ढूंढ रहा होता था. लोग अक्सर हीरोज या हीरोइंस को देख रहे होते थे. मैं ढूंढता था कि बर्मन नाम कहाँ पे है.
1: वाह वाह वाह.
0: अब बर्मन नाम है तो बस ठीक है, मैं देखूंगा फिल्म. और वो यकीनन, चाहे वो मुझे अभी तक याद है, वहां पे मैंने अभिमान देखी, मैंने यादों की बारात देखी, दीवार देखी, शोले देखी, वहीं पे सब बर्मन. लेकिन मुझे एक उलझन थी कि यार ये SD और RD क्या है.
1: हाँ, बिल्कुल.
0: मुझे समझ नहीं आती, तो ना ही मुझे कोई बताए
1: जी
0: बर्मन है ना, बस ठीक है मैं देखूंगा. बाद में पता चला कि बाप बेटे. अब समझ भी आता कि भाई उनका जॉनर जो था, जो मिठास थी वो उसमें एक कॉमन DNA था.
1: यस,
0: यू नो. सो यू कुड टेल. सो एनी हाउ पंचम दा आए और मैंने उनको कैसेट सुनाई. अच्छा, उनका रिएक्शन जो था वो बड़े मजेदार था.
1: हाँ.
0: उनका रिएक्शन जो था वो थोड़ा शक्की मिजाज का था. तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा ये तुमने बजाया? मैंने कहा हाँ जी मैंने बजाया. अगर तुमने बजाया तो बहुत अच्छा बजाया. मैंने कहा अगर क्या मतलब है
1: जी?
0: अगर से मतलब कि अच्छा मैं लियो की शान के खिलाफ है कि अगर आप उसकी गुस्ताखी कर दे या फिर शक करे उसकी बात के.
1: जी जी.
0: मैं भी फिर जिद में, मैंने कहा हाँ जी मैंने ही बजाया. देन ही वुड टर्न अराउंड से हाँ हाँ अगर तुमने बजाया तो वो बहुत अच्छा बजाया. मैंने कहा जी मैंने ही बजाया. अच्छा, वो भी उनके अंदर भी एक थोड़ा सा बचपना था.
1: ही
0: वेंट इनटू द रूम नेक्स्ट डोर एंड ही ब्रॉट आउट अ पोर्टेबल कैसियो.
2: जस्ट टू टेस्ट यू।
0: हाँ, मैंने कहा उस जमाने में कैसियोस जो थे ना, उनके सब

0: से नए मेरे को नए नए निकले थे कैसियो ब्रांड से विच वर पोर्टेबल. बाद में दुनिया में बेतहाशा पोर्टेबल आ गए थे, लेकिन कैसियो वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज दैट स्टार्टेड दीज पोर्टेबल वंस. अच्छा, ही ब्रॉट आउट अ कैसियो, बजा के दिखाओ.
1: ओ हो हो हो.
0: तो मैंने बजा दिया. ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, हाँ तुमने ही बजाया.
1: क्या
0: बहुत अच्छा बजाया,
1: क्या बात.
0: यू नो, एंड दैट्स व्हेन ही वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज मी हु हैड प्लेड इट, यू नो.
1: मतलब वो इतना नायाब था.
0: जी जी जी,
1: अनबिलीवेबल हो गया था.
0: हाँ,
1: द ग्रेट पंचम के लिए बिलीव करना कि ये बच्चा जो है वो इतना शानदार बजा सकता.
0: हाँ, करेक्ट.
1: तो बचपन से आप जादू ही रहे.
0: तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे अभी तक याद है आशा जी के अल्फाज कि उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अगर तुम इसी तरह से मेहनत करो तो शायद एक दिन तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनाओ.
1: वाह.
0: तो मैंने कहा यार, मतलब कि क्या बात है, यू नो. आई वाज लाइक वाओ, यू नो, दी आशा भोसले सेइंग दिस टू मी. और देखो देखो, प्रोफेसीज भी कभी कभी कैसे निकलती है कि मेरा पहला रिकॉर्ड और मेरा पहला रिलीज इंडिया में वो उनके साथ था.
1: जी,
0: यू नो, आई मीन शी कुड नॉट हैव प्रेडिक्टेड दैट. नोबडी कुड हैव प्रेडिक्टेड दैट.
1: यस,
0: दिस वाज फेट, यू नो, एंड दिस वाज डेस्टिनी, एंड इट हैपेंड. एंड वो खुद इस बात पे हैरान है कि देखो याद है मैंने तुम्हें कहा था. एंड मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मुझे याद है. एंड आई सेड देखो, ऊपर वाले ने किस तरह से हमको इकट्ठे किया कि आपने ये बात बोली और जब मेरा पहला रिलीज हुआ तो आप ही के साथ हुआ. तो मैंने कहा ये ऊपर वाला ही चीजें तय करता है.
1: कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वाकयात हुए होंगे इस पूरे एल्बम को बनाने के दौरान, क्योंकि आशा जी वाज वेरी जॉली एज वेल एज वो बहुत मेहनत करती थी.
0: मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब हम पहले दिन जा रहे थे स्टूडियो लंदन में, तो मुझे अभी तक आशा जी यूज्ड टू बी अ वेरी, मतलब कि बहुत जॉली मिजाज की थी, बहुत हसमुख थी और बहुत बबली थी. अपने एटीट्यूड उनका बड़ा ज़बरदस्त था और एंड शी वाज वेरी टॉकेटिव, बहुत बोलती थी अलग अलग चीज़ों पे, एंड शी वाज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ. तो जिस सुबह मैंने उनको पिक किया उनके होटल से, और हमारा रास्ता जो था स्टूडियो का तकरीबन 40-50 मिनट का था. अब वो अनकैरेक्टरिस्टिकली क्वाइट, हम दोनों पीछे बैठे हुए थे और वो बस क्या कहते हैं गाड़ी में बाहर बस देख रही थी और चुप थी.
1: आपके लिए तो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया.
0: अच्छा, अब मैं, यू नो, मैं तो एकदम अननर्व हो गया ना.
1: जी,
0: मैं बहुत ज्यादा अननर्व हो गया. मैं बहुत परेशान हो गया कि मैंने कहा यार मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कोई गलत बात बोल दी, पता नहीं क्या चक्कर क्या है, इतनी क्वाइट क्यों है. क्योंकि वो कभी भी इस तरह से, मैंने उनको कभी इस तरह से इतना चुप नहीं देखा. तो देयर वाज दिस वेरी अनकंफर्टेबल साइलेंस इन द कार. अच्छा, मैंने कोशिश की थोड़ी सी पोलाइट कॉन्वर्सेशन, यू नो, ठीक ठाक सोई आप कोई चीज की, हाँ सब ठीक ठाक. देन शी वुड स्टॉप क्वाइट. मैं कुछ और मैं बात बोलूं तो एक एक अल्फाज के साथ जवाब दे दिया. ये नहीं कि कोई गुस्से में या कुछ नहीं, बस क्वाइट. थोड़ी देर गुजरी, मैंने कहा हिम्मत करके मैंने आशा जी से पूछा, मैंने कहा आशा जी क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. तो शी सेड मैं सोच रही हूँ. मैंने कहा किस बात की सोच रही हैं आप. सोच रही हूँ कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं.
1: ओ,
0: मैंने कहा क्या कर पाएंगे, मुझे अभी तक समझ नहीं आई. सोच रही हूँ कि मैं ये रिकॉर्डिंग ठीक तरह से कर पाऊंगी कि नहीं. मैंने कहा आशा जी आप ये कह रही हैं, मुझे तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप दी आशा भोसले इज स्केर्ड और फियरफुल, इफ यू आर स्केर्ड कि आपसे रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी, तो मैं फिर किधर जाऊं.
1: जी जी,
0: मैं तो बच्चा हूं आपके सामने. मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं उनको थोड़ा सा, मैं कहा आशा जी फॉर गॉड सेक, यू नो, एंड ऑल दैट. नहीं, समय तुम्हें नहीं पता, यू नो, जब भी हम नया काम पकड़ते हैं तो ये फीलिंग होती है.
1: जी,
0: तो मैंने कहा अच्छा, यू नो, मैं चुप, मैं क्या बोल सकता हूँ. तो अच्छा, उनकी बेटी वर्षा
1: जी
0: वो भी उनके साथ आई हुई थी लंदन.
1: जी,
0: तो जब हम पहुंचे स्टूडियो में, मैंने वर्षा को फोन किया. अच्छा, वर्षा के साथ मेरी बड़ी बहुत क्लोजनेस, बहुत दोस्ती थी. शी वाज अ वंडरफुल पर्सन, गॉड ब्लेस हर सोल. मैंने वर्षा को फोन किया, मैंने कहा वर्षा मुझे एक चीज बताओ, ये आशा जी शी इज वेरी क्वाइट. मैं पूरा पूरा बताया. अच्छा, वर्षा यूज्ड टू बी अ रियल चिल्ड आउट पर्सन, यू नो. आई इज लाइक दैट ओनली. मैंने कहा क्या मतलब. वो डोंट वरी अबाउट इट, वो हर नए प्रोजेक्ट से पहले उनका यही हाल होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है. और ये करके उसने ठक कर दिया. मैंने कहा यार ये ऐसी कैसी हो सकता है. श्योर इनफ, जैसे वो माइक्रोफोन के सामने गई,
1: रूप बदल गया.
0: मतलब कि इट वाज लाइक अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट.

0: Wow.
1: She suddenly became a giant.
0: क्या बात, मेटामॉर्फोसिस
1: सामने वो मेटामॉर्फोसिस लिटरली जैसे होता है ना
0: जी.
1: माय गॉड, उसके बाद जो एटीट्यूड था ना कि यू नो थ्रो एनीथिंग एट मी आई कैन टेक इट, बल्कि मैं इसको लेके इसको चबा के उसको 10 और तरीकों से, इट वाज लाइक दैट, इट वाज लाइक मैं उनको एक लाइन देता था, वो कहती मैं इस तरह भी गा लेती हूँ, मैं इस तरह भी गाती हूँ, इस तरह भी गाती हूँ. मैं कह रही यार मुझे सारे पसंद है, मैं क्या करूँ. आई वाज लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर, जिसमें वो होता है ना लालच नहीं हो जाती कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए. शी कुड इंटरप्रेट मेलोडी इन सो मेनी डिफरेंट वेज दैट शी वुड स्पॉइल यू फॉर चॉइस.
0: वाओ क्या बात.
1: एंड शी वुड स्पॉइल द म्यूजिक कंपोजर, क्योंकि बाद में आप किसी और के साथ काम करो ना, क्योंकि बस यही है.
0: तो आपको याद आए कि चॉइस थी.
1: ऑफ कोर्स, मतलब कि यार, मतलब कि इन्होंने आदत खराब कर दी. हाँ, कभी कभी दूसरों के साथ कई दफा काम करके मतलब कि यार मुझे एक और ऑप्शन है, बस यही है. तो यू नो आई मीन द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट ऑफ कोर्स अदर सिंगर्स आर ग्रेट, दैट्स नॉट अ पॉइंट, बट शी वाज अ फिनोमेना.
0: जी,
1: शी वाज अ फिनोमेना एंड दैट इज व्हाई शी वाज आशा भोसले. यू नो, जैसे लता जी ने कहा, लता जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली. उन्होंने कहा जो गाने मैं गा सकती हूँ वो आशा गा सकती है, लेकिन जो गाने आशा गा सकती है वो मैं भी नहीं गा सकती.
0: वाह,
1: आई मीन दैट कुड,
0: कितनी खूबसूरत बात,
1: कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी बात
0: जी.
1: और कौन इंसान कह रहा है, लता मंगेशकर. दैट्स अ ह्यूज थिंग एंड दैट्स प्रोबब्ली वन ऑफ द अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट्स शी कुड हैव गॉटन फ्रॉम एनीवन.
0: जी,
1: तो दैट्स इज व्हाई शी वाज आशा भोसले. लेकिन मजे की बात, ये तो एक किस्सा था, एक और बड़े मजे का किस्सा जो था
0: जी,
1: वो इसी प्रोजेक्ट में था. अब हम लंदन में रिकॉर्ड कर रहे हैं. अब हमारा कल्चर और ब्रिटिश कल्चर या यूरोपियन कल्चर जो है वेस्ट का, वो बड़ा डिफरेंट है. इन द सेंस कि हमारा जो एक ट्रेडिशन है हमारे कल्चर में, जिस तरीके से हम बड़ों की इज्जत करते हैं, हम या तो जी लगा देते हैं, या फिर अगर हमारे माँ बाप के अगर दोस्त हों तो वो ऑटोमेटिकली अंकल बन जाते हैं या आंटी बन जाते हैं. यू नो व्हाट आई मीन. तो हम इस तरह की तहजीब जो है हमारे कल्चर में बहुत अंदर है कि हम सबको बहुत इज्जत प्यार के साथ. इसका ये मतलब नहीं कि वेस्ट जो है वो अगर नाम से पुकारते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि वो उनकी इज्जत नहीं करते, बस वहां का ट्रेडिशन अलग है.
0: जी,
1: यू नो. तो अच्छा, अब क्या था कि मैं तो जानता हूं कि हमारा ट्रेडिशन क्या है. अब आशा जी हैं और या फिर आशा आंटी हैं या आशा ताई हैं या जो भी जो हमारे अब जैसे मेरी बेटी मदीना 9 साल की है, वो आशा जी को आशा दादी बुलाती है.
0: वाह,
1: यू नो,
0: क्या प्यारी बात.
1: तो हाँ, तो द पॉइंट इज कि ये हमारे अंदर एक चीज होती है. अब अगर मेरे कोई कॉलीग है तो वो उनको अंकल बुलाएगी या काका बुलाएगी या व्हाटएवर. तो ये चीजें हमने सिखाई, हमारे ट्रेडिशन में है, विच आई थिंक इज अ ब्यूटीफुल थिंग.
0: जी,
1: अच्छा, अब क्या हुआ कि पहली दफा आशा जी मेरे साथ रिकॉर्ड कर रही है लंदन में. तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा यार आशा जी कम्स फ्रॉम एन ओल्ड स्कूल ऑल्सो. मुझे बाद में पता चला था शी वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पीपल आउट देयर, यू नो व्हाट आई मीन. लेकिन मुझे इतना नहीं पता था उस वक्त. तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार ये सारे बंदे जो हैं जो इंजीनियर्स और ये जो सारे जो काम करते हैं, तो सब गोरे हैं, तो ये तो बिल्कुल फट से क्या कहते हैं फर्स्ट नेम बेसिस पे आ जाते हैं बेतकल्फी के साथ. अब उसका ये मतलब नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनका तरीका ही ऐसा है, उनका ट्रेडिशन ऐसा है. लेकिन मैंने कहा अगर आशा जी माइंड कर जाए तो फिर तो मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी. मैंने तो रिकॉर्डिंग करनी है उनके साथ अगले हफ्ते, एक मतलब पूरे हफ्ता भर रिकॉर्डिंग करनी है. तो अगर उनका मूड पहले दिन ही खराब हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा. तो उन्होंने पूछा है, अच्छा मुझे सैमी बुलाते थे क्योंकि अदनान उस वक्त जरा मुश्किल था. ऑलराइट सैमी, व्हाट्स योर नेम. आई सेड लिसन शी इज अ लेजेंड. या आई नो, आई नो यू टोल्ड अस बिफोर शी इज अ लेजेंड. या बट व्हाट्स योर नेम. मैंने कहा कि यार अगर मैं उनको बोलूंगा आशा भोसले, हे आशा, यू नो. मैंने कहा यार ये तो ये जो दिक्कत हो जाएगी अगर वो माइंड करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा.
0: जी.
1: तो मैंने कहा हर नेम इज आशा जी.
0: वाओ.
1: तो ही सेड बट व्हाट्स द फर्स्ट फुल नेम. आई सेड हर नेम इज आशा जी भोसले.
0: व्हाट अ ट्रिक.
1: हां, तो उन्होंने कहा आशा जी भोसले. आई सेड या ओके ओके फाइन. और वही हुआ, नाम फर्स्ट नेम पे ही बुलाना था ना उन्हें. तो जैसे आशा जी एंटर हुई, क्या कहते हैं स्टूडियो के अंदर, हाय आशा जी, इट्स एन ऑनर टू मीट यू. अच्छा, आशा जी जो थी बड़ी इंप्रेस्ड हुई
0: जी और
1: मेरी तरफ. उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये हमारी परंपरा को कितना अच्छा जानते हैं. मैंने कहा बस देख लो आशा जी. आशा जी, कैन यू जस्ट से दैट वन मोर टाइम अ लिटिल लाउडर प्लीज. कितने तहजीब वाले हैं ना. वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने सब, आई विल मेक इंडियन टी फॉर यू. तो शी वेंट इनटू द किचन, शी मेड कड़क चाय, टिपिकल कड़क चाय सबके लिए, और वहां से शुरुआत हुई हमारी रिकॉर्डिंग की. एंड बाद में बड़े सालों बाद मैंने फिर आशा जी को वो किस्सा सुनाया, पता कि वो कैसे हुआ. बड़े

0: said, "Anna, no, she told me this." And she herself said to me, "Sami, is tara se, main janti hu unka culture. Maine bahut kaam kiya unke saath. Main janti hu ki wo is tara se." Maine kaha, "Mujhe to nahi pata tha na."
1: Ji.
0: To main to ab chah raha tha ki aap kisi bhi tarike se offend ho jaye kisi tarike se. Ki hota hai ki bhai kabhi kabhi kuch log jo hai wo bura maan jate hain. To she said, "Nahi, nahi, main is tara ki cheezon pe bura nahi maanta. Maine to zindagi mein aise aise log dekhe jo aise aise izzat karte lekin piche se chhura maar dete. To naam se kuch nahi hota." नियत से होता है, जो बहुत बड़ी बात है, जो सच बात भी है. तो बहुत तरह की बहुत सारी चीजें थी. अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक देयर वर मेनी मेनी थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम हर. जैसे मैंने कहा ना कि वो एक माँ का दर्जा रखती थी मेरे दिल में, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, ना सिर्फ संगीत के बारे में, ना सिर्फ माइक्रोफोन के सामने आने की जो जो जो टेक्निक्स होती हैं, लेकिन जिंदगी के बारे में बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया.
1: क्या
0: बहुत छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें उन्होंने मुझे सिखाई जो अक्सर बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी जो कहावतें थी वो बहुत अनमोल थी और आज भी मेरे दिल में बसती हैं. और यू नो, बहुत कुछ सीखा और बहुत प्यार वाली थी. शी वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन.
1: यस,
0: जो थी वो दिल के सामने और शक्ल पे दिखता था उनका. मुझसे लड़ती भी थी.
1: अच्छा.
0: ओ एंड हाउ, मतलब कि वो मेरे साथ लड़ती भी थी. अगर मैं लेट्स से दो चार महीने अगर मैंने फोन ना किया किसी वजह से या विजिट नहीं किया, तो मतलब कि बरस जाती थी.
1: ओ.
0: अच्छा, वक्त आया. अच्छा, आगे. अच्छा, अब आज कैसे याद आई. फोन गलती से तो नहीं लगा दिया. सार्कैज़म टू द कोर. एंड देन शी वुड गिव इट टू मी एंड आई वुड जस्ट सिट देयर से, अच्छा अच्छा जी, आप बोलिए जो आपने बोलना है. अच्छा, फिर मैं जब उन्होंने कहीं पे पॉज किया तो मैंने कहा, हो गया. हाँ, हो गया, मैं ठीक हूँ, अब बोलो तुम्हें क्या कहना है.
1: जिनसे वो प्यार करती थी उनके लिए खाना भी बनाती.
0: ऑफ कोर्स. एंड यू नो शी वुड, वो ताना भी मुझे देती थी इस बात का, तुम भूल गए हो ना, रात के 12 बजे कभी कभी आते थे, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए पराठे और ऑमलेट बना के तुम्हें देती थी. एंड दैट इज अ फैक्ट. She did.
1: क्या बात है.
0: You know, so you know, she would love to, like I said, she was motherly, you know, and उनके साथ कोई तकलीफ नहीं था.
1: जी.
0: उनके साथ वही अपनापन था. और वो भी कई दफा, she used to also be awake till late, तो कभी कभी मैं अगर उस साइड पे होता था तो मैं अचानक आ जाता था, तो उन्हें सबसे पहले पूछ, खाना खाया तुमने कि नहीं. मैंने कहा, नहीं खाया. अच्छा, बैठो. नहीं, जो भी उस वक्त किचन में था, अगर और कुछ नहीं तो वो ऑमलेट और पराठा बना देती थी. यू नो, लाइक आई सेड, शी वाज वेरी मदरली. तो वो दिल से सब कुछ करती थी, जो भी था दिल में था.
1: जी, you know? कितने प्यार से आपने उन्हें याद किया है, कितनी शिद्दत से याद किया है, ये महसूस हो रहा है.

0: जब आप म्यूजिक देते हैं उसमें भी वो प्यार और वो शिद्दत नजर आती है। खासतौर पर मैं उस फिल्म का जिक्र करना चाहता हूँ जिसका जिक्र लोग कम करते हैं, लकी नो टाइम फॉर लव।
1: जी,
0: जितने
1: जी.
0: मीठे और प्यारे गाने आपने बनाए हैं।
1: थैंक यू।
0: आपने और क्यों नहीं किया ऐसा काम?
1: इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा सुस्त हूँ,
0: लगता नहीं आपको देख के।
1: मेरा मतलब है कहने का कि अगर आप मेरा डिस्कोग्राफी अगर आप देखोगे तो आपको
0: देर देर से आते हैं।
1: हाँ, और दूसरी चीज ये कि मेरे में आपको ज्यादा इफ यू कंपेयर इट टू अ लॉट ऑफ अदर म्यूजिक कंपोजर्स इन हिंदुस्तान, मेरा बॉडी ऑफ वर्क जो है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना उनका है। लेकिन एक चीज जो आपको नजर आएगी, यू विल फाइंड अ वास्ट बॉडी ऑफ वर्क ऑफ अलग अलग किस्म के जॉनर्स। मैंने शुरुआत की इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की एज अ पियानिस्ट, एज एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पियानिस्ट।
0: वहां भी जाकिर भाई जैसे लोगों के साथ बजाया।
1: जी, तो मेरा सबसे पहला प्यार जो था वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक था और है। अच्छा, हकीकत ये है, मेरे होते ना कि बचपन की जो एम्बिशंस होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, उसमें सिंगर बनने का कोई इरादा नहीं था।
0: ओके,
1: आई वॉन्टेड टू जस्ट बी अ पियानिस्ट एंड अ कंपोजर।
0: जी,
1: गायकी जो थी वो मेरे अंदर कभी वो ख्वाहिश नहीं थी। गाना मैं इसलिए मैंने गाना शुरू किया क्योंकि हर म्यूजिशियन जो है गुनगुनाता तो है। तो क्या होता था, मैं जब कोई ट्यून कंपोज करता था तो उसका डेमो बनाता था।
0: जी,
1: अच्छा, डेमो में मैं खुद ही गा देता था,
0: जाहिर है।
1: फिर बैठ के मैं फैंटेसाइज करता था, क्या किशोर दा अगर गाएंगे तो क्या बात होगी, या रफी साहब अगर गाए तो क्या बात होगी। अच्छा, रफी साहब या किशोर दा, मैं कहाँ बैठा हूँ, लंदन बैठा हूँ या मैं जिधर भी बैठा हूँ, मैड्रिड बैठा हूँ, अब वहाँ पे मेरा क्या एक्सेस है उनके साथ। और फिर उसके थोड़ी देर कुछ अरसे बाद तो उन सब का भी इंतकाल हो गया। तो मैं एक्चुअली गायकी में इसलिए पढ़ा क्यों, मैं अपने गाने इसलिए मैंने गाने शुरू किए क्योंकि और कोई गाता नहीं था। तो मजबूरी के तहत मैंने खुद गाना शुरू कर दिया। और जब भी मैं रिकॉर्ड करता था तो मैं कहता था कि यार ये गाना जो है ना, ये अगर फलाना सिंगर गा, तो थोड़े अरसे बाद लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि यार लेकिन तुम्हारी आवाज में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम तो अपनी आवाज में रखो।
0: जी,
1: तो जब मुझे ऐसे लोगों ने मुझे कहना शुरू किया, सवाय मैंने कि मेरी वालदा के अलावा, क्योंकि माँ के लिए तो सबकी आवाजें अच्छी होती है ना, अपने बच्चों की हर चीज अच्छी होती है। तो लेकिन जब क्या कहते हैं दूसरों ने कहना शुरू किया तो थोड़ा सा हौसला बढ़ा मेरा। तो उसमें फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैं गायकी में आया। तो मेरा जो बॉडी ऑफ वर्क है उसमें इंस्ट्रूमेंटल इंडियन क्लासिकल भी है, फ्यूजन भी है, वर्ल्ड म्यूजिक, देन इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी है, और फिर फिल्म म्यूजिक भी है। तो सिर्फ एक तरह का म्यूजिक नहीं है, एक जॉनर में म्यूजिक नहीं है मेरे। यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड मीडियम्स, इंस्ट्रूमेंटल हो
0: ऑफ कोर्स
1: यू नो एंड ऑल दैट। तो वो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, लेकिन क्वांटिटी ऑफ ईच

0: देम माइट नॉट बी एज मच. तो मेरा ये था कि लकी का म्यूजिक मैंने किया, मैंने कुछ और फिल्मों का भी किया, लेकिन फिर मैंने एक और भी चीज महसूस की. मैंने ये अक्सर देखा कि कभी कभी, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, कि बड़ी मेहनत करते हो एक म्यूजिक पे, एक साउंड ट्रैक पे, और फिल्म फ्लॉप हो जाती है.
1: जी,
0: तो क्या होता है कि एवरीथिंग गोज डाउन विद द शिप. अब क्या है कि वो गाना, जो गाने हैं, वो आपने बेशक बेहद अच्छे कर दिया हो, मगर उनको मौका ही नहीं मिला उभरने का, क्योंकि फिल्म जो थी वो पहले दिन ही डूब गई थी. तो अब आप भी उसके साथ ही डूब गए, आपका म्यूजिक भी डूब गया, और फिर किसी ने उसको सुना ही नहीं. तो ये मेरे लिए बड़ी मायूसी की बात थी, क्योंकि मैं बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ, आई गेट वेरी इमोशनली अटैच टू एवरीथिंग दैट आई डू. आई डोंट माइंड कि मैंने अगर कोई इंडिपेंडेंट गाना बनाया और उसको ठीक तरह से लोगों को मौका मिला उसको सुनने के लिए, और अगर लोगों को नहीं पसंद आया, नो प्रॉब्लम, कम अज कम सुना तो सही.
1: जी,
0: उसने कम अज कम थोड़ी सी रोशनी तो देखी कि भाई आपको मौका तो मिला उसको ना पसंद करने का, लेकिन अगर आपने सुना ही नहीं
1: तो अफसोस होता है.
0: तो फिर अफसोस होता है ना, जंगल में मोर नचा किसने देखा.
1: जी, लेकिन अगर लकी की म्यूजिक की बात की जाए, आपका फेवरेट क्या है?
0: अच्छा, लकी की बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ.
1: जी जी,
0: वो फिल्म भी फ्लॉप हुई थी,
1: लेकिन वापस रिवाइव हुई.
0: नहीं, लेकिन उसकी वजह पता क्या?
1: जी,
0: इसमें आई हैव टू गिव क्रेडिट कि जो प्रोड्यूसर थे, व्हिच वाज भूषण कुमार, ही कुड सी दैट इस मूवी में गड़बड़ है.
1: जी,
0: अच्छा, उस जमाने में सीडीज और कैसेट्स का जमाना था, और गाने बड़े अच्छे शूट हुए थे
1: बहुत.
0: हाँ, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि फिल्म की रिलीज को डिले कर दिया, और उन्होंने गानों को भरपूर तरीके से उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया, और उस प्रमोशन की वजह से सीडीज और कैसेट्स जो थी वो
1: खूब चली.
0: अच्छा, जिस दिन वो फिल्म रिलीज हुई, अनफॉर्चुनेटली द फिल्म डिडंट डू वेल.
1: जी,
0: ठीक है, इट डिडंट डू वेल फॉर व्हाटएवर रीजन, इट वेंट डाउन. Immediately it affected the
1: sales of the music,
0: but by that time wo par ho chuke the.
1: Ji ji ji,
0: they were already declared a super hit because the people loved the songs. Theek hai na? To ab that was one of those very few examples in history, musical history keh lo, whatever, ke jahan par the movie didn't do well but the soundtrack did really really well.
1: Yes, log aaj bhi yaad karte
0: hain. Ha, log aaj bhi yaad karte hain. Halanki kabhi kabhi aisa bhi hota hai. Ab jaise ki Panjam Da ka Shole.
1: जी,
0: he got the maximum amount of awards and sales because of Shole. But frankly speaking, even he used to acknowledge that Shole is not my best piece of work.
1: Of course, that's the truth.
0: Yeah, and that's the truth. And he used to also say it.
1: जी,
0: but because the film was such a colossal hit, that it automatically helped
1: everything. Yeah.
0: अच्छा, अगर आपको याद हो लगान पिक्चर, अगर आपको याद हो जब वो शुरू में उसका साउंड ट्रैक जब रिलीज हुआ तो किसी को समझ नहीं आ रही थी उसका.
1: जी,
0: एंड इट वॉज, यू नो, इट वॉज, people were confused ki kis tarah ke gaane hain, kis tarah ke, they were not working. The movie released and it became a colossal hit of its time, and overnight the music suddenly became a sensation because of the visual and the story line attached to the songs. They were very situational songs, so now people understood those songs. They understood the context,
1: right?
0: And suddenly people then started to listen to the songs. अच्छा, आई लव द सॉन्ग्स इवन बिफोर द मूवी वाज रिलीज्ड.
1: जी,
0: क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि गाना जो है उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए.
1: वो एक सेपरेट एंटिटी,
0: वो एक सेपरेट, मैं हमेशा उसको ऐसे देखता हूँ. मैं कहा यार, क्योंकि देखो फिल्म जो है वो फेड आउट हो जाती है.
1: जी,
0: गाने जो है वो रहते हैं, क्योंकि दे आर वेरी इजी. यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग एनीवेयर ना,
1: राइट?
0: यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग इन योर हेडफोन्स, इन ऑन योर फोन, इन योर कार, एवरीवेयर. यू कांट वॉच अ फिल्म एवरीवेयर. ऑफ कोर्स टुडे you have the mobile phones and all
1: still,
0: that, lekin phir bhi
1: ji,
0: you don't have the time to watch a film all the time, but ji, music stays with you, music always stays with you, and it's very convenient. So I always feel that a song should be, yes, it should be situational, it should help the film's narrative, lekin it should stand on its own two feet,
1: right? Very.
0: Ab jaise kuch gaane aise hain jo bade khoobsurat bane hue hote hain, lekin uski picturization itni zyada achhi nahi hoti. Kabhi bhi banda kehta hai yaar, काश मैंने पिक्चराइजेशन नहीं देखी होती तो बेटर होता.
1: पल पल दिल के पास
0: मुसाफिर हूँ यारो.
1: जी,
0: मैं जिंदगी भर मैं उसको बचपन से सुनो, मैंने सडनली देखा यार ये तो टांगे पे ऊपर गाना शूट हुआ है. एंड इट वाज ओके, यू नो व्हाट आई मीन. बट यू नो, सॉन्ग्स अल्टीमेटली आउटलिव द मूवी, सो देन यू नीड द सॉन्ग नीड्स टू स्टैंड ऑन इट्स ओन.

0: feet. There are very few examples of songs which were part of the narrative, but they still out, even though you would not, like, for example, a song like Julie. Ab Julie ka naam kyun hai? Kyunki film ka naam Julie tha. और उसका मेन कैरेक्टर जूली था. लेकिन आज भी आप अगर सुनो, कितने लोगों ने जूली फिल्म देखी है आज के दौर में, लेकिन गाना कितने लोगों ने सुना है?
1: जी,
0: भूल गया सब कुछ, क्योंकि वो गाना इतना खूबसूरत है.
1: एंड कैन वी बिलीव दैट हम 50 साल पहले की म्यूजिक की बात कर रहे हैं?
0: एग्जैक्टली, एंड इट इज स्टिल सो ब्यूटीफुल एंड रिलेवेंट.
1: रिलीज इन 1975.
0: वाओ, देयर यू गो. तो देखिए, बात यह है ना कि यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि म्यूजिक जो है वो अब इट शुड स्टैंड ऑन इट्स ओन टू फीट. एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट यू सी, क्या था कि वो जो गाने थे, जो अगर फिल्म ने अच्छा काम नहीं किया फॉर व्हाटएवर रीजन, लेकिन द रिकॉर्ड लेबल उस जमाने में HMV थी, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज वो उन गानों को पुश करते थे
1: जी
0: कंपाइलेशंस में और इस तरह से. तो वो गाने जो थे, यू नो, बेस्ट ऑफ किशोर और या फिर फलाना, you know, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में वो उसको पुश करते थे. और जब वो पुश करते थे तो वो गाने जो थे वो बहुत मकबूल हो जाते थे ऑन देयर ओन. अच्छा, यहाँ आज के और कुछ अरसे से दौर ये है कि भाई अगर फिल्म नीचे गिर गई तो उसकी सारी चीजों को भूल जाओ.
1: जी, ये आज के जमाने.
0: हाँ, आज के जमाने. तो व्हाट हैपेंड वाज कि ये मेरे साथ दो चार दफा हुआ जहाँ पे पिक्चरें जो थी वो नहीं चली और वो म्यूजिक जो था वो डूब गया फिल्म के साथ. तो वो मेरे लिए बड़ा वो डिसहार्टनिंग था. तो देन आई सॉर्ट ऑफ सेड, यू नो व्हाट, आई विल बी वेरी वेरी चूजी ऑफ हुम आई वांट टू वर्क विद व्हेन इट कम्स टू कंपोजिशन.
1: राइट,
0: फिल्म में गायकी तो मैं करता हूँ सबके साथ, लेकिन मैंने कहा जहां तक कंपोजिशन करता, क्योंकि मेरे लिए कंपोजिशन इज लाइक गिविंग बर्थ टू समथिंग.
1: उसमें आपका अपना एक सिग्नेचर होता है
0: जी.
1: जो सुन के ही अगर कीन लिसनर है वो अंदाजा लगा सकता है कि भाई ये आपका म्यूजिक है.
0: हाँ, तो इसके अंदर मैं अपनापन बहुत अंदर से निकालता हूँ. तो वो आई गेट टू इमोशनली अटैच्ड टू इट. जैसे मैंने कहा ना, अगर आपने उस गाने को प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया और उसको एक मौका दिया उभरने के लिए, और वो अगर उसके बावजूद नहीं उभरा, तो मैं डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा. मैं कहूंगा यार ठीक है, लोगों को नहीं पसंद आया, चलो ठीक है, विल ट्राई बेटर. लेकिन कम अज कम लोगों ने सुना तो सही. लेकिन यहाँ पर कई दफा होता था कि लोगों ने सुना ही नहीं, उनके तक पहुंचे ही नहीं, और वो पहले से डूब गया. अच्छा, कई दफा जब मैं कभी कभी कोई पुराना उस तरह का उन फिल्मों में से अगर कोई गाना मैं किसी को सुना, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, कब रिलीज हो रहा है? मैं कह यार ये क्या, मैं
1: ये और तकलीफ बढ़ा,
0: ये और तकलीफ बढ़ाती है, यू नो. अच्छा, लेकिन फिर ये क्या हुआ, मैं चुप हो जाता हूँ.
1: तो उनमें से कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
0: देयर वाज अ सॉन्ग फ्रॉम अ फिल्म, रादर द साउंड ट्रैक
1: ओके
0: ऑफ अ फिल्म कॉल्ड सदियां.
1: जी,
0: the film, I really enjoyed making the soundtrack of the film Sadiyan. aur usme bade interesting kism ke gaane hain jo mere dil ke bahut kareeb hain aaj bhi
1: ji.
0: And mujhe bada usse bade bade dukh hua
1: ki film nahi chali,
0: ki wo film nahi chali, aur lihaza wo gaane jo the wo reh gaye. लेकिन वो गाने जो हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं. अगर आप उनको सुनोगे तो आप यू विल अंडरस्टैंड मे बी व्हाई मे बी आई एम इमोशनली वेरी अटैच्ड टू दोस.
1: एंड लकी के कौन से गाने की बात
0: सुन जरा. मैंने कि सुन जरा आई लव्ड, नहीं एक्चुअली ऑनेस्टली आई लव्ड सो मेनी ऑफ द सॉन्ग. आई लव्ड शायद ये तो प्यार है, क्योंकि मेरी पहली मर्तबा लता जी के साथ गाने का ऑनर हुआ
1: जी.
0: तो जो एक अगेन वो एक ख्वाब था मेरा.
1: कितनी धड़कनें बड़ी हुई थी
0: लता जी के साथ. अगेन एक जो एक्सपीरियंस था वो अनमोल था. मतलब कि मैं लता जी को पहले से जानता था, क्योंकि मेरा आशा जी के साथ आना जाना हमेशा रहता था. तो कई मर्तबा दीदी के साथ भी मुलाकात होती रहती थी, और वो बहुत ही दिलचस्प खातून थी. वो बड़े मज़ेदार, शी वाज़ अ ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट. बड़ा मज़ा आता था उनके साथ गुफ्तगू करने का, गपशप मारने का. लेकिन कभी काम नहीं किया. और जब पहली दफ़ा जब उनके साथ इसी गाने के लिए जब मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो मैं तो बहुत नर्वस था, यू नो, आई वाज वेरी नर्वस. और अच्छा, पता है ये जो महान लोग होते हैं ना, इज हु आर बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, दे नो देयर ग्रेटनेस.
1: यस,
0: दे नो इट, दे आर वेरी मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट इट. मतलब उनके अंदर उस तरह का कोई मगरूरपन नहीं होता, लेकिन उनको पता है कि भाई मैं लता मंगेशकर हूँ या मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और मुझे पता है कि मेरा असर जो है, ऑरा जो है, वो अगले बंदे जो मुझसे कई दर्जे जूनियर है उसके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी.

0: You know what I mean? उनको पता है और जो उनका सबसे बड़ा जो बड़ापन है
1: जी
0: वो ये होता है कि वो आपको सबसे ज्यादा सबसे पहले आपको
1: ईज
0: कराते हैं यू नो टू मेक यू रिलैक्स बिकॉज दे नो दैट आपके अंदर क्या मतलब कि
1: हवाइयां उड़ी हुई हैं
0: उनको पता है तो उनका सबसे पहले तो ये होता है कि आपको काम डाउन करें तो अच्छा अब क्या हुआ कि मैं पहली दफा रिकॉर्ड कर रहा था लता जी के साथ तो मैंने फोटोग्राफर बुलाया अच्छा उस जमाने में कहाँ BTS हुआ करता था कहाँ जिस इस तरह की जो चीजें जो आजकल में होती हैं और पैप्स तो होते ही नहीं थे तो देयर वाज नो सच थिंग तो मैं अपना ही किसी फोटोग्राफर को बुलाया तो अब मैं बैठा हूँ स्टूडियो में मैं उनको गाना सिखा रहा था ठीक है मैं गाना बता रहा था उनको कीबोर्ड पे था और वो मेरे साथ बैठी हुई थी उन्होंने देखा कि एक कैमरामैन है तो उन्हें ये कैमरामैन अच्छा मैं एकदम घबरा गया मैंने कहा हाँ जी लता जी कैमरामैन आप माइंड तो नहीं कर रही अगर कुछ दो चार फोटोज ले ले हाँ नहीं नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं नहीं एक सेकंड मुझे खड़ा होने दो मैंने कहा खड़ा किस लिए मैं यहाँ पे खड़ी होंगी और ये शी हैड द पेपर विद द लिरिक्स जब यहाँ पे खड़ी होंगी ना आपके सामने तो फोटोग्राफ में लगेगा कि मैं आपसे सीख रही हूँ
1: अरे गजब
0: मेरा तो जबड़ा गिर गया उस वक्त शी वॉन्टेड मी टू हैव दैट मेमोरी
1: वाओ
0: कि वो अगला बंदा जब देखेगा उस फोटो को उसको नजर आएगा कि मैं आपसे गाना सीख रही हूँ मैंने कहा यार कौन करता है ये
1: कौन करता है
0: आप मतलब कि यू आर गिविंग मी दैट ऑनर दैट यू स्टैंडिंग एंड लर्निंग एंड गिविंग मी दैट ऑनर एज अ म्यूजिक डायरेक्टर दैट यू गिविंग मी दैट रिस्पेक्ट एंड आई एम अ किड इन फ्रंट ऑफ यू मैंने उस दिन उनसे इतना बड़ा ये एक सबक सीखा कि वहां पर वो करने से वो छोटी नहीं हुई वो मेरे आंखों में इतनी बड़ी हुई कि मैंने उससे सबक सीखा कि ये होता है जेन्युइन ह्यूमिलिटी

0: देखिए लता जी, आशा जी की बात हुई, बच्चन साहब के साथ भी तो ऐसी कुछ हुआ है।
1: ऑफ कोर्स बच्चन साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ
0: जी।
1: मैं देखिए उनसे अच्छा मेरा जो यू नो आई मीन ही फॉर मी वाज ऑलवेज यू नो अ स्टार एंड आइकॉन एंड यू नो अ लेजेंड यू नो एंड ही विल ऑलवेज बी। तो उनके साथ जब मैं इंटरैक्ट मैंने करना शुरू किया और सबसे जो खूबसूरत बात थी वो ये थी कि इन सब लेजेंड्स के एक चीज जो कॉमन थी जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी वो ये था कि आई वाज एबल टू गेट ए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू सी हाउ दे क्रिएटेड देयर मैजिक कि व्हाट वाज द प्रोसेस कि वो किस मरहले से गुजरते हैं और अपने दिमाग को किस तरह से तैयार करते हैं उस तरह के लेवल की परफॉर्मेंस निकालने के लिए कि व्हाट प्रोसेस दे वेंट थ्रू। और हर एक बंदे का अपना अपना तरीका होता है
0: जी, आप। जी।
1: तो वो मैंने बच्चन साहब के साथ भी देखा, मैंने आशा जी के साथ भी देखा, लता जी के साथ भी देखा।
0: उनके साथ शूट कितना डिफिकल्ट था आपके लिए?
1: ओह इट वाज अमेजिंग। अमित जी के साथ तो शूट ऐसा था कि मतलब कि हर एक टेक जो थी वो अनमोल थी।
0: अच्छा।
1: और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी सबसे ज्यादा मुश्किल बात ये हुई जब हम एडिट पे बैठे क्योंकि उन्होंने हर एक शॉट के हमने 3-4 वर्जन्स किए थे। अच्छा वो इम्प्रोवाइज करते मैं भी इम्प्रोवाइज करता हूँ क्योंकि मेरा तो क्लासिकल म्यूजिक से ही मतलब कि बैकग्राउंड है और हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में तो सब कुछ इम्प्रोवाइज्ड होता है तो वो इम्प्रोवाइजेशन का कीड़ा जो है वो मेरे भी बचपन से है तो वो तो ऑफ कोर्स ही इज अ मास्टर एट दैट। तो वो जब जो अलग अलग टेक्स थी हम कहते यार ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है। हम कई दफा ऐसी उलझन में पड़ जाते थे तो वी यूज्ड टू लिटरली फ्लिप अ कॉइन कि कौन सा शॉट रखे क्योंकि वी डिडंट नो व्हिच वन टू कीप यू नो बिकॉज़ दे वर ऑल सो गुड एंड डिफरेंट इन देयर ओन वे। ही वुड गिव अस एवरी शॉट ही वुड गिव इन अ डिफरेंट वे। तो वो उनके साथ काम करके जो एक्सपीरियंस मिला वाज समथिंग दैट वाज एब्सोल्युटली प्राइसलेस एंड आई लर्न्ड सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ दीज पीपल एंड इट वाज सच एन इनक्रेडिबल।

0: वाह वाह वाह वाह, सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश बाकी रहे।
1: बेशक।
0: तो हमारे साथ ये वादा कीजिए कि अपनी पसंद के 10 गानों पर इसी तरह फ्री व्हीलिंग बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में लाइव आएंगे।
1: जरूर आऊंगा, जरूर, विद प्लेजर, विद प्लेजर।
0: शोर मचा के आपको बुलाएंगे।
1: तफसील में,
0: तफसील में, तफसील में, बिल्कुल। तब दूसरों की भी बातें होंगी, आपके उस्तादों की,
1: जरूर जरूर,
0: और इंस्पिरेशन की, आपके फेवरेट गानों की,
1: ऑफ कोर्स।
0: तो उस मुलाकात का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: माय प्लेजर, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: दोस्तों, आज के रंग तरंग कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने गायक, संगीतकार और पियानो वादक पद्मश्री अदनान सामी से यूनुस खान की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग योगिता जाधव, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: रंग

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज ही चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हों। उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति बनाने तथा संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील की।

0: लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक जरिया भी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के केंद्र में रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवानिवृत्त आरआरपीएस डॉक्टर भूमा विजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन एआईपीएसआई के कुलपति पद के लिए चुना गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एआईपीएसआई मॉरिशस का पूर्व सिविल सर्विस कॉलेज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने मार्च 2025 में संयुक्त रूप से किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
2: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखोरिन सिंदारोफ को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदन 2 मैचों में 1.5 अंक पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

रंग दे बसंती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अभी प्रसून जोशी के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था, नरेश अय्यर, मोहम्मद असलम और साथियों की आवाजें थी। यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से अंतराल के बाद।

0: हिंदुस्तान अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार

0: जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय कहा हुजूर।
1: दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस उपलक्ष में हमने कुछ ऐसी फिल्में चुनी हैं जिनमें युवाओं की उपस्थिति दर्ज होती है। चलिए, आज युवाओं के लिए हम करते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनका भविष्य उज्जवल हो, उनके सारे सपने पूरे हों और उनके हौसले सदा बुलंद रहें। फिल्म 3 इडियट्स, सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाज है।

வந்தே மாதரம். ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा. स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी.

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: छिछोरे फिल्म का गाना है, नक्श अजीज और साथियों की आवाजें हैं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
4: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: 1947 अर्थ इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

0: जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे उदित नारायण और विजेता पंडित की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
0: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
0: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म का गाना। फरहान अख्तर और साथियों की आवाजें हैं।

चक दे इंडिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमा सरदेसाई की आवाज में। जयदीप साहनी के बोल थे, सलीम सुलेमान का संगीत था। लागा चुनरी में दाग, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में।

लगा चुनरी में दाग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे के बोलते शांतनु मोइत्रा का संगीत। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

कर एक खूबसूरत ख्वाब देखा था। एक छोटा सा घर जिसकी खिड़की से पहाड़ और वादियां दिखाई दें और आंगन में दोनों के नाम का एक पेड़ हो, उस पौधे में सदा प्रेम के फूल खिलें। लेकिन बीते दिन लौट कर नहीं आते, हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। वक्त की आंधी में उनके टूटे हुए ख्वाब कहीं बिखर गए। सालों बाद वो फिर उसी गांव में लौटी, मतलब वो यानी लड़की। पहाड़ वही थे, पगडंडियां वही थीं, मगर वो नहीं था। तभी हवा में जैसे उसकी आवाज गूंजी, बुझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गांव रे। वो ठिठक गई। ये वही गीत था जिसे उसने कई बार उसके साथ गुनगुनाया था। ये वही जगह थी जहाँ उसने लिखी थी एक प्रेम कहानी। तो फिर आगे क्या हुआ, यही तो आपको बूझना है आज। आज आपको पूरी करनी है ये कहानी और दो लाइन में आपको बताना है कि आगे क्या होता है, उसका प्रेमी वापस मिलता है या नहीं, जहां से गाने की आवाज आई थी वहां उसका प्रेमी आया या नहीं, ये आपको बताना है। दो लाइन की एक छोटी सी इबारत लिखिए और बहुत बड़ी टिप्पणी लिखने की जरूरत नहीं है। दो लाइन में बताइए प्रेमी उसका वापस लौटा या नहीं, अगर लौटा तो फिर क्या हुआ। अगर आप बूझ जाते हैं तो फिर ठीक है, वरना हम प्रोग्राम के आखिर तक तो आपको बताएंगे ही कि आखिर कहानी में आगे क्या होता है। अब बहुत सारे श्रोताओं ने टिप्पणी लिखी है, कहानी का निचोड़ लिखा है किसी ने, किसी ने मिलती जुलती कहानी लिख डाली है, किसी ने अंदाजा लगाया है, लेकिन बहुत लोगों को अंदाजा लगाना बाकी है। तो आप जरा बूझिए कि इस कहानी में आगे क्या होता है, वो प्रेमी जोड़े में जो बिछड़ जाते हैं प्रेमी वापस लौटता है कि नहीं, और साथ में वो शब्द भी बूझिएगा जिससे गाने चुने हमने, वो गानों के बोल भी आप बताते चलिए। फिलहाल बताइए गीतकार का नाम, फिल्म है आज और कल, गीतकार का नाम बूझिए, संगीतकार है रवि, आवाज किसकी है ये तो आप बता ही सकते हैं। फिल्म आज और कल। इबारत में जो शब्द है उन्हीं शब्दों से गाने सुनवा रहे हैं।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, नव पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, फेसबुक पेज पर। इसमें वो शब्द समाय होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज की जो इबारत है वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव था, वहां एक प्रेमी जोड़ा था, उन्होंने

साहिल लुधियानवी गीतकार, ये हमने पूछा था आपसे, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया। संगीतकार का नाम भी सही लिखा, रवि मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म आज और कल। एक श्रोता ने लिखा, छोटा सा घर होगा बादलों की छांव में, रिमझिम सितारों का आंगन होगा, बीते हुए दिन कुछ ऐसे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और बहुत सारे श्रोताओं ने गाने के बोल लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा, पर्वत, घर, फूल, वक्त, ख्वाब, नाम, प्रेम, प्रेम कहानी। भाई गाने के बोल भी तो लिखिए, इतनी कंजूसी क्यों।

और कंजूसी वहाँ कीजिए जहाँ हमने कहानी पूरी करने की बात कही है। सिर्फ एक या दो लाइन में आप कहानी पूरी कीजिए कि क्या होता है वो पर्वत, पर्वतों के बीच में, पेड़ों के झुरमुटों के बीच, जब वो वापस लौटती है। एक बार उनके ख्वाब टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जब वो वापस आती है और गाना गूंजता है वादियों में, बूझ मेरा क्या नाम रे, तो उस समय क्या वो उसका प्रेमी वापस आता है या नहीं, ये आपको बताना है। पूरे प्रोग्राम में हम पूछते रहेंगे, आखिर में इसका हम जवाब देंगे, मतलब कहानी पूरी करेंगे। ये अधूरी कहानी हमने दी है आपको। एक श्रोता ने पूरी करने की कोशिश की है, देखते हैं क्या लिखा है। बिछड़ते समय प्रेमी ने प्रेमिका को एक पीला दुपट्टा दिया और कहा, जो इस जगह पहले लौटेगा वो इस पेड़ की ऊपरी शाख पर ये दुपट्टा बांध देगा, तब दोनों को यकीन हो जाएगा कि अभी भी हमें एक दूसरे से प्रेम है और इंतजार है। जब प्रेमिका गांव लौटी तो देखा पेड़ की ऊपरी शाख पर एक नहीं अनगिनत पीले दुपट्टे लहरा रहे थे। क्या बात है भाई, हमारी आंखों के सामने तो सीन आ गया है, कैसे दुपट्टे लहरा रहे होंगे। तो जरा आप अपना निजी अनुभव बताइए कि आपने कभी किसी के लिए ऐसा पीला दुपट्टा, नीला दुपट्टा, लाल बांधा है, या फिर किसी के लिए प्यार का धागा बांधा है। वैसे मंदिर में जाते हैं तो अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए हम धागा बांध कर आते हैं। कभी अपने प्यार की खातिर कोई धागा बांधा है, जरा बताइए, वो अनुभव ही साझा कर सकते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस तरह की मन्नतों वाला धागा जब बांधते हैं तो ये अच्छी बात है, उसमें दुआओं की बाकायदा तावीज होती है। एक श्रोता ने लिखा है, कदम आवाज की दिशा में बढ़े तो देखा आंगन में लहराते उसी पेड़ की छांव में बैठा वो आज भी उसी के इंतजार में वही गीत गा रहा था। क्या बात है भाई, नजरों से नजरें मिलते ही जैसे सालों की दूरी मिट गई और अधूरा प्रेम हमेशा के लिए पूरा हो गया। आज के शब्द पर्वत, चंबा, ख्वाब, पगडंडी, खूबसूरत गाना और गाने के बोल भी लिखे हैं, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आपको बूझते रहना है हम कौन से गाने सुनवाने वाले हैं। अब जरा हमें हीरो हीरोइन का नाम बताइए। फिल्म है आदमी और इंसान।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

विविध भारती से यह है कार्यक्रम सुरीला सफर। आदमी और इंसान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था इस प्रोमो से पहले, और आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, धर्मेंद्र और सायरा बानो। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, जल्दी जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने इबारत को पूरा करने का हम साथियों को मौका दिया है, बहुत अच्छा लगा आपका नया तरीका। तो हुआ ये कि जिस समय वो उस जगह पर पहुंची थी, उसी समय वो शख्स भी अपनी पुरानी यादों को पुनः जीने के इरादे से संयोगवश वहां पर पहुंच गया था और वही गीत गाकर खुश हो रहा था। दोनों अपने इस गीत को गुनगुनाते हुए फिर से मिले, क्या बात है भाई। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब प्रेम सच्चा है तो मिलेंगे ही ना, मिले मतलब वो प्रेमी जोड़ा मिल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये जैसे कि पुनर्जन्म की कहानी हो और अगले जन्म में मिले, एक श्रोता ने ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्रेमी जोड़ा अर्थात मेरी धर्मपत्नी और मैं स्वयं इन दिनों कश्मीर के पर्वतों के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद अभी इस समय एक कश्मीर के हॉलीडे होम में रुके हुए हैं, जिसकी खिड़कियों से पहाड़, वादियां, पेड़ पौधे और खूबसूरत फूलों के अद्भुत नजारों का दर्शन कर रहे हैं। और मन बस यही कह रहा है कि धरती पर अगर जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और इस जन्नत को बचाए रखने के लिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी, मतलब हरितिमा बचाए रखना है हम सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमें अभी आपके जवाब का और आपकी कहानी पूरे करने का इंतजार है कि देखते हैं कौन सही मंजिल तक पहुंच पाता है, कहानी की थीम को कौन पकड़ पाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन आप अपनी जो विचारधारा है वो साझा करते रहिए। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का गाना, और ये वही गाना है जिसे उसने सुना पर्वतों की वादियों में और इसी गाने के जरिए अपने प्रेमी को याद किया। तो आपको पूछना है आवाज किसकी है और गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। फिल्म है सीआईडी।

शमशाद बेगम की आवाज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। श्रोताओं ने सही लिखा है, सीआईडी फिल्म थी। और जरा बताइए कि ऐसा कोई गाना याद आ रहा है जिसमें कि गांव हो, पीपल हो और इसमें गांव का पूरा परिवेश हो, ऐसा कोई गाना याद आ रहा है जिसमें नदी भी हो? क्योंकि आज की इबारत में ये शब्द कई बार आ गए हैं, तो नदी, गांव और पीपल वाले अगर कोई और गाने आपको याद आते हैं तो जरूर बताइए, हम आप तक पहुंचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेमी अक्सर लौटते ही हैं, कुछ या बहुत कुछ खोकर, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सालों बाद लौटने पर जब उसने देखा सफेद स्वेटर जिस पर गुलाब के फूल की बहुत सुंदर कढ़ाई थी, उसे तुरंत ही याद आ गया उसके द्वारा दी गई प्यार के निशाने उसके प्रीतम प्यारे ने पहनी है। क्या बात है, हमारे श्रोताओं के अंदर एक कथाकार भी है, बहुत अच्छा लग रहा है जानकर। बहुत सारे श्रोताओं ने एक कथाकार की तरह पंक्तियां लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ, मेरे दिल के टुकड़ों में चांद की उदासी छिपी और धुंधली कुछ तस्वीरें लिखी रही, कहानी सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नीले पर्वतों की धारा, बहुत ही खूबसूरत छायांकन, पर्वत, झरने, नदियां आपकी इबारत से बिल्कुल मैच कर रहा है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत अधूरी बताई गई है और लिखा है कि हम पूरी करें, मिलना बिछड़ना नियति में था, जब गाना सुना पुराना सजन मिल गया, फूल खिल गए, मिलन हो गया, गिले शिकवे सब दूर हो गए, प्रेम में बड़ी ताकत होती है। सिर्फ प्रेम में बिछड़ने की वजह गिले शिकवे ही नहीं होते हैं, कई बार मर्यादा भी होती है, समाज भी आड़े आता है, परिवार भी आड़े आता है। तो ये अब हम आपको एक क्लू दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, जरा बुनिए आगे वाली कहानी सिर्फ दो लाइन में, एक लाइन में, हमें पता है कि आप बुन सकते हैं ये कथा। चलिए अब हम आगे बढ़े और आपको सुनवाए अमानत फिल्म का गाना। आपको बूझना है कि ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। हमें लगता है कि ये फिल्म आप सबने देखी जरूर होगी, तो बूझिए जरा कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है। संगीतकार का नाम अगर पता है तो वो भी आप बता सकते हैं।

आज की इबारत में जो कथानक है कुछ निचोड़ इस गाने में है। जब प्रेमी जोड़े बिछड़ते हैं तो दिल से दिल की बात होती है, एक पुकार होती है, एक तड़प होती है, पीड़ा होती है। तो कुछ ऐसा ही ये गाना भी था और हमने पूछा था कि इसमें कलाकार कौन है, मनोज कुमार साधना। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और साहिल लुधियानवी के बोल होते हैं, रवि का संगीत है और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है। फिल्म गोदान, नदिया के पार, नीले गगन तले गाने के बोल भी लिखे हैं बहुत सारे श्रोताओं ने। गांव के परिवेश पर हमने पूछा था कि ऐसा गाना जिसमें नदी है और गांव है तो कोई गाना याद आता है तो वो भी बताइए। श्रोताओं ने वो भी बताया है और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता लगातार अपनी यादों की गलियारों में विचरण कर रहे होंगे और गाने याद कर रहे होंगे। याद कीजिए, बहुत सारे श्रोता अगर एक ही गाना लिखेंगे तो हम वो गाना बजाएंगे भी।

और बहुत सारे श्रोताओं के लिखे हुए गाने भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मुड़ी तो सामने वही खड़ा था, बालों में सफेदी, आंखों में वही प्यार और हाथ में उस पेड़ की एक हरी टहनी जिसे उन्होंने कभी साथ लगाया था। दोनों कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस सही वक्त आने का इंतजार करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि रही बात कहानी की, तो दिल हमेशा उसे ढूंढता रहता है जो कभी मिला नहीं या मिल नहीं सकता। जब उसने वो गीत सुना तो कुछ पल के लिए वो अतीत में चली गई, पर देखा तो एक छोटी सी पहाड़ी पर एक लड़का वो गीत गुनगुना रहा था। जब उसने पूछा कि उसे ये गाना कैसे आता है, तो उस लड़के ने बताया कि उसके पिता अक्सर गुनगुनाते रहते थे और कहते थे एक दिन कोई ये गीत सुनकर उसके बारे में जरूर पूछेगा। क्या बात है भाई, ये तो एक अलग सी कहानी डेवलप हो रही है। तो ठीक है, आज अपने कहानीकार दिल को टटोलिए और लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है, गाने के बोल की लंबी फेहरिस्त भेजी है। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, देखो मैंने देखा एक सपना, काश ऐसा होता, तेरी गली में होता मेरा चौबारा, वगैरह वगैरह। बहुत लंबी फेहरिस्त है जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित रहेगी, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मधुमती फिल्म का गाना आ रहा है, आपको बूझना है गीतकार और संगीतकार का नाम। उम्मीद है आप सही सही बताएंगे, जल्द बताएंगे।

मधुमति फिल्म का गाना था। हमने गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था, त्वरित जवाब आया, श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया, शैलेंद्र और सलील चौधरी, मोहम्मद रफी की आवाज थी। और श्रोता कोशिश कर रहे हैं कहानी की बात को आगे बढ़ाने की, और अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो बस ये तो बताइए कि अंत क्या होता है कहानी में, प्रेमी जोड़े में वो प्रेमी आता है इस गाने को सुनकर या फिर नहीं आता है। जो भी गाने आज बज रहे हैं मेरे ख्याल से उस

प्रेमी तक इन गानों के जरिए आवाज पहुंचनी चाहिए, तो जो कहानी इबारत की थीम है उसमें। अब एक श्रोता ने लिखा है कि इंसान बहुत कुछ भूल जाता है पर पहला प्यार नहीं भूल पाता, क्योंकि वो उसकी आत्मा और जहन में पत्थर की लकीर की तरह इंगित हो चुका होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर में नदी पहाड़ों के वातावरण में रहने वाले प्रेमियों के मिलने बिछड़ने पर आने वाले गीत सुनने को मिलेंगे। चंबा का गांव और प्रेमी क्या कहते हैं, वो भूली दास्तां फिर याद आ गई, बीते दिन वो प्यारे दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बूझ मेरा क्या नाम रे। बहुत सारे गानों को मिलाया है इन्होंने, एक कड़ी सी बनाई है, अच्छी बात है ये। एक श्रोता ने लिखा है कि वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, हवाएं गुंजायमान है, यही वो जगह है, यही है फिजाएं, यहीं पे कभी आप हमसे मिले थे, यहीं पे कभी हाथों में हाथ लेकर कभी न बिछड़ने का वादा किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी भावुक सुंदर इबारत की परिपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं हम। विरह दर्द को आंचल में समेटे, मन की सारी शक्ति बटोरे, वो उस हरे भरे फूल पेड़ के पास पहुंची जो उन दोनों ने लगाया था और बोल उठी, ओ मेरे मनमीत, तेरा नाम है अमर प्रेम, तेरी यादों को दिल से कैसे मिटाऊं, तुम्हें भुलाना नामुमकिन है क्योंकि जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार हमने जन्म लिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। और अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है जो हम सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन जरा आपको बताना है हीरो हीरोइन का नाम, किन हीरो पर किन हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना, फिल्म महबूबा, जल्द बताइए ताकि अगले सवाल का जवाब आप दे सकें। हीरो हीरोइन लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

महबूबा फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो कौन है हीरोइन, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया और दरअसल इस गाने का जिक्र भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किया था, तो समझ लीजिए कि आप सभी की फरमाइश पर यह गाना हमने बजाया। तो आज की इबारत से कोई शब्द आपको सूझ रहा है, जिस पर बहुत सारे गाने आपको सूझ रहे, तो वो आप लिख डालिए, फिर वो ही गाना हम आप तक पहुंचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो हरियाली अमावस्या है, सुरीला सफर में नदी पहाड़ों की बातें हैं और वैसे ही गाने हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज का सुरीला सफर। एक श्रोता ने लिखा है कि बीते हुए दिन और हालात लौट कर नहीं आते, लेकिन अगर दोनों का प्यार सच्चा और पवित्र है तो बिछड़े हुए प्रेमी फिर से मिल सकते हैं। सच क्या है, बीता हुआ कल जो समय निकल गया शायद वापस नहीं आता, टूटे हुए ख्वाब पुराने जख्मों को भरने में समय लगता है, हालात अगर हालात बदल जाएं तो अलग हुए रास्ते फिर से जुड़ जाते हैं। अब बात बीते हुए दिन की चली है, तो चलिए एक ऐसा ही गाना सुनते हैं। आपको पूछना है किसकी है आवाज और गीतकार का नाम। फिल्म है फर्स्ट लव और बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र भी किया है।

सभी श्रोताओं ने सही बताया, सुमन कल्याणपुर की आवाज है, गुलशन बावरा के बोल है। ये बात, ये जानकारी कम श्रोताओं ने दी है। दत्ताराम का संगीत और फिल्म थी फर्स्ट।

लव। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि उसने देखा कि गाना एक कुटीर से आ रहा है, जाके देखा तो प्रेमी की बेटी गा रही थी, प्रेमी तो गुजर गए थे। ये एंड लाइन हमारे श्रोता ने लिखी है, और सब अपने अपने विचारधारा के अनुरूप लिखें कि कहानी का अंत क्या होना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज आप द्वारा प्रस्तुत शानदार इबारत के साथ सुरीला सफर के लाजवाब कमेंट सुनकर पढ़कर मन प्रफुल्लित हो रहा है। हमारा भी मन प्रफुल्लित हो रहा है कि एक जरा सी कहानी है छोटी सी, उसमें आप सभी उसमें शामिल हो रहे हैं, उस छोटी सी कहानी को कितना विस्तार दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब जरा बताइए हीरो हीरोइन का नाम और कौन से शब्द इस गाने में आते हैं इबारत वाले, और कौन से शब्द वाले गाने बाकी हैं, जरा ये भी तो लिखिए। फिल्म मेरा नाम जोकर, आपको हीरो हीरोइन का नाम बूझना है। और हाँ, अगर वो प्रेमी मिल जाता है तो फिर वहां पर कौन सा गाना होना चाहिए, जरा ये भी बताइएगा।

आप सुन रहे थे ये गाना, फिल्म थी मेरा नाम जोकर, मुकेश की आवाज, हसर जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था। और श्रोताओं ने बताया है राज कपूर और सिमी गरेवाल इस फिल्म में होती हैं, इस गाने में। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज आजा सनम मधुर चांदनी में हम ये भी गाना होना चाहिए। अब देखते हैं कि वो मुलाकात कैसी होती है, मतलब वो प्रेमी जोड़े मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। वहां पर जब अगर वो जोड़े मिलते हैं तो कौन सा गाना होना चाहिए, जरा ये बताइए। देखते हैं, आपने बहुत सारे श्रोताओं ने कोशिश की है कहानी पूरी करने की, अगर वो गाना भी बता देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारी आपकी पसंद बिल्कुल मिलती जुलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आवाज के पीछे गई तो वहां कोई नहीं था, बस हवा थी जिसमें उसकी आवाज और उसके बीते दिनों की खुशबू घुली हुई थी। उसने आंगन के उस पुराने पेड़ को छुआ जिस पर दोनों के नाम अब भी साथ साथ खुदे थे। गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता, बस उसकी आहटें दिल के किसी कोने में ठहरी रहती हैं। बरसों बाद जब यादों की कोई खिड़की अचानक खुलती है तो बीते दिनों की खुशबू के साथ एक हल्की सी टीस भी लौट आती है। कुछ प्रेम कहानियां इस जमीन पर मुकम्मल नहीं होती, वे बिछड़ कर आसमान की हवाओं में हमेशा के लिए अमर हो जाती है। क्या बात है, एक कहानी आपने रच दी है, बहुत अच्छा लगा। अब बुझिए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, फिल्म है किनारा। गीतकार और संगीतकार का नाम पता होगा आपको शायद, तो लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

मेरी चाबियां घर की।

मुझसे आ, ताश के

हिमलता फिल्म का गाना था, भूपिंदर हिमलता, हेमा मालिनी की आवाजें थी, गुलजार के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है हेमा मालिनी पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। और ये गाना हमें अधूरा छोड़ना पड़ा क्योंकि इस गाने में पूरी कहानी निहित थी, इसलिए गाना सुनवाया। और एक गाना अभी जरूरी है जिसका जवाब आप सभी ने नहीं दिया, देखिएगा शायद वो आपका भी फेवरेट सॉन्ग हो और आपने भी वही गाना चुना हो। एक श्रोता ने लिखा है कि सच्चा प्रेम तो वो है जिसमें मिलने की नहीं एक दूसरे के लिए सच्चा समर्पण हो, यही प्रेम की पराकाष्ठा भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सफेद कागज पर काली स्याही से लिखी हुई दास्तान हो, इसे कृपया आप पूरा कर दें। ये टिप्पणी पढ़ी जा चुकी है, शायद ये दोबारा और तिबारा भी आई है एक टिप्पणी। और अब वो इबारत मैं आप तक पहुंचा रही हूं जिस इबारत की बात बार बार की इस प्रोग्राम में। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव था, वहां एक प्रेमी जोड़ा था, उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत ख्वाब देखा था, एक छोटा सा घर जिसकी खिड़की से पहाड़ और वादियां दिखाई दें, आंगन में दोनों के नाम के एक पेड़ हो, लेकिन बीते दिन लौट कर नहीं आते, हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया, वक्त की आंधी में उनके टूटे हुए ख्वाब कहीं बिखर गए। सालों बाद फिर उसी गांव में वो लौटी, पहाड़ वही थे, पगडंडियां वही थी, मगर

तो क्या बताइए, आपने ये गाना आखिर में सोचा था कि ये गाना बजाया जाएगा? वापस फिल्म का ये गीत था और अधूरी मुलाकात को हमने मुलाकात पूरी करवा दी, और बहुत सारे श्रोताओं ने यही चाहा भी था इस कहानी में कि अंत ऐसा ही हो कि सच्चा प्रेम हो तो जरूर मुलाकात होती है, प्रेमी जोड़े मिलते हैं। एक श्रोता ने लिखा भी है कि कभी जिस बरगद की छांव में बैठकर वे घंटे बातें किया करते थे, वो बरगद आज भी इतने सालों बाद भी खड़ा है। उसकी शाखाएं फैल गई हैं, छाया घनी हो गई है, उसके नीचे वो बंसी बजा रहा है और वो दौड़कर अपने पुराने प्रेमी के पास पहुंच गई है। कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती, बस वो संवाद जो होता है मौन की भाषा, वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं और समझ लेते हैं। अब आज के प्रोग्राम का सफर पूरा हुआ, सुरीला सफर आज बस इतना ही। सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत साल 2000 में हुई थी, यानी 26 बरस हो गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के। वैसे आपको बता दें कि पूरी दुनिया में 15 से 24 साल की उम्र के लोगों का जो प्रतिशत है वो 16% है, और अगर भारत का देखें तो 15 से 25 साल की उम्र के लोग भारत की कुल आबादी का तकरीबन 54% हिस्सा हैं, यानी कि भारत एक युवा देश है और दुनिया में भी युवाओं की अच्छी खासी तादाद है। ये युवा ही हैं जो दुनिया को बदलते हैं, तरक्की के रास्ते पर ले जाते हैं, नई खोजें करते हैं, नए रास्ते निकालते हैं, नई व्यवस्था बनाते हैं, और ये युवा ही हैं जो दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। पर युवाओं को एक दिशा देने की और जिम्मेदारी का बोध कराने की जरूरत है।

इत्तेफाक की बात है कि 12 तारीख को ही भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, पर अगस्त के महीने में नहीं बल्कि जनवरी के महीने में, क्योंकि वो दिन जो है वो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। यानी राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 अगस्त को। जैसा कि मैंने कहा कि ये युवा ही हैं जो बेहतर दुनिया बना सकते हैं, लेकिन किसी भी पीढ़ी के बुजुर्गों से पूछें तो वो यही कहेंगे कि हमारे जमाने के युवा जिम्मेदार हुआ करते थे, आज के युवा तो दिशाहीन हैं। सवाल ये है कि बदलती हुई इस दुनिया में कितने तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं जो ध्यान भंग कर रहे हैं, पर इन तमाम चीजों के बावजूद अगर आप तमाम क्षेत्रों में उपलब्धियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि युवा आसमान की ऊंचाई

इकाइयां छू रहे हैं। खेलों में हर रोज बनते हुए रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटीज में लगातार ऊंचे अंक प्राप्त करने वाले युवा, इसके अलावा विज्ञान, दर्शन, इतिहास, हर क्षेत्र में युवा नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, नए कीर्तिमान बना रहे हैं, नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि हम इन युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हों, हम उन पर इल्जाम न लगाएं, हम उनकी गलतियां ना निकालें, बल्कि हम उन युवाओं को एक नई चेतना की तरफ आगे बढ़ाएं।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम एक बात और कहना चाहेंगे और वो बात ये है कि हम सब के भीतर थोड़ा न थोड़ा युवा मौजूद होता है। हम सब के भीतर एक जोश है, जुनून है कुछ कर गुजरने का, और इस युवा तरंग में ही दुनिया उपलब्धियां हासिल करती है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम है वो है विभिन्न परिस्थितियों को पहचानना और युवाओं के जरिए वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना। ये युवा ही हैं जो दुनिया को एक सूत्र में बांध सकते हैं, ये युवा ही हैं जो हर तरह के भेद की दीवार तोड़ सकते हैं, ये युवा ही हैं जो विश्व व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। बस युवाओं पर विश्वास करें और उनके साथ आगे बढ़ते चलें।

ये थी आज की त्रिवेणी और इसमें हमने बातें की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। अब यूनुस खान को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया, इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में

0: उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यूरो हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
3: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की

0: परछाई देख सकते हैं
1: कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
2: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाए हैं। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्र ध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
4: इन तिरंगा यात्रा, बाइक एंड साइकिल रैली, कल्चरल प्रोग्राम एंड कंसर्ट, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द sentiment behind them is common. The national flag is a symbol in which every citizen can find a sense of belonging.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
5: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली

0: चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
1: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण।

0: सोनी और कलावती सोनी जी ने।
1: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
1: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
0: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
1: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
1: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
0: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
1: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं, तो श्रोताओं आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
0: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भू विज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
1: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
0: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओ, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
1: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
0: जी।
1: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
0: श्रोताओं, पहली बात, राष्ट्रध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
1: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोष, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
0: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
1: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
0: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे
1: जी। और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल

0: कितने डिजाइन तैयार किए थे।
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
0: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए के छात्र थे तभी एक दिन
3: अरे दिलीप।
4: हाँ सुभाष।
3: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
4: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं मुझे उससे सख्त नफरत है।
3: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियां खाने का शौक है मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
4: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
3: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
4: तो फिर?
3: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
4: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
3: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
4: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
5: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
3: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
5: Is that right? You black monkey?
4: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
5: What? जी बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
3: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
5: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
3: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
5: तो क्या करेगा? हा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? यू स्काउंडर, यू ब्लडी स्वाइन, बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
3: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
5: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
3: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
2: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि ICS के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए।

0: गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चित्रंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
1: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
2: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
1: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
2: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
1: और अपने सुभाष बाबू?
2: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
3: कितनी सजा हुई? नालायक कहीं की सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
1: क्या हुआ सुभाष बाबू?
3: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूं कि कोई मुर्गी चोर?
0: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
4: शिशिर?
5: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए।
4: आओ अंदर आ जाओ, क्या खबर है?
5: सब तैयारी हो गई है, पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गौमो से ट्रेन में बैठेंगे, मैं स्वयं गाड़ी चला कर ले चलूंगा।
4: ठीक है चलो, लेकिन मेरे ये कपड़े?
5: उसका भी प्रबंध हो गया है, आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
4: ठीक है।
5: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी, किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं है।
4: तो फिर ठीक है, आओ चले।
5: चलिए।

0: 16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ मौलवी साहब।
1: आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: लाओ लाओ।
1: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
3: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
1: अच्छा, खुदा हाफिज।
3: खुदा हाफिज साहब।
4: लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल न जाने क्या हो।
3: ये अखबार कहां गए?
4: हाँ, ये रहा। कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
5: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
0: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया।
6: जय हिंद।

यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।

0: बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
1: हम तैयार हैं।
0: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
2: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
0: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
3: मुझे दीजिए कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
0: ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
3: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।
1: नहीं, कागज मुझे।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानों उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सखी सहेली, बस कुछ ही पलों में।

0: अखबार पढ़ते हैं ना दीपा, उन्हें मालूम होता है कि भाई अभी बहुत जगह पे इस तरह की बीमारियां फैली हुई है, तो पानी उबालकर पीना चाहिए या अपना ध्यान रखना चाहिए। यानी बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, तो हमें रोज अखबार पढ़ते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और ऐसे ही देखो ना, ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पे अलग अलग व्यंजन खाने का और बनाने का बड़ा मन करता है। अच्छा चलिए सखियां, बनाने का भले मन नहीं करता होगा लेकिन खाने का तो करता होगा ना?
0: मेरा तो मन करता है।
1: बिल्कुल, तो वैरायटी सबको चाहिए, एक विविधता होनी चाहिए, न सिर्फ अपने जीवन में खाने में भी।
0: हाँ, और है ना, वही वही तरह के जब हम खाने खाते हैं ना, तो बच्चे क्या, बड़े बूढ़े सारे लोग ना परेशान हो जाते हैं कि अरे वही बना लिया। तो ओट्स जो होते हैं ना, प्रोटीन से भरे होते हैं, तो उसके व्यंजन, बहुत सारे व्यंजन हमारी सखियों ने, हमारे श्रोताओं ने लिख कर भी भेजे हैं।
1: बिल्कुल,
0: किसी ने डोसे का लिखा है, किसी ने उपमा लिखा है, तो किसी ने खीर लिखा है। तो आप भी लिख कर भेजिए कि आपके घर में ओट्स के व्यंजन बनते हैं, और नहीं बनते तो क्या बनने चाहिए।
1: बिल्कुल, और देखिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन मेहनत का फिर फल भी तो बहुत मीठा होता है।
0: बहुत मीठा होता है।
1: और जब सारे खुश हो जाएंगे और उस मेहनत का जब रंग निखर के आएगा, तो फिर देखिए न सिर्फ हर दिन हमारा जीवन भी सवर जाएगा। और यही शब्द है हमारा आज का,
0: मेहनत। तो आज का है शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें मेहनत है। यानी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, बिना मेहनत के हमें बहुत सफलता नहीं मिल सकती।
1: बिल्कुल, और आजकल की जो हमारी बेटियां हैं, उन्हें लगता है साड़ी पहनने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जो अनुभवी महिलाएं हैं वो कहती हैं तुम जितनी देर में ड्रेस पहनोगी हम उतनी देर में साड़ी पहन लेंगे,
0: चट से पहन लेंगे।
1: तो साड़ियों का अपना एक सुंदर संसार है, और एक महिला जितनी खूबसूरत साड़ी में लगती है, किसी अन्य परिवेश में, परिधान में शायद कम लगती है। ये आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा सखियां, कि साड़ी पहनना आसान है या ड्रेस पहनना आसान है, और अगर आसान ड्रेस है तो खूबसूरत किस में ज्यादा दिखते हैं?
0: और श्रोता भाई भी बताएं कि महिलाएं किस ड्रेस में, यानी किस परिधान में ज्यादा सुंदर लगती है।
1: जी,
0: तो खंडुआ साड़ी ओडिशा के बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, हमारी बहुत सारी सखियों ने भी इस विषय में मैसेज लिखना शुरू कर दिया है। साथ ही आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो सारे युवाओं को भी हम बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
1: बिल्कुल, उन सभी को, उनकी ऊर्जा को सलाम, और उन्हें ये एक सीख भी देते हैं कि अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक पथ पे आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को संवारते चले
0: जी।
1: और अब हम क्या करें,
0: गीत सुनते हैं।
1: चलो।

0: की सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सारी सखियां सहेलियां और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
0: बिल्कुल आपका जो नमस्कार है सभी ने उसे
1: स्वीकार
0: लिया है और हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे हैं और हेल्थ का ध्यान रखना सेहत का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि बदलते मौसम में देखिए ना घर घर में हम सुन रहे हैं किसी को नजला हो गया है किसी को
1: खांसी
0: हो गई है कहीं बुखार है तो ऐसे में अगर हम पहले से ही थोड़ा सा अपना ध्यान रखते चलते हैं ना तो ये जो बदलते मौसम में तबीयत जो खराब हो जाती है ये जरा संभल जाती है
1: ये संभल जाती है और जो लोग रोज

0: सोनाली, कहाँ खोई हुई हो संदेशों में?
1: यहाँ आने के बाद में हम दोनों नहीं होते हैं दीपा। हमारे साथ में इतने सारे श्रोता, इतनी सारी सखियाँ जो घर में सुनते हैं और हम उनके संदेश पढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, तो संदेशों के माध्यम से बहुत सारी हमारी सखियाँ इस वक्त हमारे साथ हैं,
1: जुड़ी हुई है। और आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
0: बिल्कुल,
1: तो युवा जो होते हैं ना, किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य की सबसे मजबूत नींव होते हैं। उनके भीतर असीमित ऊर्जा, कुछ नया करने की ललक और दुनिया को बदलने का साहस होता है। और इसी ऊर्जा और सामर्थ्य को सम्मानित करने और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और ये दिन युवा दुनिया भर के युवाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन है और समाज निर्माण में उनकी भागीदारी को रेखांकित करने का एक साझा मंच है।
0: बिल्कुल सही कहा। और अगर हमारे देश की हम बात करें तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ये दिन और भी खास और जीवंत हो उठता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। तो भारत का युवा जो है उसको हम केवल जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड ये नहीं हम बोल सकते, ये आंकड़ा नहीं है वो लोग, ये नहीं हम मान सकते, बल्कि देश के आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक बदलाव का मुख्य कारक भी हमारे युवा हैं।
1: ये तो बात आपने बहुत सही कही दीपा। और आज का भारतीय युवा केवल अवसरों की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और नए विचारों के जरिए खुद अवसर पैदा कर रहा है। अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक या तकनीक से लेकर सामाजिक क्रांति तक भारत का युवा हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और एक देश के युवाओं का ये संगम इस बात का प्रतीक है कि जब युवा सशक्त होता है तो वह न केवल अपने देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने का भी सामर्थ्य रखता है।
1: बस युवाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सही
1: कि ये जो महत्वपूर्ण वर्ष है ना, ये जिंदगी में बार बार नहीं आती।
0: बिल्कुल, और ये ऊर्जा भी बार बार नहीं मिलेगी, है ना, इसे संगठित करके रखना होता है।
1: तो बस ये जो समय है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई समय का ध्यान रखो, थोड़ा मोबाइल से दूर रहो, थोड़ा पढ़ लिख लो, तो उन बातों को जो युवा ध्यान में रखते हैं ना, उनका जीवन उज्जवल हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और सबसे जरूर बात है मेहनत।
0: जी बिल्कुल सही कहा। और ये वो सुनहरे वर्ष हैं जहां आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास आजादी है, स्वतंत्रता है, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जिम्मेदारियां हमेशा बढ़ती जाती है, और उस वजह से कई बार अपने सपनों को हमें पीछे छोड़ना होता है क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है। तो आप चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं, बशर्ते बस ये ध्यान रखिएगा कि हमारे घर वाले कहीं पे उनकी मानहानि ना हो या उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप अपने गांव, देश, प्रदेश कहीं से भी बाहर दूर हैं, तब भी माता पिता को ये लगे जहां भी हमारा बच्चा है बिल्कुल सही है और एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है।
1: और अपने देश, अपने बड़े बुजुर्ग और अपने घर का नाम रोशन हो, इस बात का युवाओं को ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। अच्छा, एक संदेश आया है, ये पढ़ना चाहती थी सोनाली। इन्होंने आधिकारिक जो थीम है इस साल की वो बताई है, थीम है अलग परिस्थितियां, समान आकांक्षाएं। तो इस विषय पर जोर देता है इस साल का ये थीम कि भले ही दुनिया भर के युवाओं की सामाजिक और भौगोलिक स्थितियां अलग हो, लेकिन उनके सपने और जरूरतें एक जैसी हैं।
1: बहुत सुंदर संदेश लिखकर भेजा है। और अब क्या किया जाए?
0: आज थोड़ी हल्की सी फुहार यहाँ पर रिमझिम सी बरसात हो रही है, तो

0: तो चलो चलते हैं
1: साड़ियों के संसार में।
0: हाँ बिल्कुल। अच्छा साड़ियों से संदेश भी आया, लेकिन हम पहले जानकारी दे दें कि ये खंडुआ साड़ी होती क्या है। ओडिशा में इसकी प्रसिद्ध ये साड़ी है, वहाँ की पारंपरिक बांध कला तकनीक से बनाई जाने वाली साड़ी है। वैसे तो ओडिशा के कई क्षेत्र में बुनी जाती है ये वाली साड़ी, लेकिन मुख्य रूप से कटक जिले के नुआपटना और गंगा मणिबंध गाँव में बुनी जाती है।
1: और दीपा इस साड़ी का आध्यात्मिक महत्व भी है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी के वस्त्र खंडुआ रेशम से ही तैयार किए जाते हैं, जिन पर जयदेव रचित गीत गोविंद के श्लोक भी बुने हुए हैं।
0: और इक्कत तकनीक से इसमें ताने और बाने के धागों को पहले से बांध कर और रंग रंग करके पैटर्न तैयार किया जाता है, जिसे बंध कला कहा जाता है। और जो दूसरे ट्रेडिशनल जो सिल्क साड़ियां हैं ना, उनकी तुलना में खंडुआ साड़ी काफी हल्की होती है, जिसे पहनना बहुत आसान होता है। इसके सिल्क और कॉटन दोनों में इसे बुना जाता है।
1: और डिजाइन की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से हाथी, मोर, कछुआ, शंख, फूल और मंदिर की आकृति यानी टेम्पल बॉर्डर जैसे शुभ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। और रंगों की बात की जाए तो लाल, पीला, नारंगी और केसरिया जैसे जीवंत रंगों का अधिक इस्तेमाल होता है। और इस विशेष साड़ी के दो और तीन प्रकार हैं, जैसे खंडुआ पाट जो शुद्ध रेशम से बनी साड़ी होती है, इसका उपयोग मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों, त्योहारों, विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है
0: जी। और सूती खंडुआ उसी तरह होती है, लेकिन इसमें शुद्ध कॉटन से बनाई जाती है। ये वाली साड़ी हल्की होती है, ब्रीदेबल यानी कि सांस लेने योग्य। अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साड़ी पहन के कुछ भारी सा लग रहा है
1: या
0: चुभ रहा है, वैसा नहीं लगता इसे पहनकर। एकदम आरामदायक होती है ये वाली साड़ी। आप चाहें तो सखियां रोजमर्रा के उपयोग में ले सकती हैं इसको, और गर्मी के मौसम के लिए तो बहुत उपयुक्त साड़ी है ये।
1: और गीत गोविंद खंडुआ, ये खंडुआ का सबसे पवित्र और पारंपरिक रूप माना जाता है। इसके बॉडी या आंचल पर देवनागरी या ओडिया लिपि में गीत गोविंद के श्लोक बुने जाते हैं। इसे मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ
0: के भी हूँ, पर अब ड्रेस पहनना शुरू कर दिया है। ड्रेस पहनना ज्यादा इजी लगता है, झट से पहन लो और चल दो। मुझे भी साड़ी में खूबसूरती ज्यादा दिखती है, और सलवार सूट हो या कोई भी ड्रेस हो, अगर सलीके से पहना गया रंग उम्र और समय के अनुसार तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। पर साड़ी की बात तो कुछ और निराली है, तो भाई साड़ी जीतती जा रही है, जीत तो साड़ी की हो रही है।
1: और एक सखी ने लिखा है, आज हरियाली अमावस्या है, आज भी महिलाएं खूबसूरत रंग बिरंगी हरी साड़ी चूड़ी में सज धज कर मंदिरों में, बाजारों में दिख रही है। साड़ियां, चूड़ियां और राखियों की खरीदारी चल रही है। मेहंदी लगवाने की भी भीड़ लगी हुई है। गर्मी है फिर भी सभी को अपनी बारी का इंतजार है।
0: वही हमारे एक श्रोता भाई ने लिखा है, जी ये डिपार्टमेंट तो केवल माताओं बहनों का है। भाई बात तो सही है, लेकिन खरीदनी तो जाना तो आप ही को पड़ेगा ना। आगे लिखते हैं कि इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, केवल साड़ियों के विषय में सुनकर जानकारी बटोरेंगे। आप सिर्फ जानकारी नहीं बटोरेंगे, इस साल उन्हें दिलाएंगे भी।
1: हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस चाहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि काश साड़ी परिधान पुरुषों के लिए भी होता, पैंट शर्ट तो महिलाओं के परिधान में सम्मिलित हो चुका है, धोती थोड़ा साड़ी से मैच करती है, पूरी नहीं। पर देखा है ना, आजकल साड़ियों से भी ना पुरुष उसके परिधान बनाते हैं, उसके धोती सिलवाते हैं, कुर्ते बनवाते हैं, जैकेट बनवाते हैं। तो पुरानी अगर साड़ी हो चुकी है तो उससे जो हमारे पुरुष भाई हैं वे भी उससे कुछ कुछ जैकेट्स वगैरह, धोती वगैरह बनवा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और वो भी कहीं दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा भी अंदाज अलग है, निराला है। जैसे कि इस गाने में हमारी हीरोइन देखिए क्या कह रही है।

0: हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो।
1: वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: सोनाली, अब एक वक्त हो चला है अंतराल का,
2: तो लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली। और एक मैसेज को पढ़ के ना दीपा मैं थोड़ी भावुक हो गई।
1: क्यों?
0: इतना सुंदर मैसेज है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी माताजी के देहांत को 19 साल हो गए हैं, पर आज भी मेरी माताजी के नाम से हर साल एक बार एक साड़ी खरीदता हूँ और यथा उचित प्रसंग नहीं तो उनके जन्म दिवस पर किसी जरूरतमंद बुजुर्ग महिला को ये साड़ी दान में दे देता हूँ। निजी तौर पर जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ तब मेरी माताजी की साड़ी को ओढ़ के सो जाता हूँ, तो मुझे मेरी माताजी की कमी महसूस नहीं होती। इस विषय को आज चर्चा में लाने के लिए आप सभी और विविध भारती का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ।
1: जी, ये कुछ इसी तरह की भावनाएं शायद हमारी बहुत सारी सखियों की भी होती होगी। हम जो हमारे प्रिय हैं, जो हमसे दूर चले जाते हैं, उनकी कोई पहनी हुई चीज सदा हमारे पास रहती, तो एक धरोहर के रूप में
0: हमारे साथ रहती
1: और याद उनकी ताजा बनी रहती है। तो आपने भी ये अपना अनुभव शेयर किया, तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं।
0: और भाई देखिए ना, कभी कभी दीपा ऐसा होता है ना कि बहुत सारी साड़ियों के सेल भी लगे होते हैं, उसकी भी सूचना हमें अखबारों से मिल जाती है
1: जी,
0: कि फला फला कंपनी की जो साड़ियां हैं वो बहुत सस्ती और बहुत अच्छी होती है, तो उसका हमारे शहर में सेल लग गया, उसमें 50% ऑफ है, तो कभी 25% है, और खासकर बारिश के मौसम में बहुत साड़ियों के सेल लगते हैं।
1: सोनाली, आपका इशारा समझ गए हम, मान गए भाई कि अखबार रोज पढ़ना बेहद जरूरी है।
0: और उसमें सिर्फ सिर्फ साड़ी के बारे में नहीं पढ़ना है, नहीं तो ऐसा है कि उस पन्ना खोल लिया, देख लिया कि कहाँ सेल लगा है।
1: हम महिला यही करती है ना, सबसे पहले उस पन्ने पे जाती है जहाँ पे एग्जीबिशन कहाँ चल रही है, सेल कहाँ चल रही है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। और फिर घर में कहते हैं भाई शनिवार रविवार को हम तो बिल्कुल व्यस्त रहने वाले हैं।
0: नहीं, यानी रंग बिरंगा जो पन्ना होता है ना वो महिलाओं को ज्यादा भाता है। पर ऐसे नहीं है, गृहिणियों को भी सारा पेपर सारा अखबार रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अखबारों से हमें बहुत बहुत नए नए विषयों की जानकारी मिलती है और बहुत कई बार हम सचेत भी हो जाते हैं दीपा, कि अगर देखिए ना वो जो दुर्घटना घटी, अगर उसमें ऐसा होता, यानी कोई मेन होल में गिर गया है, मोबाइल में लगा हुआ था लड़का बच्चा जो था, तो हमें बाहर निकलते वक्त मोबाइल ऐसे मोबाइल में झुककर देखते नहीं जाना है, हमें रास्ते से चलते वक्त सावधानी से जाना है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे ऐसे वाकया होते हैं कि जो हम अखबारों के कारण हम सचेत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और कहीं हमारे शहर के किसी और क्षेत्र में जहाँ बहुत दूर है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें सब कुछ पता चलता रहता है, यहाँ तक कि देश विदेश की सारी मुख्य जानकारियां भी हम प्राप्त कर पाते हैं। जो कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो हमें कुछ बाहर के बारे में ना पता चले, ये जरूरी नहीं है। हर चीज के लिए सतर्क और सचेत रहना आज के जमाने में सबके लिए, उम्र कोई भी हो, बेहद जरूरी है।
0: वैसे दीपा, अखबार केवल कागज के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होता है, बल्कि वर्तमान समय का सजीव दस्तावेज होता है। इसमें मौजूद हर तरह का समाचार हमें समाज, देश और विश्व स्तर से जोड़कर रखता है। और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं वे केवल घटनाओं से परिचित

0: होते बल्कि बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी सीख जाते हैं। और ऐसा होता है ना कि सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ जब हम अखबार के पन्ने खोलते हैं तब मानो ज्ञान की एक नई खिड़की खुल जाती है। कहीं विज्ञान की नई उड़ान है, कहीं खेल जगत की नई विजय गाथा है, कहीं संस्कृति की सुगंध है, तो कहीं समाज की चुनौतियों का आईना हमें नजर आता है।
1: ये इसी बात पर देखो एक संदेश आया है। ये संदेश में हमारे श्रोता भाई कहते हैं कि मैं सुबह सुबह हमेशा चाय पीते पीते अखबार पढ़ता हूँ और दोपहर में आराम से क्रॉसवर्ड, जो उसमें सेक्शन होता है जिसमें शब्द खाना पूर्ति करना होता है, वो करता हूँ। इससे मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होती है और मूड भी फ्रेश होता है।
0: ये बहुत अच्छी आदत है। ये ना खासकर बुजुर्गों को भी ये करना चाहिए। जो क्रॉसवर्ड होते हैं ना, उससे हमारा दिमाग तेज रहता है, उससे हमारा दिमाग चलता है। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है, दिमाग की नसें थोड़ी सी सिकुड़ने लगती हैं, तो क्रॉसवर्ड जरूर हमें बढ़ती उम्र के साथ करना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि स्कूल में किताब पढ़ने का शौक हुआ स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें, कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उनको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है। कितनी अच्छी बात है। वही एक साथी कहते हैं कि अखबार पढ़ना सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन के प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था। मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया इंग्लिश पेपर पढ़ो, इससे इंग्लिश अच्छी होती है। बस वो आदत दिनचर्या में शामिल हो गई है। बहुत लोग सुबह की चाय के साथ अखबार देखते हैं, जो एक बेहतरीन दिनचर्या है, जो ना सिर्फ देश दुनिया की खबरों से जोड़ता है बल्कि मानसिक विकास में भी मदद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अखबार जो भाषा का मूक शिक्षक है, इसकी शब्द संपदा हमारी अभिव्यक्ति को निखारती है, विचारों को परिपक्व बनाती है और दृष्टिकोण को व्यापक भी करती है। और संपत्ति लेख जो हम अगर पढ़ते हैं तो उससे हम तर्क करना सीखते हैं, जबकि प्रेरणादायक समाचार जीवन में आशा और उत्साह का संचार करते हैं। और देखो ना सोनाली, आज सोशल मीडिया के तेज बहाव में सूचनाएं क्षण भर में आती जाती रहती हैं, पर लेकिन अखबार सत्य, संतुलन और विश्वसनीयता का दीपक बनकर हमारे विश्वास को प्रकाशित करता है।
0: एक हमारी सखी ने भी लिखा है कि मुझे संपादकीय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें तार्किक और गंभीर सोच विकसित होती है। स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के बजाय प्रिंट या अखबार पढ़ने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ जाती है। वर्षों से सुबह का अखबार निश्चित और शांत होकर पढ़ना चाहती हूँ। सुबह का काम निपटाकर 9 बजे के बाद नाश्ता करने के बाद मैं पेपर पढ़ती हूँ और ज्ञानवर्धन के साथ मेरा बहुत समय अच्छा व्यतीत होता है। किसी कारणवश अगर दिन में पेपर छूट जाए तब भी मुझे समय मिलता है तो रात में मैं पेपर जरूर पढ़ती हूँ।
1: बिल्कुल। और ये संपादीय जो संपादकीय लेख जो है इसे पढ़ना बेहद जरूरी है बच्चों को भी, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव और मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो इसमें ये एडिटोरियल सेक्शन आपको बहुत काम करता है, बहुत मदद करता है जानकारी हासिल करने के लिए। और कहीं पर कुछ ऐसा सेक्शन आता है कि आपको ऐसे या निबंध कहीं पे लिखना है तो ये खंड आपको आसानी से उसको पार करने में मदद करता है।
0: और आप क्या करना है,
1: हमें तो गीत सुनना है।
0: सुनते हैं गीत।

0: तो भाई अखबारों से यारी करनी है और थोड़ा ये मोबाइल में भी बैठना जरूरी है, लेकिन वो
1: मोबाइल से दूरी
0: स्क्रोलिंग से
1: करना है।
0: उतनी नहीं। अगर ज्ञान की जरूरत उसके द्वारा लेनी है तो वो भी लेना जरूरी है। लेकिन एक देखिए संदेश यहाँ पर आया है, हमारे श्रोता ने लिखा है कि अखबार पढ़ना, ये सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था, और मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया था कि इंग्लिश पेपर पढ़ो, तो इंग्लिश इससे हमारी अच्छी हो गई। उसके अलावा एक और संदेश आया है, ये कहता है कि स्कूल में किताबें पढ़ने का शौक हुआ और स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उसको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है।
1: एक साथ ही लिखते हैं, अखबार पढ़ना ये ऐसी आदत है, जिस दिन अखबार की छुट्टी होती है उस दिन बहुत खालीपन लगता है, वो दिन अधूरा लगता है। जो समय अखबार पढ़ने का होता है समय कटता नहीं। मेरा समय दोपहर का है अखबार पढ़ने का, जब काम से फ्री होकर बैठती हूँ तो अखबार पढ़ती हूँ, और इसी समय सखी सहेली कार्यक्रम आता है तो उसको भी सुनते हुए अखबार पढ़ते हुए। अखबार हम जो पढ़ते हैं हमको वही अखबार अच्छा लगता है, जिस दिन गलती से कोई दूसरा डाल जाए तो पढ़ लेते हैं तो मजा नहीं आता है उस अखबार। मैंने अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी अखबार भी शुरू किया था, दोनों बस स्पोर्ट की खबर पढ़ लेते थे बस, बाकी कुछ नहीं। अखबार पढ़ने की आदत सभी को होना चाहिए, जिससे शहर देश विदेश के समाचार मिलते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है।
0: बिल्कुल, और ज्ञान बढ़ाने के लिए मेहनत करना जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, और यही हमारा आज का शब्द भी है। तो बहुत सारे विचार आए हैं, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत सफलता की कुंजी है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कठिन श्रम के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। किसी लक्ष्य को पाने या काम को पूरा करने के लिए किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक प्रयास, इसे लोग पुरुषार्थ या श्रम भी कहते हैं, जो सफलता की तरक्की की नींव है। मजदूरी, खेलकूद या खेती जैसे काम जिसमें शरीर की ताकत लगती है, मानसिक श्रम पढ़ाई योजना बनाना या बौद्धिक कार्य जिसमें दिमाग का उपयोग होता है।
1: और साथ ही कहते हैं
0: जी
1: पढ़ना चाह रहे,
0: बस इसमें एक बात और इन्होंने कही है कि इंसान हर कठिनाई का सामना करना सीखता है, मेहनत से व्यक्तित्व का विकास और मजबूती भी आती है।
1: एक कहते हैं कि कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कपाट को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है। यानी इन्होंने पूरा जीवन का सार ही लिख दिया इस छोटे से संदेश में।
0: सही बात है। एक संदेश और ये कह रहा है कि मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत में जगमगाता है तकदीर का सितारा। इतिहास गवाह है कि मेहनत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, बिना मेहनत जीवन में सफलता नहीं, मेहनत सफलता की ऊंचाइयों तक हमें पहुंचने में संभव कर देता है हमारा रास्ता।
1: एक सखी ने लिखा है, हमारी दोनों सखियां मेहनत करके इतने सुंदर और अच्छे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती है, फिर उन्हें सजाकर प्रस्तुत करती है, हम सभी मिलकर सुनते हैं, उनके बारे में दो शब्द कहते हैं, अंत में हम और आप दोनों ही खुश होते हैं। मेहनत करने के बाद जो मिलता है उसकी खुशी का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए मेहनत तो जरूरी करनी चाहिए, कभी कभी परिणाम देर से मिलता है पर मिलता जरूर है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और धन्यवाद कहते हैं।
0: बिल्कुल धन्यवाद उन्हें। और देखिए मेहनत सिर्फ सखियां नहीं, आप भी उतनी ही करते हैं।
1: इतने सुंदर मैसेज लिखते हैं।
0: बिल्कुल, कभी कभी तो ऐसा लगता है इस मैसेज को लें, किस मैसेज को छोड़ें, ये भी असमंजसता हमारे सामने आ जाती है। और मेहनत के बगैर तो कहीं कोई सुंदरता आ ही नहीं सकती।

0: दीपा,
1: जी
0: हमारे इतने सारे श्रोताओं ने, सखियों ने मेहनत पर भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी है, मेहनत के बिना कोई भी सपना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। किसान तपती धूप में खेत में पसीना बहाता है तभी धरती सोना उगलती है। विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करता है तभी सफलता उसके कदम चूमती है। कलाकार बार बार अभ्यास करता है तभी उसकी कला में निखार आता है। यानी सफलता अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे अनगिनत छोटे छोटे प्रयास छिपे होते हैं। याद रखिए, किस्मत का रास्ता दिखा सकती है, अवसर दरवाजा खोल सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का काम मेहनत ही करती है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह से एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि कभी कभी हम मन में कुछ बातें ठान रहते हैं और कि अमुक काम करेंगे, पर सिर्फ मन में ही सोचते ही रहते हैं और उस कार्य को करते ही नहीं। कार्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है, यानी मेहनत नहीं करने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम मनोरथे, यानी कि भाई तभी कोई भी काम पूरा होगा जब आप उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे।
0: और एक साथी कहते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी कार्य संभव नहीं है, और इस कड़ी मेहनत से जो प्राप्त होता है उसका आनंद ही कुछ अलग होता है।

0: परिश्रम से मिली सफलता में जो सुकून है वे कहीं और नहीं है। बेशक सफलता देर से मिले पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनाने से ज्यादा समय महल बनाने में लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश है, ये कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कबाड़ को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है।
0: और दीपा, जब हम कोई व्यंजन बनाते हैं तब भी हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ता है।
1: बात तो बिल्कुल सही कही।
0: क्योंकि ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि सिर्फ ये तो 2 मिनट में बन जाएगा। हाँ, बनने में भले ही उसे 2 या 4 या 5 मिनट लगते हैं, पर उसके पीछे जो तैयारी होती है ना, उसमें 1 घंटा चाहिए। कि उसमें जब हमें प्याज काटना होता है, मिर्ची काटना पड़ता है, फिर अगर कुछ हरी धनिया है तो उसे साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर उसके बाद में फिर बर्तन कौन से, सब चीज के जिस चीज में बनाना है हमें वो बर्तन अलग अलग चुनने पड़ते हैं, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। यानी मेहनत के सिवा हमारा व्यंजन भी नहीं बन सकता।
1: बिल्कुल सही कहा भाई, मेहनत हम करते चलेंगे लेकिन साथ में कैसे बनाना है वो भी सीखते चलेंगे। तो ओट्स की एक रेसिपी आई है सोनाली, ये इसमें सामग्री दिया है, ओट्स को लेना है आधा कप, पानी या दूध ले सकते हैं आप 1 से 1.5 कप तक, सब्जियां लेनी है प्याज टमाटर गाजर या मटर बारीक कटी हुई, आपके पसंद की और भी सब्जियां आप बढ़ा सकते हैं, तड़के और मसाले के लिए घी या तेल ले लें, जीरा हल्दी नमक और लाल मिर्च। बनाने की विधि है कि कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें, जीरा और प्याज डालकर हल्का भूने, बारीक कटी सब्जियां और टमाटर भी डालें, हल्दी नमक और मसाले डालकर इसको मिलाएं, ओट्स डालकर 1 मिनट तक और भूने। अब पानी या दूध डालकर उबले इसमें उबाल आने दें, 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता चलता चला जाएगा, ये ओट की तासीर, आप जितना जितना पानी डालेंगे वो सोखता चला जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए एक तरह की खिचड़ी की तरह ही हो गई। अब इसमें ओट्स के साथ आप चाहें तो थोड़ा हुआ भीगा हुआ इसी रेसिपी में भीगी हुई दाल डाल सकते हैं, जैसे मोगर की दाल या मूंग की दाल की जो छिलके वाली मूंग की दाल है वो भी डाल सकते हैं, तो ये अपने आप में एक पूर्ण आहार बन जाएगा।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ओट्स को कढ़ाई में भून ले, उसे ठंडा कर ले, उस भुने हुए चने के साथ उसे पीस ले, आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है। और इसी आटे से आप नमकीन पराठे और रोटी बना सकते हैं। ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज लगती है। देखिए ना, ओट्स के बहुत सारे व्यंजन बनाए, ओट्स का चीला बनाया जा सकता है। ओट्स को सूखा ही हमें पीस लेना है, उसमें फिर आप थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा मिला दे, उसमें अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट डाल दे, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना के और उसके चीले बना सकते हैं। गरम गरम भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद में इसी मिश्रण में अगर आप थोड़ा सा रवा डाल के, दही डाल के उसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दे, और जब बनाना हो तब उसमें फ्रूट सॉल्ट डाल के उसका हम ढोकला भी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो एक और संदेश देखिए, ये एक छोटी सी रेसिपी आई है सोनाली, कहते हैं कि ओट्स का चीला बनाने के लिए आप 1 कप ओट्स लें और 1 कप बेसन, दोनों मिक्स कर लें, इसमें लौकी प्याज टमाटर हरी धनिया, आप चाहें तो गाजर वगैरह भी कीस के कद्दूकस करके डाल सकते हैं, घी लगाकर इसको चीले बनाएं और हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और जब ये चीले बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा घर में बच्चों को कि आपने इन्हें ओट्स का चीला खिला दिया है ना?
0: बहुत अच्छा लगता है ओट्स, और उसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है। कि घी में थोड़ा सा ओट्स को भून लिया और उसके बाद में उसमें दूध डाल दिया। अगर आप उसमें शक्कर नहीं डालना चाहते हैं तो उसमें खजूर है ना, खजूर को थोड़ा सा घी में ऐसा नरम करके और उसे मिक्सी में से चला के उसकी जो पेस्ट है, खजूर पेस्ट डाल के उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं, तो बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। ऐसी पौष्टिक चीजें जब घर में बनती है ना, और जब घर उस खुशबू से महकता है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सही। और ओट्स का सत्तू बनाना भी बताया है हमारे एक श्रोता ने, कहते हैं कि ओट्स को कढ़ाई में भून लें, उसे ठंडा कर लें, इसे भुने हुए चने के साथ पीस लें, आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है। इस आटे से आप नमकीन पराठे बनाइए या रोटी बनाइए, ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज है।
0: और अब क्या करना है,
1: देखिए क्या करते हैं।

0: दीपा हमारे एक साथी लिखते हैं कि साथे ओट्स में कुछ भी मिक्स नहीं होता, ये केवल जई ओट्स शुद्ध रूप होते हैं। हालांकि स्वाद और सेहत के लिए लोग इसमें दूध, फल और मसाले मिलाते हैं। मीठे ओट्स में मिलने वाली चीजें, उन्होंने कहा कि उसको पकाने भिगाने के लिए दूध या पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसमें केला, सेब, स्ट्रॉबेरी या आम, मेवे या बीज, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, कद्दू के बीज, या मीठेपन के लिए उसमें शहद गुड़ या मैपल सिरप डाल दिया जा सकता है, और इस तरह से स्वादिष्ट ओट्स की रेसिपी बन सकती है।
1: तो आज तो बहुत सारे ओट्स बनाने के तरीके हमने भी सीख लिए हैं।
0: बहुत सारे सीखे, श्रोताओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं दीपा।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो, अब वक्त कहता है कि आज तो हमें लेना होगा विदा।
0: पहले श्रोताओं को धन्यवाद कह देते हैं, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और अब लेते हैं इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग।
1: मैं एक रेडियो स्टेशन गया, एफएम रेडियो तब नए नए आए थे। जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं नौवीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
2: बिल्कुल,
1: कि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सायानी साहब को मैं मिमिक किया करता था। तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा, क्योंकि जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मन्ना देखी आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन देने, लेकिन आदमी काम का। लेकिन वो छह महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे। ऑडिशन में अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो छह महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने छह महीने से उंगलियों पे गिने हो, छह महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिना है। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि छह महीने ऐसे नहीं होता है, छह महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने छह महीने डेट टू डेट लगा के
2: और दिन बढ़ गए इसके बाद।
1: नहीं नहीं, कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो छह महीना अगर काउंट करेंगे तो वो सात महीने हो जाता है सैटरडे संडे हटा के।

0: नेशनल हॉलीडेज हटा के, मैंने वो गिने ही नहीं। जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए, मैं बैठा, मैंने कॉइंस बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे। मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो का मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट,
0: हाँ चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: तो यहां से रेडियो शुरू हो गया
0: जी,
1: है ना। और ये यात्रा मुंबई तक कैसे आई?
0: रेडियो से रेडियो। हाँ, मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था बैंगलोर में, धीरे धीरे जो वहां की प्रादेशिक भाषा है कन्नड़ा, उसका संगीत बढ़ रहा था, जो कि बढ़ना ही चाहिए था। वहां कंपटीशन भी बढ़ रहा था, नए स्टेशन आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे मुंबई चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी नेशनल प्रोग्रामिंग हैंडल करता था उस स्टेशन में, और यहां से मैं बैंगलोर से वॉइस करके उनको भेजता था मेरी वॉइस हिंदी में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जगह शायद मुंबई है। तो हमारे स्टेशन में उस जमाने में लाफ्टर चैलेंज बड़ा चला हुआ था, तो रेडियो में भी एक ऐसा लाफ्टर चैलेंज का रेडियो वर्जन चल रहा था हमारे स्टेशन में, जिसके जज थे विनय पाठक। तो मैंने विनय पाठक का नंबर मेरे पास था, क्योंकि उनका मैं सैटरडे रिकॉर्ड किया करता था। उसके अलावा जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा मैं बेहतर तरीके से समझता था। तो इस बीच मुझे मन्ना दे साहब का एक पूरा 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रोड्यूस करने मिला, जिसमें मन्ना दे साहब खुद आए थे। तो वो मेरे लिए मेरा पहला जो कहना चाहिए सेलिब्रिटी मोमेंट था वो,
1: बिल्कुल।
0: हाँ, मन्ना दे साहब से मिलना, मधुशाला के CD पे उनसे साइन कराना, और प्रोग्राम के बाद जब मैं उनके साथ बैठा कुछ आधे घंटे, उनके साथ थोड़ी बात बात की, तो उन्होंने बोला यार ये सब सवाल तो अंदर करने चाहिए थे, अंदर वालों ने तो किया ही नहीं। तो उससे और मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आ गया। उसके बाद मैं उनके साथ बराबर टच में बना रहा। मेरे ख्याल से 1 मई को उनका जन्मदिन होता है,
1: और
0: हर 1 मई के 1 मई में उनको कॉल किया करता।
1: क्या बात है, मैं भी
0: तो तो और मुझे लगता है कि उनके जैसा गायक ना कोई आया ना कोई आएगा। तो ये हुआ था। इसके अलावा जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी या कोई कलाकार आ रहा होता था, तो मुझे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी कि तू इनका इंटरव्यू कर लिया कर, तुझे जो जो पूछना है पूछ लिया कर, और बाद में पैकेज करके हम लोग इसको चला लिया करेंगे स्टेशन। तो मुझे एक बार आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने मिला, और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने आधे घंटे इंटरव्यू किया, और जो फोन कटा मैंने देखा, मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना ही मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था। और वो बड़ी खुश थी कि अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैंने ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोली अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे। फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया।
1: मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए, तो बोलिए कौन सा गाना होगा?
0: तो मन्ना दे साहब का मेरा सबसे प्रिय जो गीत है, मेरे ख्याल से सबका ही होगा। जब हम मन्ना दे साहब के बारे में सोचते हैं तो तू प्यार का सागर है, सीमा फिल्म, शंकर जयकिशन,
1: हाँ बिल्कुल,
0: शैलेंद्र,
1: हाँ। सुनते हैं ये गाना
0: जी।

0: ये सब एडवेंचर चल रहे थे, इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बंबई आ जाना चाहिए। बंबई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के स्पूफ चला करते थे, फुली फालतू,
1: बिल्कुल।
0: तो वो मुझे बहुत पसंद था। वो मैं रेडियो में कर रहा था, मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री कर वर के कुछ एक
1: बना रहे
0: दस
1: थे।
0: बारह मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे संडे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहां जाऊं, उस चैनल में जाऊं और मैं बोलूं मैं ये करता हूं। तो मैंने मेरे सैंपल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा। मुझे वहां से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहाँ आया। यहाँ आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी। तो मैं यहाँ आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बम्बई में। विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया। वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो किया करते थे, तो उन्होंने बोला यहाँ आओ, राइटर से मिलो। वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे,
1: बिल्कुल उस जमाने में।
0: राहुल और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम में। राजेश देवराज हेड राइटर होते थे, तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था मेरा। मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं। मेरा बड़ा एक रहस्यमय ऐसा किरदार बन गया था मेरे दिमाग में, देवी कौन होंगे। बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही है देवी। तो और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब जरा भी मुझे दिक्कत नहीं आई। उन्होंने बुलाया, मैं स्टूडियो गया, मेरी लाइफ का मैंने पहला शूट देखा। किकू शारदा थे वहां पे, बहुत सारे लोग थे, और मुझे लगा यार ये जगह है जहां मुझे आना है, ये चीज मुझे करनी है। वो कभी हो नहीं पाया, कॉमेडी शो में कभी नहीं कर पाया विनय सर के साथ में। हम मिलते रहे, दो तीन चार बार मिले उसके बाद। अभी तो मुझे मुझे लगता है उनसे मिले मुझे 20 साल हो गए। तो वो सब करके मैं यहां से गया और मुझे लगा कि मुझे बम्बई चल पड़ना चाहिए, बैग पैक कर लेने चाहिए बैंगलोर से। तो बैग पैक किए, यहाँ एक दूसरा रेडियो स्टेशन था जहां से मुझे ऑफर थी और ठीक ठाक ऑफर थी, तो मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया। और मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ, तो रेडियो में फिर बहुत सारी मजेदार चीजें हुई। सुनील ग्रोवर के साथ मैंने बहुत काम किया उस समय में, लल्लन नाम का एक हमारा शो हुआ करता था। वो जो सारी चीजें मैं टीवी में करना चाहता था वो मैं फिर रेडियो में करने लगा, और मेरा पेट भर गया उस चीज से 4-5 महीने में। मैंने कहा अगर यही करना है तो
1: क्या
0: मजा नहीं
1: मतलब है।
0: आएगा। हाँ, ये वही वही सर्कल वाली बात हो गई ना कि उसी सर्कल में आप फिर से भागने लग गए। तो अब इससे

0: ज़्यादा क्या होगा। तो फिर ऐसा लगा कि मुझे एनिमेशन करने का बहुत मन था, और किसी के थ्रू, एक जान पहचान के थ्रू मैं वहाँ पहुँचा। मुझे करीब 8-9 घंटे बाहर बिठा के रखा गया स्टूडियो के, बिठा के नहीं रखा गया बोलना चाहिए उसको, वो लोग बिजी थे और मैं बिना खाए पिए मैं बैठा रहा बाहर। और फिर वो आए, वेंकटेश गायकवाड़ नाम था उनका, है अभी भी, वेंकटेश गायकवाड़ नाम है उनका। उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था वेंकटेश ने,
1: हाँ,
0: वो
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर।
0: बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर। तो वेंकटेश गायकवाड़ अपने आप में एक लेजेंड, लेकिन मुझे ही नहीं पता था। तो और वो जीनियस, मतलब मैड जीनियस जो बोलते हैं ना, मैड जीनियस थे वो। तो वो रैंडमली आए, बोले कुछ खाया तूने? मैंने कहा मैंने खाया है, तो सैंडविच खाते हैं चल। उन्होंने सैंडविच खाते खाते बात की, उन्होंने बोला तू क्या कर सकता है? तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। तो वो मुंबई के साथ मेरा पहला साक्षात्कार। फिर उन्होंने बोला तू करना क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे और गालियां दी। उन्होंने कहा फिल्म मेकर क्या, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है? तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना भी चाहता हूँ, और मौका मिला तो प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया। उन्होंने बोला ये सब हम भी चाहते हैं, लेकिन हम
1: नौकरी कर रहे हैं।
0: नौकरी कर रहे हैं हम लोग, तू यहाँ क्या करने आया? अगर तेरा ये सपना है तो जा वहां पे।

0: बर्ताव करते हैं। मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाख चमड़ी मोटी सही लेकिन इतनी मोटी अभी भी नहीं हुई है। और हम छोटे शहर से आते हैं तो हमारा गर्व का जो परसेंटेज है थोड़ा ज्यादा भी होता है। तो मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, तो आप बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा प्रोमो बनाना जानता है तू? तो मैंने कहा जानता तो नहीं लेकिन बना लूंगा मैं। तो उन्होंने एक एनिमे आता था उस समय में, उसका मुझे एक दो तीन एपिसोड दिए। उन्होंने कहा कि इसका प्रोमो बना के लिया। तो मुझे ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था, मुझे साउंड आता था क्योंकि मैं रेडियो से था। तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने अशोक कुमार की आवाज में खुद ही रिकॉर्ड किया, और फिर उसके ऊपर एक एडिटर के साथ बैठ के उसको एडिट लगाया एक रात में। और दूसरे दिन सुबह मैं पहुंच गया वापस, मैंने कहा ये प्रोमो हो गया। इतनी जल्दी? मैंने कहा मुझे आना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो मुझे रेडियो में फंसे रहना पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक आवाज किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। अरे ठीक है, तू हायर हो गया। तो इस तरीके से मैं टीवी में आ गया। बहुत बहुत घिसाई हुई टीवी में भी, ऐसा नहीं है कि चीजें आसान थी, मगर ये था कि मजा था उस काम में, बहुत मजा था। और लोग सब हम लोग जैसे ही थे, सब पागल थे, सब यंग लड़के थे, और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा समझता था, किसी को एडिट बहुत अच्छा समझता था, मैं थोड़ा बहुत वॉइस करता था, लिखता था, मुझे एडिट नहीं समझ में आता था। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के पूरक हो गए। और वो किया मैंने, वो करीब 1-1.5 साल किया मैंने।
1: यहां एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: और जावेद जाफरी वाला शो कैसे आया, वो तो बहुत बाद, वो तो इसके थोड़े बाद में, तो तो वो उसकी भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक, तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था। मैं लिखता था सिर्फ, मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहाँ एडिट कर, यहाँ भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहाँ प्रोमो करने के लिए गया, वहाँ बातचीत चल रही थी, एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज। तो दरिबा डायरीज का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको वैसी नहीं मिल रही थी। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दूँ। तब तो मैंने लिखा नहीं था थ्रिलर कोई भी,
1: ऐसी बोल दिया।
0: हाँ मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पसंद आए तो मत यूज कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिबा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में। हाँ उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन।
1: वाह वाह,
0: ये नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस, वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे। और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे। तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास 2 शोज है, मैं आता हूँ आपको पिच करता हूँ।

0: तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से, 20 सेकंड।
1: वाह वाह
0: मैं
1: वाह।
0: अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो अभी सोच के चल रहा था कि 3 महीने तो जद्दोजहद में गुजरने वाले हैं, ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें, तो मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था, तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया। कि तो उन्होंने बोला कि जावेद इज डूइंग अ शो विद अस, हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की जरूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे आ गया था। एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूँ, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था।
1: बिल्कुल, वो सिनेमा की बातें कर रहे थे, प्रॉपर वही शो की बात हो रही है।
0: वही शो की बात हो रही है। तो डिस्को डांसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जावेद भाई के दो शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था, ये दो मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था, और
1: राइट।
0: अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें। तो फिर तो मैं लालची हूं, मैं सब करना चाहता था, मैं लिखूंगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूंगा, मैं एडिट पे भी बैठूंगा, और नसीब से वो चीज मेरे प्लेट में आके गिर गई। तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर फिल्मों के रेफरेंस के साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया। तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, उन्होंने ऐसे बात शुरू की कि राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है। मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के
1: राइट
0: फुटेज
1: राइट।
0: लेके। तो उन्होंने बोला तुमको पता है, तो मैंने कहा मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म। ऐसे दो तीन बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की, वहां हमारा आइस ब्रेक हो गया, वहां उनको लगा कि
1: आता है इसको।
0: इसको कुछ तो पता है, अगर सब पता नहीं भी है तो। उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे, धर्मवीर मनमोहन देसाई की फिल्म है, तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था। उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ, फिर देखते हैं। तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मजा आया, पहले भी देखी हुई थी। और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी उस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स डाले उसमें, कि कैसे टिकर आएगा, टिकर में जब उस समय में बाघों की गिनती कम हो गई थी, 1411 बच्चे थे इंडिया में, तो उसमें वो शेर को प्राण मार देते हैं, तो हमने ऐसे काउंटडाउन रखा था कि जितने शेर मरते हैं ना हम 1411 से कम करते जाते हैं ग्राफिक्स में।
1: अच्छा
0: तो
1: रहा ये
0: हाँ हाँ
1: पंच।
0: हाँ तो ये सब पंचेज उसमें मैंने भरे, और ये पंचेज थोड़े नए जमाने के थे ना, क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: हाँ टिकर विकर नहीं थे पहले, वो जब फ्लैशबैक वगैरह आ रहे थे तो टिकर में ये सब मस्ती नहीं हो सकती थी, एनिमेशन नहीं हो सकता था उनमें। तो मैंने उनको बताया ये ऐसे करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो सोमराई सोर्ड है तो हम उसका एक टेलीशॉपिंग नेटवर्क का एड बना देंगे, कि वो समुराई नहीं बोलते ना प्राण साहब, सुमराई कला बोलते हैं इसको। तो मैंने कहा
1: बिल्कुल।
0: सुमराई कला कैसे सीखें, रैपिड एक्स सुमराई कोर्स का एक हम ये बनाएंगे
1: लर्निंग
0: एड।
1: कोर्स।
0: हाँ तो ऐसे करके मैंने उनको 5-6 गैग्स बताया कि ये गैग्स हम लोग हर ब्रेक के पहले करेंगे, तो एक फेक एड आएगा उसके बाद असली एड शुरू
1: असली
0: होंगे।
1: ऐड आएगा।
0: हाँ तो उनको आइडिया जम गया, वो आइडिया मेरे लिए लैंडमाइन साबित हुआ, क्योंकि वो आइडिया उनको इतना जम गया कि वो अब हर एपिसोड में हमें करना पड़ता था। तो वो किसी एपिसोड में मिलते हैं ब्रेक के बाद था ही नहीं हमारे शो में, 26 एपिसोड में, 26 एपिसोड, हर एपिसोड में 4 ब्रेक्स, तो 100 ऐसे एड्स,
1: लिखने थे।
0: इन आउट इन आउट, तो 200 एड्स हमने बनाए। तो वहां से उस शो की शुरुआत हुई। फिर वो शो मैंने लिखा भी, को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया, उसके साथ ग्राफिक्स भी किए, उसमें एनिमेशन भी किया, VFX भी किया, मतलब उस शो में शायद ही सेट में झाड़ू भी लगाई है। तो उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरा हाथ नहीं लगा हो। और वो करते करते एक मतलब जावेद भाई के लिए मन में एक बहुत रेस्पेक्ट तो है ही, लेकिन वो एक रेस्पेक्ट के साथ साथ ना प्यार भी बहुत बढ़ा, क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: उनको बतौर इंसान जाने का मौका मिला। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि वो भी मुझे लगता है कि मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, छोटे भाई के जैसा मुझे हमेशा वो ट्रीट करते हैं, मेरे एक कॉल पे वो मेरे लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं आके। तो वो जो

0: एक रिश्ता बना मेरे ख्याल से उस शो से बना। वो
1: बिल्कुल
0: शो बनता रहा 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक मेरे ख्याल से मैं मेरे घर में कम रहा हूँ और उस सेट पे ज्यादा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये शो बना। ये शो बनते बनते उस चैनल के साथ ये हुआ कि उनके बजट्स खत्म हो गए, तो जो मेरा शो उन्होंने खरीदा था वो तो बना नहीं। हाँ, मैंने उनसे वापस खरीदा, जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने उनको वापस किए और शो वापस खरीदा, क्योंकि मैं वो शो कहीं छोड़ना नहीं चाहता था। और मेरा ये भी मानना रहता है कि चीज़ों को लीगली लॉफुली ठीक से क्लीन करके उनको क्लोज करना चाहिए, उनको लटकने नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ हम जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उलझे होते हैं ना कि वो लीगैलिटीज को नहीं समझते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और
1: वो
0: कानूनी दांव
1: लूज
0: से
1: एंड छूट जाते
0: वो
1: हैं जो
0: लूज एंड
1: बाद में
0: ऐसे
1: बहुत
0: ऐसे
1: भारी पड़
0: छूटते
1: जाते
0: हैं
1: हैं।
0: जो बाद में अपना मतलब आप दो लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो हमेशा ये अच्छा है कि आप जाएं और उस लूज एंड को बंद कर दें,
1: बिल्कुल
0: या तो आपके हाथ में हो या सामने वाले के हाथ में हो, मन में कड़वाहट ना रहे, रिश्ते बने रहें। तो मैंने वो चैनल के पास जाके उनसे वापस खरीदा, वो उनको पैसे वापस किए। जावेद भाई के साथ मैंने फिर दूसरा शो किया, तो दो शोज हमने किए। उसके बाद काफी काम किया हमने साथ में। ये करते करते एनिमेशन तो चल ही रहा था, तो एनिमेशन में मैंने बहुत काम किया, बहुत इन द सेंस कि बहुत वो शोज किए जिन पे मुझे बहुत गर्व है। तो वो कुछ 3-4 साल का एक कालखंड है जिसमें मैं विविध भारती भी आता था वाणी कोर्स करने, और एक फैंटेसी शो था जिसपे मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, जावेद भाई का एक शो था और दो एनिमेटेड शोज थे। तो टाइम ही नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं होता था। और मतलब ये पर्सनल बात है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं कई बार पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होता है, उस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे इस बीच स्ट्रेस लेवल्स, नींद बराबर नहीं हो रही है, आराम बराबर से नहीं हो रहा है, लगातार भाग दौड़ है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में डायबिटीज हुई इस वजह से, क्योंकि काम इतना था, चीजें इतनी हो रही थी, चारों दिशाओं में आप भाग रहे थे कि अपने लिए समय नहीं था। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य है जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। प्रोजेक्ट्स क्या हैं,
1: बिल्कुल,
0: वो आते हैं और जाते हैं।
1: यस, सही बात है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और गाने नहीं सुने। बातचीत को यहां पर रोकते हैं आलोक, और एक गाने की जगह बनाते हैं। चूंकि जावेद जाफरी का जिक्र चल रहा है, तो एक ही गाना है जो जावेद जाफरी की सबसे बड़ी पहचान है,
0: उनका पहला गाना
1: मेरी जंग का।
0: मेरी जंग का, मेरे ख्याल से उससे पहले डांसिंग सिंगिंग विलन कोई आया ही नहीं था मेरी जंग के
1: बिल्कुल
0: पहले।
1: बिल्कुल,
0: तो बोल बेबी बोल
1: वो सुनते हैं।
0: जी।
2: वेलकम फ्रेंड टू द शो दैट नेवर एंड्स। आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस। यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव द बीट। सो देन, व्हिच बीट वुड यू लाइक? दोस्तों, कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
3: नो।
2: सांबा?
3: नो।
2: रॉम्बा?
3: नो।
2: सांबा?
3: नो।
2: टेकिला?
3: नो।
2: टैंगो?
3: नो।
2: चार्ल्सटन?
3: नो।
2: पोल्का?
3: नो।
2: नो।
3: नो।

0: आलोक, ये तमाम चीजें चल रही थीं और जाहिर है कि उसके बाद काम आगे बढ़ा, तो आगे के कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताइए।
1: शोले की 40वीं वर्षगांठ थी 2015 में। मुझे शोले के एनिमेटेड वर्जन पर काम करने मिला, जिसका मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था और राइटर भी था, और कुछ हिस्से मैंने डायरेक्ट भी किए थे। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का सबब था। ये फिल्म मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है, और जब इसका प्रमोशन शुरू हुआ इस एनिमेटेड फिल्म का, तो कई जगहों पे सलीम साहब का एक छोटा सा कोट है, फिर जावेद साहब का एक छोटा सा कोट है, उसके आसपास मेरा एक छोटा सा कोट है,
0: वाह
1: तो वो
0: वाह।
1: मेरे लिए बड़ा, उसको बोलते हैं किक, तो मेरे लिए बड़ी किक थी वो देखना। ये करते करते मैंने ग्राफिक इंडिया ज्वाइन किया, जहां मुझे सबसे पहला जो शो मिला वो था अमिताभ बच्चन साहब का पहला एनिमेटेड शो,
0: वाह वाह।
1: जो मैंने डेवलप भी किया, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया। वो करते करते मुझे अमित जी के साथ काफी समय बिताने का मौका मिला,

0: मैंने करीब उनके साथ 3 से 4 महीने डबिंग किए, और जो चीज़ मुझे वहाँ से सीखने को मिली वो मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ रहे, वो है समय का पाबंद होना
1: जिसके लिए वो बहुत मशहूर है।
0: बहुत ज़्यादा। वो 6 बजे की रिकॉर्डिंग सुबह करते थे, 5:55 वो स्टूडियो पे होते थे, तो हम
1: गजब।
0: लोगों को भाग के समय पे पहुंचना पड़ता था। अगर उन्होंने 6 बोला है तो वो 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे। वो 6:01 पे कभी नहीं आए
1: बिल्कुल।
0: इतने महीनों में। दूसरी चीज़ है जो उनकी अपने काम के प्रति लगन है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ये बात बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक बिल्कुल अलग तरीके का अनुभव था कि मैं बच्चन साहब के सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने उनसे 7, 8, 9, 10 टेक भी मांगे हैं तो मुझे 10वां टेक तक मिला है।
1: वाह
0: उन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों मांग रहे हो। हाँ, ये बोला है कई बार कि मुझे एक बार बता दीजिए आपको कैसा चाहिए, तो मैं आप मुझे बोल के बताइए, मैं एग्जैक्टली वैसा बोल के बता दूंगा। तीसरी चीज जो मैंने वहां सीखी वो ये थी कि जितने टेक्स फाइनल होते थे, अब तो डिजिटल है तो आप टेक्स को फाइनल मार्क कर लेते हैं, लेकिन बच्चन साहब एनालॉग स्क्रिप्ट के ऊपर में लगातार लिख रहे होते थे कौन सा टेक मैंने फाइनल बोला है, 6th टेक, सेकंड टेक, फर्स्ट टेक।
1: वाह
0: जब डबिंग खत्म हुई उन्होंने मुझे पूरे स्क्रिप्ट का ऐसा पुलंदा दिया, उन्होंने कहा कि इसमें सारे टेक्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा सर हम मार्क कर रहे थे। बोले फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलती की गुंजाइश ना रहे।
1: गजब।
0: तो उतना डिटेल रखना। चौथी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी, पहली बार मुंबई में मेरे से किसी ने देवनागरी में स्क्रिप्ट मांगी थी।
1: वाह वाह वाह वाह। वरना हम
0: सब
1: अपने
0: सब सब
1: सुनने वालों
0: रोमन
1: को
0: सब
1: बता
0: रोमन
1: देंगे,
0: में
1: सब
0: पढ़ते
1: लोग
0: हैं,
1: रोमन
0: सब
1: में
0: रोमन
1: मानते
0: में
1: हैं।
0: पढ़ते हैं।
1: जी
0: बच्चन साहब ने देवनागरी में मांगी क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरे संवाद हैं वो देवनागरी में होंगे तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ के बेहतर तरीके से अदा कर सकता हूँ। वहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे साथ ये हुई कि उन्होंने पहले 2 दिन जब डबिंग कर ली, उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ के नहीं हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ लेकिन बहुत सालों से यहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ के नहीं हैं क्योंकि मुझे हिंदी में कोई भी वर्तनी में त्रुटि नहीं मिली है। तो वो
1: क्या बढ़िया
0: एक
1: बात है।
0: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारी टीम के लिए, हमारे लिए। मेरी सिस्टर ने ये सारी देवनागरी में ये संवादों को देवनागरीकरण किया था रोमन से। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं अगर देखें तो, लेकिन ये इतनी छोटी चीजें हैं नहीं। तो ये सीखने की चीज थी। एक समय था जब मैं 11 बजे की मीटिंग के लिए घर से 11:30 बजे निकलता था लेकिन एक बार अमित जी के साथ ये पूरा शो करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी समय पे नहीं पहुंचने वाला काम कर रहा हूं। मैं आमतौर पे कोशिश करता हूँ या तो मैं समय पे पहुंच जाऊं या मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले लोगों को बता दूंगी मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले बहुत बहुत केयरलेस था मैं। तो ये चीजें आप देखें तो यही चीजें हैं जो इन लोगों को इतना बड़ा बनाती हैं। और मैं जैसा मैं कह रहा हूं कि ये सब क्लीशे है, सब 1000 बार आपने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन मेरे लिए वो 1-on-1 पर्सनल चीज है जो उनसे सीखने की थी।
1: ऑफ कोर्स।
0: तो वो किया हमने। अस्सा फोर्स नाम था उस शो का, साइंस फिक्शन था, और बहुत अच्छा उस पे हमें रिस्पांस मिला। उसके बाद दूसरा शो जो हमने किया वो SS राजामौली के साथ किया। तो बाहुबली आई थी तब, पहली बाहुबली आई थी, वो दूसरी बना रहे थे। तो हमने उनको एक एनिमेटेड शो पिच किया कि दोनों बाहुबली के बीच में एक एनिमेटेड शो आ जाएगा तो लोगों के बीच में वो एक
1: बनी
0: उत्साह बना
1: रहेगी।
0: रहेगा माहिष्मति के बारे में। तो वो भी एक सीखने वाली बात थी कि हम जब पहुंचे तो राजामौली साहब ने हमको 3 घंटे का समय दिया था और वो 11 बजे आने वाले थे। वो .11 बजे आए। उन्होंने बाथरूम स्लीपर पहनी हुई थी, एक हल्की सी टी शर्ट पहनी हुई थी जो अगर आप देखें तो नितांत साधारण कपड़ों में स्लीपर पहन के वो अंदर आए, जिन्होंने 1.5 साल पहले देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म डायरेक्ट की थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: पूरे धूल में सने हुए थे वो, क्योंकि वो कोई तो एक्शन सीन देखने गए हुए थे और पूरा सेट का जायजा लेकर आए थे। उनके पिताजी थे वहां पे और वो दोनों तेलुगु में बात करते थे, फिर राजामौली साहब हम लोगों को ट्रांसलेट करके बताते थे। फिर उनको पता चला कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोला इधर आओ मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। तो उन्होंने अपने
1: वाह
0: फोन पे मुझे अमर चित्र कथा के कुछ पैनल्स दिखाए जिनमें से डायलॉग्स उन्होंने बाहुबली में इस्तेमाल किए थे और कुछ डायलॉग्स वो आगे बाहुबली में इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें एक शिवाजी का डायलॉग है छत्रपति शिवाजी महाराज पे जो अमर चित्र कथा है, उसके 2 संवाद थे, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो वो उस दिन मुझे पता चला कि राजा मौली असल में बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन है। तो वो एक जो चीज थी उस चीज ने हमारे बीच का जो आइस ब्रेकिंग था बहुत ईजी कर दिया। तो वही है जैसे अरेबियन नाइट्स में होता है, आप छोटी छोटी चीजें करते चलते हैं और वो आगे जाके
1: बड़ी
0: जर्नी
1: हो
0: में
1: जाती
0: कहीं
1: है।
0: कहीं काम आती हैं।
1: बिल्कुल
0: तो ये जर्नी में ऐसा लग रहा था कि कॉमिक्स कहीं छूट रही है, मगर फिर कॉमिक्स इस तरीके से

0: वापस मेरे जीवन में आ जाया करती थी। तो इसकी वजह से हमें वो शो करने को मिला, हमने वो शो किया। पहला सीजन मैंने डेवलप करने में को डेवलप किया था लोगों के साथ में। इसके बाद कुछ और एनिमेशन की चीजें हुई। एनिमेशन छोड़ के फिर मैं बाहर आया। मैं एनिमेशन से थोड़ा सा एक रास्ता आ गई थी एनिमेशन में, तो मैं उससे बाहर आना चाहता था। दूसरी चीज थी कि मैंने मेरे जो हीरोज हैं जिनके साथ काम करने का एक सपना होता है हमारा, वो मैंने करीब करीब पूरा कर लिया था। मैंने राजामौली साहब के साथ काम कर लिया है, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम कर लिया, स्टैनली के साथ काम कर लिया है। तो अब इससे बड़ा क्या, या तो इससे बड़ा कुछ हो।
1: बिल्कुल
0: शोले कर ली थी तो इससे नीचे जाने का कोई मतलब
1: मतलब
0: नहीं
1: नहीं।
0: बनता था। तो मुझे लगा कि अब इंडस्ट्री बदलनी चाहिए मुझे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, फिर मैं वो साइकिल में दौड़ता रहूंगा। तो मैंने लाइव एक्शन में हाथ आजमाना शुरू किया। मैं निर्देशक बनना चाहता था, तो मैंने कहा कि मैं निर्देशन करूंगा। इस बीच मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत पहले, तो वो फिल्म की स्क्रिप्ट घूम रही थी स्टूडियो स्टूडियो। वो 2018 के आसपास एक स्टूडियो ने ले ली और उन्होंने बोला इसको वेब सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक मिडिल क्लास ह्यूमर था। मुझे ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में बहुत पसंद है, तो ये उस स्पेस में था और उस समय तक कोई मिडिल क्लास ह्यूमर कर नहीं रहा था, तो बहुत रिस्की माना जाता था ये। अब तो क्या है कि बहुत सारे शोज आ गए
1: ज्यादा
0: हैं,
1: हो रहे
0: बहुत सारी
1: हैं।
0: चीजें आ गई हैं। उस समय में बहुत रिस्की माना जा रहा था और तकदीर से मुझे वो डायरेक्ट करने भी मिला। और मुझे कुछ मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स हैं जिनको डायरेक्ट करने मिला मुझे, तो मैंने डायरेक्ट किया। फिर मुझे लगा कि और वो हुआ क्या कि मेरे डायरेक्ट करते करते मैं वो सीरीज जो है पहले 6 एपिसोड की थी, फिर उन्होंने उसको 12 बना दिया, फिर उसको 24 कर दिया। अब 24 एपिसोड मैं लिखूं भी और डायरेक्ट करूं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो पहले 6 एपिसोड करके मैंने वो सीरीज लिखी और धीरे धीरे करके मैं लाइव एक्शन की तरफ मुड़ने लगा।
1: इस सीरीज का क्या नाम था?
0: सीरीज का नाम है बब्बर का टब्बर। नाम क्योंकि मैंने नहीं दिया है तो आप मुझे जज ना करें।
1: ठीक है। इन दिनों क्या चल रहा है?
0: इन दिनों एक शो है जो मैं लिख रहा हूँ, लिमिटेड शो है, 5 एपिसोड का वो लिख रहा हूँ। एक फिल्म लिखी है जो एक बड़े स्टूडियो ने ले ली है। एक फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद मैं उसको लिखना शुरू करूंगा। मगर उसकी कहानी मेरे पास है तो मुझे मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समय मुझे उसको लिखने में लगेगा। एक कॉमिक्स अभी अभी खत्म किए करके जो अभी मुंबई में लॉन्च हुई थी, वो एक फिल्म पर बेस्ड कॉमिक है। वन नाम की एक फिल्म आ रही है, तो उसका एक स्पिन ऑफ कॉमिक है वो, तो वो काफी बढ़िया लॉन्च हुआ अभी पिछले हफ्ते। मैं चाहता हूँ इस साल मैं 2 किताबें और करूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक मेरी कॉमिक है जो किसी भी समय इस साल आ जाएगी, वो बन के रेडी है। हाँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जुलाई अगस्त तक आ जाएगी वो किताब। इसके अलावा मुझे पता नहीं, कुछ और छूट रहा हो तो।
1: यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: मुकद्दर का सिकंदर
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: टाइटल ट्रैक, कल्याण जी
1: बोलिए।
0: आनंद जी हिंदी वर।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये गाना सुनते हैं।

0: आलू, क्या आपको लगता है कि कॉमिक्स का दौर अब बहुत सुनहरा दौर बीत चुका है?
1: जो मेरे अंदर का कॉमिक्स प्रेमी है वो इसको कभी नहीं मानेगा। लेकिन कॉमिक्स या किसी भी मीडियम का दौर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीतता है। ये एक साइकिल है, चक्र है, तो ये खत्म होता है और फिर आता है। तो जैसे भारत में जो फैंस थे उन्होंने अपने या तो पब्लिकेशन शुरू किए हैं या किताबें बनानी शुरू की हैं। हम भी उनमें से एक हैं, हमने भी अपनी एक कॉमिक बुक कंपनी शुरू की है। तो उसमें आइडिया ये था कि हम वो किताबें करेंगे जो हम पढ़ना चाहते हैं, और हमें पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं फिलहाल, तो वो कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए किताबें कर रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान है। और एक दूसरी चीज़ जो कॉमिक्स के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है वो है कॉमिक्स का अडेप्टेशन शोज में, फिल्म्स में, एनिमेशन शोज में। और मुझे लगता है कि वो दौर हमारे यहाँ करीब करीब आ चुका है। अगर अमेरिका भी देखें तो मार्वल या डीसी को अपनी पहली फिल्म बनाने के पहले, सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है, 77 या 78 में, तो करीब 40 साल लगे है ना। स्पाइडरमैन 1963 या 62 का है, 63, और पहली स्पाइडरमैन 2002 में आई है। तो इतना समय तो लगता है, 40 साल का समय तो लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉमिक्स उद्योग है वो ये अपने 40वें वसंत में प्रवेश कर चुका है करीब करीब। तो अब दो चीजें हैं, एक

0: तो जो अब नए फिल्म मेकर्स हैं या जो नए क्रिएटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ये कॉमिक्स पढ़ के आए हैं,
1: बिल्कुल
0: वो फैंस हैं पहले, क्रिएटर्स बाद में। बहुत लोगों का ऐसा है कि उनका सपना है कि एक नागराज पे कॉमिक बने या डोगा पे कॉमिक बने,
1: बनते
0: चाचा
1: बनते
0: चौधरी
1: रह
0: पे
1: जाती
0: शोभा।
1: है,
0: हाँ,
1: मतलब कई बार
0: डोगा
1: अनाउंस होता
0: डोगा
1: है।
0: डोगा की तो मैंने भी लिखी है फिल्म, एक ड्राफ्ट तो मैंने भी लिखा है। हाँ, तो वो बनी नहीं, लेकिन चाचा चौधरी पे शो बन गया है। लेकिन चाचा चौधरी पे मुझे लगता है कि फिल्म बन सकती है। चाचा चौधरी और राका बहुत अच्छे किरदार हैं जिन पे कुछ बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन पे मुझे लगता है कि चीजें आज नहीं तो कल बननी शुरू हो जाएंगी। मेरी जनरेशन तो ये फिल्में देखेगी।
1: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।
0: तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दौर चला गया है। मुझे ये लगता है कि इस मीडियम को थोड़ा सा इवॉल्व होने की जरूरत है, जो इवॉल्व वो हो रहा है। बस ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का
1: दौर
0: जो
1: है
0: दौर है।
1: बिल्कुल। तो हम उम्मीद करें कि ये चीजें जल्दी सामने आएंगी। आलोक, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातें की।
0: शुक्रिया यूनुस भाई, मैं जैसा कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए एक अलग तरीके का मोमेंट हो गया है, क्योंकि मैं स्कूल में था तब से मैं आपको सुनता आ रहा हूँ, आपसे मिलना भी होता रहा है। मैं यहाँ
1: बिल्कुल।
0: आके मैंने वाणी कोर्स भी किया है तो मेरे लिए घर वापसी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ, और क्या कहूँ मैं,
1: बहुत बहुत
0: शुक्रिया
1: शुक्रिया, फिर मिलते हैं।
0: जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
3: आज के

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: सबसे बढ़िया रोल नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है FM 103 पर। बजे हैं संध्या के 5 और वक्त हो चला है यूथ के फेवरेट कार्यक्रम युववाणी का। तो लीजिए सुनिए अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी युवा साथी दिव्या सिंह, लेकर आ गई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम युव वाणी, जहाँ करेंगे हम आज की बात, देंगे आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और साथ ही कराएंगे आपका मनोरंजन फिल्मी गीतों के साथ। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। साथियों, हर वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन पूरी दुनिया में युवाओं से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने, उनकी उपलब्धियों को सम्मान देने और उन्हें समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने का अवसर प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस केवल एक उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि यह हमें सोचने का अवसर देता है कि क्या हमारे युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। क्या उन्हें उनके गुणवत्ता के अनुसार शिक्षा और रोजगार मिल रहा है कि नहीं। दोस्तों, आपको बता दूं कि युवा परिवर्तन में सबसे महत्व प्रभावशाली माने जाते हैं। तकनीक, शिक्षा, विज्ञान, खेल, कला और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में युवा लगातार नए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं की इन्हीं क्षमता को पहचानने का अवसर देता है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हर युवा को यह याद रखना चाहिए कि सफलता केवल बड़ी उपलब्धियां हासिल करने से नहीं आती। सफलता का अर्थ है अपने भीतर की क्षमता को पहचानना और उसे सही दिशा में उपयोग करना आवश्यक है। असफलता से डरने के बजाय उसे सीखना चाहिए। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। समय का सही उपयोग और साथ ही लगातार नई चीजें सीखते रहना चाहिए। साथियों, चर्चाओं का सिलसिला तो हमारा यूं ही चलता ही रहेगा। इसी के साथ आइए सुनवाते हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर डॉक्टर नीतीश कुमार खरे जी के द्वारा ये कविता पाठ।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितेश कुमार खरे है और आज मैं सबसे पहले अपने युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो युवा हैं वो हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति और उसके भविष्य के निर्माता हैं, क्योंकि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है। अतः आज हमारे देश का विकास युवा पीढ़ी के हाथों में है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर सभी युवा संकल्प लें कि वे अपनी ऊर्जा को देश और समाज की प्रगति में लगाएंगे। आज मैं कुछ कविताओं के माध्यम से अपने युवाओं को प्रेरित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अपनी पहली कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है वे श्रेष्ठ युवा कहलाते हैं। इस कविता में जो श्रेष्ठ युवा हैं उनका चित्रण किया गया है कि युवा किस तरह के होने चाहिए। जो आजकल युवा भटक रहे हैं उनके स्थान पर

युवाओं को कैसा होना चाहिए, किन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, आइए कविता के माध्यम से हमें देखते हैं। परम शक्ति के केंद्र बिंदु हैं, परम शक्ति के केंद्र बिंदु हैं, देश का मान बढ़ाते हैं। परम शक्ति के केंद्र बिंदु हैं, देश का मान बढ़ाते हैं। दूर हटाकर अंधकार को, दूर हटाकर अंधकार को ज्ञान का दीप जलाते हैं। दूर हटाकर अंधकार को ज्ञान का दीप जलाते हैं। राष्ट्र सृजन में लीन रहें, राष्ट्र सृजन में लीन रहें, वे श्रेष्ठ युवा कहलाते हैं, श्रेष्ठ युवा कहलाते हैं, श्रेष्ठ युवा कहलाते हैं। अफवाहों के अवरोधक, अफवाहों के अवरोधक जिनको रोक नहीं पाते, अफवाहों के अवरोधक जिनको रोक नहीं पाते, बल पौरुष के आगे शत्रु, बल पौरुष के आगे शत्रु जिनको टोक नहीं पाते, बल पौरुष के आगे शत्रु जिनको टोक नहीं पाते। मातृभूमि पर जान लुटाकर, मातृभूमि पर जान लुटाकर देश का मान बढ़ाते हैं और राष्ट्र सृजन में लीन रहें, राष्ट्र सृजन में लीन रहें, वे श्रेष्ठ युवा कहलाते हैं, श्रेष्ठ युवा कहलाते हैं। दीन दुखी की सेवा को, दीन दुखी की सेवा को अपना धर्म समझते हैं, दीन दुखी की सेवा को अपना धर्म समझते हैं। परहित में लीन बने रहना, परहित में लीन बने रहना जीवन मर्म समझते हैं। कष्टों के कंटक पर भी, कष्टों के कंटक पर भी हंसकर कदम बढ़ाते हैं, कष्टों के कंटक पर भी हंसकर कदम बढ़ाते हैं। और राष्ट्र सृजन में लीन रहें, राष्ट्र सृजन में लीन रहें, वे श्रेष्ठ युवा कहलाते हैं, श्रेष्ठ युवा कहलाते हैं। व्यसनों के काले शत्रु, व्यसनों के काले शत्रु संकल्प कभी ना तोड़ सकें, व्यसनों के काले शत्रु संकल्प कभी ना तोड़ सकें। बढ़ते फौलादी कदमों को, बढ़ते फौलादी कदमों को कोई बाधा ना मोड़ सके, बढ़ते फौलादी कदमों को कोई बाधा ना मोड़ सके। मात पिता सह बंधु सखा, मात पिता सह बंधु सखा सबको सम्मान दिलाते हैं और राष्ट्र सृजन में लीन रहें, राष्ट्र सृजन में लीन रहें, वे श्रेष्ठ युवा कहलाते हैं, श्रेष्ठ युवा कहलाते हैं। हमारे देश में बहुत से युवा हुए हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। विश्व विख्यात युवा संत स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हमारे युवा आज भी प्रेरणा लेते हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो हमारे युवाओं को तब तक नहीं रुकना है जब तक उनको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मैं युवाओं में जो उनकी असीमित शक्ति है उससे संबंध से एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है तुम युवा हो। तुम युवा हो, तुम युवा हो, शक्ति अपनी जान लो, तुम युवा हो, शक्ति अपनी जान लो, ठान लो जो वह मिलेगा मान लो, और ठान लो जो वह मिलेगा मान लो। तुम युवा हो, शक्ति अपनी जान लो, तुम युवा हो, शक्ति अपनी जान लो। एक पल भी रुकना, एक पल भी रुकना समझो हार है, एक पल भी रुकना समझो हार है, चलते रहना जीत का उद्गार है, चलते रहना जीत का उद्गार है। व्यर्थ की चिंता चिता का रूप है, व्यर्थ की चिंता चिता का रूप है, जिंदगी में छाओं के संग धूप है, जिंदगी में छाओं के संग धूप है। यूं ना बैठो जिंदगी से ऊब कर, यूं ना बैठो जिंदगी से ऊब कर, लक्ष्य साधो साधना में डूबकर, लक्ष्य साधो साधना में डूबकर। हो प्रबल मन भावना यह ज्ञान लो, हो प्रबल मन भावना यह ज्ञान लो, है छुपी संभावना पहचान लो, है छुपी संभावना पहचान लो। तुम युवा हो, तुम युवा हो, शक्ति अपनी जान लो, तुम युवा हो, शक्ति अपनी जान लो, ठान लो जो वह मिलेगा मान लो, ठान लो जो वह मिलेगा मान लो। जीवन में सफलताएं और असफलताएं दोनों आती हैं। जब असफलताएं हमारे जीवन में आती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और निराश होकर

कर्तव्य से दूर हो जाते हैं। तो एक कविता के माध्यम से मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि हमें किसी भी कीमत में हार नहीं मानना है और हम हमेशा कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। तो ये कविता है जिसका शीर्षक है ऐसे हार नहीं मानेंगे। जब तक दम है अपने तन में, जब तक दम है अपने तन में डटे रहे थे डटे रहेंगे, जब तक दम है अपने तन में डटे रहे थे डटे रहेंगे, असफलताओं के डर से हम, असफलताओं के डर से हम नहीं रुके थे नहीं रुकेंगे, नहीं रुके थे नहीं रुकेंगे, डटकर आगे बढ़ जाएंगे, डटकर आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे हार नहीं मानेंगे, ऐसे हार नहीं मानेंगे, ऐसे हार नहीं मानेंगे। हार जीत तो लगी रही है, हार जीत तो लगी रही है सदियों पहले से इस जग में, हार जीत तो लगी रही है सदियों पहले से इस जग में, फूलों के संग कांटे भी हैं, फूलों के संग कांटे भी हैं जीवन पथ की हर एक डग में, फूलों के संग कांटे भी हैं जीवन पथ की हर एक डग में, अरे हंसकर आगे बढ़ जाएंगे, हंसकर आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे हार नहीं मानेंगे, ऐसे हार नहीं मानेंगे, ऐसे हार नहीं मानेंगे। आज अंधेरा घिरा हुआ पर, आज अंधेरा घिरा हुआ पर कल सूरज तो निकलेगा ही, आज अंधेरा घिरा हुआ पर कल सूरज तो निकलेगा ही, आज घड़े में पानी कम पर, आज घड़े में पानी कम पर कल जल से भर छलकेगा ही, कल जल से भर छलकेगा ही, अरे अपनी ताकत पहचानेंगे, अपनी ताकत पहचानेंगे, ऐसे हार नहीं मानेंगे, ऐसे हार नहीं मानेंगे, ऐसे हार नहीं मानेंगे। हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी युवाओं की भूमिका सबसे अधिक थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवावस्था में ही आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। युवावस्था में देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में वीरांगना लक्ष्मीबाई, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस तथा चंद्रशेखर आजाद का नाम हमारे युवा को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है। तो आज मैं एक कविता के माध्यम से एक अपनी शुभकामना युवाओं के लिए प्रेषित करना चाहता हूं। कविता का शीर्षक है यही है कामना। सब मुसीबतों का हम करेंगे सामना, सब मुसीबतों का हम करेंगे सामना और मुस्कराएंगे, यही है कामना, यही है कामना। सब मुसीबतों का हम करेंगे सामना और मुस्कराएंगे, यही है कामना। गर्त की व्यवस्था का करेंगे हम दहन, गर्त की व्यवस्था का करेंगे हम दहन, अपनी सभ्यता को ही करेंगे हम नमन, अपनी सभ्यता को ही करेंगे हम नमन, हमें उजाले निशा हमें न थामना, हमें उजाले निशा हमें न थामना और मुस्कराएंगे, यही है कामना, यही है कामना, यही है कामना। धर्म की दरारों को करेंगे दूर हम, धर्म की दरारों को करेंगे दूर हम, शत्रु के प्रहारों को करेंगे चूर हम, पीठ ना दिखाएंगे, करेंगे सामना और मुस्कराएंगे, यही है कामना, यही है कामना, यही है कामना। वायु जल धरा को करेंगे स्वच्छ हम, बंजरों को सींच कर उगाएं वृक्ष हम, स्वार्थ त्याग सर्वहित की रखें भावना और मुस्कराएंगे, यही है कामना, यही है कामना। हमारा देश विविधता का देश है और विभिन्न राज्यों में हमारे युवा एकता में अनेकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो एक कविता के माध्यम से मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को लेते हुए युवाओं को प्रेरित करना चाहता हूं। कविता का शीर्षक है सबको जोड़ती हमारी संस्कृति एक। राज्य हैं अनेक,
राज्य हैं।

0: भाषा बोलियां अनेक, राज्य हैं अनेक, भाषा बोलियां अनेक, सबको जोड़ती हमारी संस्कृति एक, सबको जोड़ती हमारी संस्कृति एक। धर्म हैं अनेक, उनके पर्व हैं अनेक, धर्म हैं अनेक, उनके पर्व हैं अनेक, सबको जोड़ती हमारी संस्कृति एक, संस्कृति एक। रूप हैं अनेक, रूप हैं अनेक और स्वरूप भी अनेक, रूप हैं अनेक और स्वरूप भी अनेक, सबको जोड़ती हमारी संस्कृति एक, संस्कृति एक। परिधान हैं अनेक, खानपान भी अनेक, परिधान हैं अनेक, खानपान भी अनेक, सबको जोड़ती हमारी संस्कृति एक, संस्कृति एक। नृत्य हैं अनेक, लोकगीत भी अनेक, नृत्य हैं अनेक, लोकगीत भी अनेक, सबको जोड़ती हमारी संस्कृति एक, संस्कृति एक। इसकी सुरक्षा के जतन करें हम अनेक, इसकी सुरक्षा के जतन करें हम अनेक, सबको जोड़ती हमारी संस्कृति एक, संस्कृति एक। अंत में मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि इस समय पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें युवाओं की आवश्यकता है। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक पौधारोपण करके हमारी धरती को स्वर्ग बनाइए। तो एक कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है, क्यों ना पेड़ लगाते हो। तेज धूप है हवा गरम, तेज धूप है हवा गरम, बहा पसीना निकला दम। तेज धूप है हवा गरम, बहा पसीना निकला दम, धूल भरी आंधी में घिरकर, धूल भरी आंधी में घिरकर, रोते हो चिल्लाते हो। धूल भरी आंधी में घिरकर, रोते हो चिल्लाते हो, क्यों ना पेड़ लगाते हो, क्यों ना पेड़ लगाते हो। चौमासा 10 दिन में बीता, चौमासा 10 दिन में बीता, ताल रहा रीते का रीता, चौमासा 10 दिन में बीता, ताल रहा रीते का रीता, एक घड़ा पानी को लेने, एक घड़ा पानी को लेने, चार कोस तक जाते हो, एक घड़ा पानी को लेने, चार कोस तक जाते हो, अरे क्यों ना पेड़ लगाते हो, क्यों ना पेड़ लगाते हो। फसल नहीं अब ज्यादा होबे, फसल नहीं अब ज्यादा होबे, घर बैठा किसान भी रोवे, फसल नहीं अब ज्यादा होबे, घर बैठा किसान भी रोवे, राहत की चेकों को लेने, राहत की चेकों को लेने, दर दर ठोकर खाते हो, राहत की चेकों को लेने, दर दर ठोकर खाते हो, अरे क्यों ना पेड़ लगाते हो, क्यों ना पेड़ लगाते हो। तो अंत में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के इस अवसर पर मैं अपने युवा श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी ऊर्जा का प्रयोग देश के विकास में करें ताकि हमारा देश विश्व की महाशक्ति के रूप में स्थापित हो। धन्यवाद।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर ये बहुत ही प्यारा सा कविता पाठ। इसी के साथ आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
2: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
3: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
4: लग जा गले के फिर हसी रात।
2: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है बीत।

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम युवाणी में। दोस्तों अब हम अपनी अगली चर्चा करने जा रहे हैं हाथियों

सुरक्षा एवं संरक्षण पर। साथियों, हाथी केवल धरती पर रहने वाला एक विशालकाय जीव नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने वाला एक महत्वपूर्ण जीव है। अपनी बुद्धिमता, सामाजिक व्यवहार और अद्भुत स्मरण शक्ति के कारण हाथी दुनिया के सबसे विशिष्ट वन्य जीवों में गिने जाते हैं। भारत की संस्कृति, परंपरा और इतिहास में भी हाथियों का विशेष स्थान रहा है, लेकिन आज यही हाथी अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वनों का लगातार घटता क्षेत्र, प्राकृतिक आवासों का विनाश, अवैध शिकार और भोजन की कमी हाथियों के अस्तित्व के लिए बड़ी चिंता बन चुकी है। ऐसे में हाथियों की सुरक्षा केवल वन विभाग या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। साथियों, अब जानते हैं कि हाथी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दूं कि हाथियों को अक्सर वनों के इंजीनियर कहा जाता है। वे जंगलों में पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों को खाते हैं और कई बार नए जल स्रोतों तक पहुंच बनाने में भी मदद करते हैं। उनके द्वारा फैलाए गए बीज जंगलों में नए पौधों के विकास में योगदान देते हैं। इस प्रकार हाथी केवल अपने जीवन के लिए नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हाथियों की संख्या लगातार कम होती है तो इसका प्रभाव जंगल, वनस्पतियों और कई अन्य वन्य जीवों पर भी पड़ सकता है। हाथियों का संरक्षण तभी सफल हो सकता है जब स्थानीय समुदाय इसमें सक्रिय भागीदारी बने। श्रोताओं, हमें याद रखना चाहिए कि जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं और वन्य जीव केवल जंगल में रहने वाले जानवर नहीं, वे हमारे पर्यावरणीय जीवन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाथी सुरक्षित होंगे तो जंगल भी सुरक्षित रहेंगे। साथियों, चर्चा तो हमारी होती ही रहेगी, इसी के साथ आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

सुनिए सुनिए सुनिए 8 जून 2026 से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 से 3 बजे तक आकाशवाणी झांसी पर।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में। साथियों, अब हम अपनी अगली चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष की ओर देखने का सपना दिखाया। हम बात कर रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई जी के बारे में। दोस्तों, विक्रम साराभाई केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक दूरदर्शी विचारक, संस्थान निर्माता, उद्योगपति और राष्ट्र निर्माता थे। उनका मानना था कि विज्ञान और तकनीक का उद्देश्य केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित रहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन की। तो विक्रम साराभाई जी का जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन से ही विक्रम साराभाई में सीखने की अद्भुत जिज्ञासा थी। वे चीजों को केवल याद करने के बजाय यह समझने की कोशिश करते थे कि वे काम कैसे करती हैं और उनके पीछे कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत है। उनके परिवार का वातावरण भी उनके व्यक्तित्व के निर्माण

में महत्वपूर्ण रहा। उन्हें शिक्षा, स्वतंत्र सोच और लोगों के प्रति जिम्मेदारी का महत्व बचपन में ही समझने का अवसर मिला। यही कारण था कि आगे चलकर विज्ञान को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि का माध्यम नहीं बनाना, बल्कि उसे राष्ट्र के विकास का साधन माना। दोस्तों, विक्रम साराभाई ने भारत को सिर्फ अंतरिक्ष का सपना नहीं दिखाया था, उन्होंने भारत को यह विश्वास दिलाया था कि हम अपने सपनों को विज्ञान, मेहनत और आत्मनिर्भरता के बल पर सच कर सकते हैं। साथियों, हम सभी मिलकर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, महान वैज्ञानिक और दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को सत सत नमन करते हैं। साथियों, अब हम अपनी आखिरी चर्चा करेंगे ज्ञान के सही उपयोग के बारे में। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि ज्ञान मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ कम या समाप्त हो सकते हैं, लेकिन यही ज्ञान ऐसी संपत्ति है कि जो व्यक्ति को जीवन भर आगे बढ़ाने की दिशा देती है। ज्ञान हमें केवल यह नहीं बताता कि दुनिया कैसी है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें अपने ज्ञान का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कहा जाता है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसका उपयोग सही दिशा में किया जाए। ज्ञान केवल किताबें पढ़ लेने या परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लेने से नहीं आता। ज्ञान का अर्थ है किसी विषय को समझना, उसके सही और गलत पक्ष को पहचानना व परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय लेना। स्कूल और कॉलेज हमें शिक्षा देते हैं, लेकिन जीवन हमें अनुभवी ज्ञान देता है। अपनी गलतियों से हमें सीखने को मिलता है। इन सभी को मिलाकर हमारा वास्तविक ज्ञान विकसित होता है। दोस्तों, आज के युवा ज्ञान और तकनीक के सबसे बड़े उपयोगकर्ता हैं। उनके पास इंटरनेट, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पुस्तकालय और विभिन्न प्रकार के से सीखने के संसाधन उपलब्ध हैं। हमें ज्ञान का उपयोग स्वयं के विकास और हर बार कुछ नया सीखने व दूसरों को सिखाने के लिए व देश के निर्माण में करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार को दूर करता है। लेकिन उस दीपक की रोशनी कितनी दूर तय करेगी, यह उसके सही उपयोग पर निर्भर करता है। इसी के साथ श्रोताओं, अब सुनवाते हैं आपको अरिजीत सिंह की आवाज में ये बहुत ही प्यारा संगीत फिल्म हिचकी से।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हिचकी से अरिजीत सिंह की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको कार्यक्रम कैसा लगा ये आप हमें खत लिखकर बता

सकते हैं और साथ ही अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। आप अपने सुझाव भेजने और साथ बनाए रखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज आकाशवाणी झांसी को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। अब इजाजत दीजिए अपनी युवा साथी दिव्या सिंह को। नमस्कार।

युवा दोस्तों के लिए अभी युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है FM 103 पर। अब महिलाएं सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत अर्चना त्रिपाठी के संग।

0: नारी जगत सुनने वाली मेरी सभी श्रोता बहनों को अर्चना का प्यार भरा नमस्कार। आज का डिजिटल युग युवा महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के अनेक नए अवसर लेकर आया है। इंटरनेट स्मार्टफोन के माध्यम से महिलाएं घर बैठे शिक्षा रोजगार व्यवसाय से जुड़ सकती है। ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन शिक्षण और फ्रीलांसिंग जैसे क्षेत्र उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर देते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाएं अपनी प्रतिभा को पहचान दिला सकती हैं और अपने छोटे व्यवसाय को बड़े बाजार तक पहुंचा सकती है। डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन भुगतान ने आर्थिक गतिविधियों को भी आसान बनाया है, लेकिन अवसरों के साथ सावधानी भी जरूरी है। महिलाओं को साइबर सुरक्षा, गोपनीयता और सही जानकारी के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यदि तकनीक का सही और सुरक्षित उपयोग किया जाए तो डिजिटल युग युवा महिलाओं के सपनों को नई उड़ान दे सकता है और उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम और सशक्त भी बना सकता है। बहनों, ये तो हुई डिजिटल युग यानी स्मार्ट महिलाओं की बात। तो मैं फिर से अब बात करती हूँ, जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था तब एक वीर नारी ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से स्वतंत्रता की आवाज से दुनिया तक पहुंचाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भीकाजी कामा की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महान क्रांतिकारी महिला थी। पहली बार भारत का झंडा फहराया था। उनका जन्म 24 सितंबर 1861 को बॉम्बे में हुआ था। उनका जीवन त्याग, संघर्ष और देश प्रेम की मिसाल है। सुख सुविधाओं से दूर रहकर भी उन्होंने अपना जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। विदेश की धरती पर रहते हुए भी उनका दिल हमेशा भारत के लिए धड़कता रहा। वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में उन्होंने भारतीय ध्वज फहराकर विश्व मंच पर भारत की स्वतंत्रता की आवाज बुलंद की थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है, देश प्रेम केवल शब्द नहीं बल्कि त्याग, साहस और कर्म का नाम है। आज भी उनका जीवन हर युवा महिला को अपने सपनों के लिए निर्भीक होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनका निधन 13 अगस्त 1936 में बॉम्बे में हो गया था। उनको नमन करते हैं और चलते हैं आगे। देशभक्ति केवल शब्द नहीं, यह वह भावना है जो हमारे दिल में तिरंगों के प्रति सम्मान और मातृभूमि के लिए प्रेम जगाती है। इसी जज्बे को अपनी कविता के शब्दों में पिरोकर चलते हैं कवियत्री संगीता निगम जी के पास और सुनते हैं देशभक्ति कविता पाठ।
1: तोड़े सारे बंद सजीले, नारी जब सबला रूप सजी, निकल पड़ी बन कल्याणी, वो काली दुर्गा का रूप लगी, उड़े होश फिरंगी।

के जब जब उसने जय घोष किया, सुलगी थी मन जो चिंगारी, अब धीरे धीरे ज्वाल जगी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यदि भारतीय वीर नारियों की चर्चा ना हो तो यह संग्राम अधूरा ही माना जाएगा। भारत की स्वतंत्रता में महिलाओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं संगीता निगम आकाशवाणी झांसी से उन महान वीरांगनाओं को अपनी कविता और गीतों के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई के योगदान को कौन भूल सकता है। अतः चंद पंक्तियाँ महारानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रस्तुत है। रणचंडी बन रण में उतरी, आग बरसती आँखों में, तब स्वाभिमान की रक्षा हेतु आवेग भरा था बाहों में। कट कट कट कर शीश गिरे थे अरि के विजयी तलवारों से, युद्ध भूमि भी गूंज रही थी हर महादेव के नारों से। संघर्ष किया आखिर तक था, गोरों की नींद उड़ाई थी, युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते उसने वीर गति तब पाई थी। जग ने देखा था साहस तब उस अमर वीर तरुणाई का, ना भूलेंगे बलिदान कभी महारानी लक्ष्मीबाई का, महारानी लक्ष्मीबाई का। इस श्रृंखला में नीरा आर्या जी का नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर काम किया था। ये पहली महिला जासूस थी। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर गोली चलाने वाले अपने पति का कत्ल कर दिया। अंग्रेजों ने इन्हें काले पानी की सजा दी और इन्हें तरह तरह की यातनाएं दी। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर इन्हें अनसंग वॉरियर के रूप में याद किया गया। काली

0: नहीं नीरा पाई। नेताजी के साथ चली वो तो तेज पूर्ण अंगारा थी। भारत का मान कुचलने की जब पत्नी की तैयारी थी। भरी वेदना थी मन में जब उसकी देखी गद्दारी थी। चट्टानों से अडग रही उसने खुद को ही आहूत किया। कर्तव्य हेतु नीरा ने पति की जीवन लीला हारी थी। पड़ी बीड़ियां पांवों में फिर कोमल अंगों पर वार हुआ। पड़ी बीड़ियां पांवों में फिर कोमल अंगों पर वार हुआ। नीरा ना टूटी पल भर भी हर एक प्रहार बेकार हुआ। ये अमर वीर भारत की नारी जय जय जय इतिहास करे। इसके इस निर्भय साहस का ये जग सारा सम्मान करे। उसके इस निर्भय साहस का ये जग सारा सम्मान करे। अब श्रीमती भीकाजी रुस्तम जी कामा, मैडम कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। इन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई सातवीं अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। हालांकि यह तिरंगा वैसा नहीं था जैसा कि आज है, पर इन्होंने बड़ा ही साहसी काम किया था।
1: लिए थी जज्बा आजादी वो ताकत आसमानी थी। लिए थी जज्बा आजादी वो ताकत

तन मन में अजब उसकी जवानी थी। विदेशी सरजमी पर जो तिरंगा उसने फहराया, विदेशी सरजमी पर जो तिरंगा उसने फहराया, फिरंगी हो

दीवानी थी। सरोजनी नायडू भारत का गौरव, एक बहुत ही महत्वपूर्ण गरिमामय व्यक्तित्व, परम विदुषी कवयित्री, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, हमेशा महात्मा गांधी जी का साथ मिला। महात्मा गांधी जी ने इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की बुलबुल कहा। चंद पंक्तियां ऐसे महान व्यक्तित्व को समर्पित हैं। ज्ञान गंग सम उनकी कविता वो तो शीतल धारा थी, ज्ञान गंग सम उनकी कविता वो तो शीतल धारा थी, भारत के विशाल अंबर पर चमका एक सितारा थी, भारत के विशाल अंबर पर चमका एक सितारा थी, नाम सरोजनी नायडू था, वे प्रखर तेजो

0: जन जन में वो अलख जगाती, आजादी का पाठ पढ़ाती। पहली महिला राज्यपाल बन, नारी का सिर मोर कहाती। पहली महिला राज्यपाल बन, नारी का सिर मोर कहाती। बहुभाषा विज्ञान भरा था, बहुभाषा विज्ञान भरा था। जन पीड़ा का ध्यान धरा था, संस्कार के उज्जवल मन से भारत का सम्मान करा था। संस्कार के उज्जवल मन से भारत का सम्मान करा था। भारत की पावन धरती पर फिर लिखती अमिट कहानी है। भारत की पावन धरती पर फिर लिखती अमिट कहानी है। जय जय जय हे मातृशक्ति हे, जय जय जय हे मातृशक्ति हे परम वीर कल्याणी हे। जय जय जय हे मातृशक्ति हे परम वीर कल्याणी है।
1: भारत के शहीदों के ऊपर एक गजल प्रस्तुत है।

संगीता जी की इस भावपूर्ण कविता ने सचमुच दिल में देश प्रेम की एक नई लौ जगा दी है। सुंदर देशभक्ति कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, आगे की चर्चा यूं ही जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले चलते हैं फिल्मी दुनिया में और सुनते हैं बहुत प्यारा

0: पानी रे पानी, कैसा लगा ये गीत। जब बहनों पानी की बात हुई तो क्यों ना भोजन की भी साथ में बात कर ली जाए। तो बहनों, हमारे भोजन में खट्टी मीठी चीजें स्वाद ही नहीं बल्कि यादों की मिठास भी घोलती हैं। इमली, नींबू, कच्चा आम, टमाटर, गुड़ और शहद जैसी चीजें हमारी रसोई का अभिन्न हिस्सा है। इनका सही मात्रा में इस्तेमाल साधारण भोजन को भी स्वादिष्ट बना देता है। नींबू का स्वाद सलाद, दाल और सब्जियों में ताजगी भर देता है, जबकि इमली की खटास चटनी और सांभर का स्वाद बढ़ाती है। कच्चे आम से बनी खट्टी मीठी चटनी गर्मियों की याद दिलाती है और गुड़ भी किसी भी व्यंजन में प्राकृतिक मिठास घोल ही देता है। लेकिन स्वाद के साथ संतुलन भोजन भी जरूरी है। बहुत अधिक खट्टी या मीठी चीजें भोजन का स्वाद बिगाड़ सकती हैं, इसलिए इन्हें हमेशा थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालकर स्वाद को परखना चाहिए। याद रखिए, रसोई केवल स्वाद बनाने की जगह नहीं, प्यार और अपनापन बांटने की जगह भी है। खट्टी मीठी यादों की तरह भोजन में भी सही संतुलन ही जीवन को खूबसूरत बनाता है। तो बहनों, जब खट्टी मीठी बात नींबू और आम की हुई तो मुंह में तो पानी तो जरूर आ गया होगा। मेरे मुंह में तो बात करते ही करते पानी आ गया। तो बहनों, अब चलते हैं आज की सीख पर। हर बेटी अपने भीतर एक अनमोल प्रतिभा लेकर जन्म लेती है। किसी की पढ़ाई में रुचि होती है तो किसी की कला में, तो किसी को खेल पसंद होता है तो कोई अपने हुनर को से नई पहचान बनाना चाहती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी प्रतिभा को पहचाने और प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ने का अवसर दें। बेटी को केवल यह ना सिखाएं कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि उससे यह पूछें कि वह क्या करना चाहती है। उसके सपने को छोटा ना समझें, उसकी असफलताओं पर उसे हतोत्साहित करने के बजाय उसका हाथ थामें। याद रखिए, एक बेटी को दिया गया विश्वास उसके भीतर आत्मविश्वास बनकर जन्म लेता है। उसे थोड़ी सी जगह, थोड़ा सा प्रोत्साहन और अपनों का भरोसा मिल जाए तो वह अपनी प्रतिभा को पूरे परिवार का नाम रोशन कर सकती है वो अपने प्रतिभा से। बहनों, आज की सीख यही है कि बेटियों के सपनों को रोकिए नहीं, उसे पहचानिए, सम्मान दीजिएगा और उड़ान भरने का अवसर दीजिएगा, क्योंकि बेटी को पंख देना उसके भविष्य को उजाला देना है। तो बहनों, आगे की चर्चा फिर से यूं ही जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले चलते हैं फिर से फिल्मी दुनिया में और सुनते हैं बहुत प्यारा सा ये गीत जो लिया है हम आपके हैं कौन। आवाज है लता मंगेशकर की।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

बहनों, अब स्टूडियो की घड़ी हमें और इजाजत नहीं दे रही है, तो जल्दी से पेन और कॉपी उठाकर आप कार्यक्रम का पता लिख लीजिए। कार्यक्रम का पता है नारी जगत कार्यक्रम द्वारा के निदेशक आकाशवाणी झांसी, पिन कोड नंबर 2841 2 8। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ। तो मुझे यानी अर्चना को जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना मनपसंद कार्यक्रम नारी जगत। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है FM 103 पर। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया और पंच भैया नो अपने विपिन भैया की नमस्कार। तो देखो भैया, जैसी अपनी संध्या भी नहीं है भाई और अपन आगे अपनों कार्यक्रम लेके, तो आजकल अपन देख रहे हैं कि हमारे किसान भैया ने बिल्कुल देखो खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। और खेती के संग कार्य भी देखो, जैसे अपने मौसम खुलाते हैं तो हमारे किसान भैया देखो अपने खरपतवार की बात करें तो अपने खरपतवार नियंत्रण कराते और अपने जो अनावश्यक देखते हैं खरपतवार जम जाए अपनी फसल का, तो नुकसान कराता है। कहा से जो अपने पोषक तत्व तो अपनी फसल खा मिलना चाहिए जितते वो नहीं मिल पाता है। तो ई किला ने कहा है कि हमारे किसान भैया बिल्कुल और अपन बताने के जो हमारे युवा साथी हैं और जो हमारे युवा बिल्कुल किसान हैं उनके लाने कृषि में एक अच्छे विकल्प है। कहा से भैया देखो, अगर अपन पढ़े लिखे हैं और आजकल अपन देख रहे हैं कि आजकल जो भी खेती बताई जाती है कि देखो वैज्ञानिक तरीका से अपन खेती करें। पहले कहा होती है कि भैया देखो मटर चना अपन ने वैदा है, उड़दा मूंग वैदा है और ठाड़े हैं ऊपर। अब आजकल देख रहे हैं कि कितनी मात्रा में अपन देने हैं, पढ़े लिखे अपन के युवाओं के लाने में एक अच्छा अवसर भी है। कहा सेंगे एक अवसर के लाने हमारे किसान भैया बिल्कुल अच्छे विकल्प के रूप में अपन खेती कर सकते हैं। उनमें कहा है कि देखो अपन मिश्रित खेती करें, बागवानी करें, सब्जियों की खेती करें और फूलों की खेती करें। ऐसी कई प्रकार की युवाओं के लाने और कई प्रकार के ऐसे फूल आ रहे हैं जो देखो तमाम प्रकार के फूल आउट हैं। उनमें कहा है कि देखो जैसे हमारे और अच्छी क्वालिटी के अपन कैसे बनाने हैं, तो एक ही पूरा प्रशिक्षण लेके अपन पढ़ लिख के और अच्छी खेती कर सकते हैं, क्या मुनाफा हमारे किसान भैया बहन ले सकते हैं। तो ऐसे युवा हमारे जो साथी हैं बिल्कुल जो हमारे किसान भैया बहन हैं, तो वे आगे जब कैसे बढ़ सकते हैं, ऐसे ही बढ़ सकते हैं कि पहले कहा होती भैया ने वैदा और बोले दखाएं बागम, लेकिन आजकल अपन देखें ऐसे नए नए तकनीक आ गई कि अपन किस तरीके से अपन बहने हैं कूण बाय कूण बहने। पहले कहा होती कि नहीं हर बखल चल रहा है अवेदा फेंक दो हैं बीज, आजकल देखो कूण लाइन से लाइन की दूरी कितनी सेंटीमीटर पर अपन रखने, कितनी दूरी पर अपन बीज डालने और कौन कौन से अपन खा सारी जानकारी वैज्ञानिक तरीका से और उनको युवाओं को दी जाते हैं। तो जो हमारे किसान बढ़िया हैं तो देखो अपने बाल गोपालन खा इमें कृषि के क्षेत्र में एक अच्छा विकल्प उनका साबित हो सकता और एक संगे संगे युवाओं के लिए कृषि में अपना का विकल्प हो सकत कि देखो जैसे जो अपन उत्पाद बना रहे तो उनकी प्रोसेसिंग हमारे किसान भैया देखो अपन खुद ही उत्पादन को जैसे मान लो अपन ने कटिया गेहूँ पैदा करूँ या अपन ने मूंग करी है तो उनकी दाल बना के अपन भैया ने बेच सकते हैं तो उनको बाजार में अच्छा भाव मिल रहा है। जैसे अपने तो मान लो चना है या ज्वार हो रही है तो ज्वार को आटा अपन बेच सकते हैं। तो कई प्रकार के सीरियन हैं जैसे बाजरा है, कोदो है, सामा है, तो जैसी खेती हमारे किसान भैया करें और जिनको प्रोसेस करके बढ़िया बाजार में अपन बेचे तो हमारे किसान भैया का एक अच्छा अवसर मिले और काम करवे को एक मुनाफा उज्जे। तो ये बात को भी हमारे किसान भैया का बिल्कुल जो एक बिल्कुल विकल्प अपन का है कि जिन्हें भी देखो का नौकरी नहीं लग रही तो हमारे किसान भैया बैठ जाते देखो नौकरी, लेकिन अपन खेती कृषि के क्षेत्र में एक अच्छा कायम सोई कर सकते हैं काम। तो ई बात को भी हमारे किसान भैया का बिल्कुल ध्यान रखने। अब बात आउ भैया देखो जो हमारे किसान भैया देखो आत्मनिर्भर किसान समृद्ध भारत, अगर हमारे किसान भैया देखो अपने देश को किसान अगर आत्मनिर्भर हो जाए तो देखो समृद्ध अपनो देश हो जाए। आत्मनिर्भर की बात करें कि देखो अपने आप में जैसे जो अपन ने हमें बता रहे थे कि देखो अपन ने जो उत्पाद अपन ने पैदा करे और वे अपन ने उनका बाजार में ले आए तो अपन का ऊपर भरोसे अपन डिपेंड ना रहे, तो ऐसे हमारे किसान भैया बिल्कुल जाना थे कि देखो अपने जो उत्पाद हैं देखो उनको ही अपन बाजार में ले आके हैं, उनको खुद ही अपने गांव में सरकारें भी कई प्रकार की अपन ऐसी योजना देते हैं कि देखो अपन अपने ते प्रोसेसिंग यूनिट लगा के कछु भी प्रकार को जैसे काम स्टार्ट करने टीके लाने बैंक भी सहायता करा थे सरकार के माध्यम से। तो ऐसे भी हमारे किसान भैया उनसे संपर्क कर सका, संपर्क के संगे अपने उत्पाद को कैसे अपन आगे बढ़ाने हैं ई को हमारे किसान भैया बहुत अच्छे से जाना थे। तो कैसे कि अपन ने हम बता रहे थे आपका जैसे अपने जो फसलें पैदा हुई तो अपन उनको जो फसल है मान लो गेहूं की बात कर लें तो गेहूं को आटा हुआ किसान भैया ने बेच सकते हैं बना के, तो इसकी लाने अपन देखो फ्लोर मिल लगा सकते हैं जैसे आटा मिल बोलाता है वो लगा चक्की लगा के भी अपन देखे बेच सकते हैं आटा के। देखो अपने तो जो भाव अगर देखो अपने गेहूं को पान लो 22-23 रुपये क्विंटल बिक रहा है और वही अगर आटा अगर अपन बना के बढ़िया बेचे तो 30 रुपये सोई बिके तो हमारे किसान भैया की लागत कड़े आए उनका मुनाफा भी हो जाए। तो ऐसे आत्मनिर्भर अपन बनने हैं, कोनो भी समस्या अपन आगे बढ़ने हैं तो आत्मनिर्भरता के लोने अपन कई प्रकार की कुटीर उद्योग हमारे किसान भैया बहन लगा सकते हैं छोटे छोटे, जैसे खेती के संगे संगे अपन मत्स्य पालन करें, बागवानी करें तो बाग बड़े बड़े बाग लगा लें। जैसे भी हम बता रहे थे भैया कि देखो अपन फूलों की खेती कर सकते तो उनमें कई प्रकार के ऐसे फूल आउट हैं जो भैया देखो

0: बाजार में अच्छी मांग होते तो वैसे हमारे किसान भैया उनकी खेती कर सके। और भैया देखो बात आउट है कि खेती के संगे संगे अब हमारे किसान भैया हैं काहे के जैविक तरीका अपनाए, और बार बार भी उनसे कहा जाते हैं कि देखो हम दा जैविक खेती करें तो जैविक खेती को का कछु अपन कैसे लाभ मिले। और ऐसे भैया देखो हम दा सुबह का सुना है जैविक खेती कर रहे प्रगतिशील किसान विनोद कुमार तिवारी से, और अमर जी भैया ने का कछु बतकाओ सुनो तो अपन सुने, और हमारे जो किसान भैया बहन है भैया तो सुने सुने हैं कि नहीं भैया।
1: किसान भाइयों, आज के समय में ज्यादातर किसान भाई रसायन आधारित खेती कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जो रसायन आधारित खेती है वो कितनी नुकसानदायक है अपनी जमीन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। रसायन आधारित खेती से बहुत सारे नुकसान हैं, और अब समय आ गया है जैविक खेती का। अगर जैविक खेती आप कर रहे हैं तो जैविक खेती के बहुत सारे फायदे हैं। अपनी खेत की माटी बढ़िया होती है, और अपने स्वास्थ्य के लिए फसलों की जो उपज है वो लाभदायक है। जैविक खेती, बागवानी और पशुपालन की जानकारी के लिए हम पहुंचे इंदिरा कृषि फार्म चंद्रा गांव, और यहां पहुंचकर हमने बातचीत की विनोद कुमार तिवारी जी से। और यहां पहुंच के हमने देखा कि विनोद कुमार तिवारी जी जैविक खेती कर रहे हैं, और खेती के साथ साथ औषधीय फसलें भी लगाए हुए हैं, और ड्रैगन फ्रूट की खेती बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो विनोद कुमार तिवारी जी, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से नमस्कार।
2: नमस्कार भाई साहब, नमस्कार।
1: सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैविक खेती का जो विचार है वो आपके मन में कैसे आया?
2: साथियों, हमारे देश में जैविक खेती का प्रचलन बहुत पहले से रहा है, इसलिए कुछ बीच में हरित क्रांति के चक्कर में रासायनिक खेती का प्रयोग किया जाना शुरू किया गया, जिससे हमारी मृदा को बहुत नुकसान हुआ। हमारे जमीन में केंचुआ पाए जाते हैं और दूसरे जो पौष्टिक कीट हैं वो पाए जाते हैं, जो हमारी फसल के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। रासायनिक खातों के प्रयोग से वो बहुत नष्ट हो गए और हमारी खेती उन जो है बंजर होती चली जा रही है। पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जैविक खेती के लिए बहुत अच्छा प्रोत्साहन शुरू किया है, और किसानों को इससे बहुत लाभ हो रहा है। हमारे यहाँ भी जैविक खेती से ही खेती की जाती।
1: बिल्कुल, आपने अच्छी बात बताई कि जैविक खेती के बहुत सारे फायदे हैं, और प्राचीन काल में जैविक खेती का चलन था। जैविक खाद ही किसान भाई अपने खेतों में डालते थे, जिससे कि उनकी जो खेत की माटी है उसमें उपजाऊ शक्ति बराबर लंबे समय तक बनी रहे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं जिनमें औषधीय पौधे हैं, और कुछ फलदार पौधे भी आप लगाए हुए हैं, तो आप बताएं कौन कौन से पौधे आपने अपने इस फार्म पर लगाए हुए हैं।
2: हमारे यहाँ जैविक खेती से गौ आधारित खेती है, जो गाय के गोबर और गोमूत्र से पूरी खेती की जाती है। इसमें किसी प्रकार का रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता। हमारे यहाँ 7 एकड़ के लगभग ये फार्म है, और इस फार्म में विभिन्न प्रकार के पौधे, सबसे प्रमुख है ड्रैगन फ्रूट जो कैक्टस प्रजाति का है, सी क्वालिटी का सर्वोत्तम प्रकार का जो पौधा है। ये अंदर से भी लाल और बाहर से भी लाल होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है इसका फल। ये झांसी में पहला प्रयोग है, और मैं तो कहूंगा कि ये एक सफल प्रयोग है
1: जी।
2: इसके अलावा हमारे पास मौसम्मी है, किन्नू है, अमरूद है, आंवला है, चीकू है, अनार है, नींबू है, आम तो करीब करीब 20 प्रकार के हैं, और इसके अलावा हमारे पास सागौन है और महोगनी की है, चंदन है, लाल चंदन है खास तौर से मेरे पास, और अभी हमने जो है कुछ और प्लांटेशन किया हुआ है। मौसम्मी का प्लांटेशन कृषि विश्वविद्यालय के साइंटिस्टों द्वारा कराया गया है, वो भी एक सफल प्रयोग है। तो यहाँ पे इस चंद्रा क्षेत्र में आप देख रहे हैं किस तरीके से कंकड़ मिक्स लाल मिट्टी है, जो किसानों ने अनुपयुक्त समझा था। हमारे आसपास के क्षेत्र के किसानों ने ये अपनी जमीन अनुपयुक्त समझ के बेच दी, प्लाटों में हो गई, लेकिन मैंने इस खेती को उपजाऊ बनाने का एक दृढ़ निश्चय किया, और वो सब आप देख।
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बहुत सारी किस्मों के पेड़ पौधे आपने इस कृषि फार्म में लगाए हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ एक नेट लगा हुआ, और इसमें आप काली हल्दी की खेती कर रहे हैं, तो आप इस काली हल्दी के बारे में बताएं कि यह कितनी उपयोगी है और इसकी खेती आप कैसे कर रहे हैं।
2: हमारे पास फार्म में 3000 स्क्वायर मीटर का एक नेट हाउस है, ग्रीन नेट।

0: हाउस है, इसमें हमने सबसे पहले शिमला मिर्च का प्रयोग किया, सफल रहा। खीरा भी दो बार किया, इसके बाद टमाटर किया सर्दियों में। इस बार फसल के चक्रानुक्रम में हमने उसमें काली हल्दी लगाई और काली हल्दी आप देख रहे हैं कितनी शानदार है, बहुत अच्छा जर्मिनेशन है इसका। ये औषधीय हल्दी है, एक तरीके से कहा जाता है ये कैंसर की औषधि है। इसका काढ़ा बना करके और इसका पाउडर बना करके तथा इससे कैंसर की दवाएं बना करके और प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है।
1: जैसा कि आम बाजारों में देखते हैं तो पीली हल्दी हर जगह मिल जाती है और आपने काली हल्दी लगाई है और आपने बताया कि ये कैंसर के लिए उपयोगी है, तो इसकी बेचने के लिए कहाँ बाजार हैं? अपने नजदीक क्षेत्र में बिक जाती है या कहीं बाहर इसको बेचना पड़ता है?
0: पिछले वर्ष हमारे पास 5 क्विंटल के आसपास काली हल्दी का उत्पादन हुआ था और थोड़े क्षेत्र में लगाया था, तो उसमें से हमारी 2.5 क्विंटल हल्दी जो है यहाँ से ही फार्म से ही बीज के रूप में गई है। कुछ बरुआ सागर में गई है, कुछ नौगांव में गई है, कुछ ललितपुर में गई है और कई क्षेत्रों में जिनको जानकारी थी वो लोग यहाँ से ले गए हैं और 500 रुपए पर केजी के हिसाब से इसका हमें दाम प्राप्त हुआ है। इसके महत्व को धीमे धीमे, ये प्रायः विलुप्त प्रकार की औषधि पाई जाती है, जो अब लोगों ने इसे खोज करके औषधि के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए इसकी खेती करना शुरू किया है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तथा शरीर की कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत बड़ा महत्व है। आपके कोरोना काल में भी इस काली हल्दी का पाउडर प्रयोग किया गया है काढ़े के रूप में, जो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है।
1: जैसे आमतौर पर पीली हल्दी की खेती अपने क्षेत्र में किसान भाई करते हैं और काली हल्दी की खेती आप कर रहे हैं, तो इसकी देखभाल के बारे में आप बताएं कि पीली हल्दी जैसी होती है वैसी ही देखभाल इसकी करनी पड़ती है या अलग से खास देखभाल इसकी होती
0: है? इसकी कोई विशेष देखभाल नहीं है, सेम प्रोसेस है जैसे पीली हल्दी लगाई जाती है वैसे ही इसे जून में लगाया जाता है। इस हल्दी का हमारा पिंजरापोल गौशाला में इसका कॉन्टेक्ट है, हमारे यहाँ जितनी भी एक्स्ट्रा हल्दी जो भी उत्पादित होगी वो वहाँ उनसे कॉन्टेक्ट है हमारा, वो पूरी हल्दी खरीदेंगे। इस तरीके से इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। और भी किसान भाइयों से हम कहना चाहेंगे कि जहाँ जिनके पास पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फल वाले पेड़ पौधे लगे हुए हैं वैसे लगे हुए हैं, उनके नीचे या छाया के स्थान है, उन स्थानों पे इस काली हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। आम हल्दी जो पीली हल्दी होती है इससे कई गुना ये कॉस्टली हल्दी है और ठीक उत्पादन भी पैसा ही है जैसा पीली हल्दी का होता है, तो इससे कई गुना आमदनी प्राप्त होती है, इसलिए इसका प्रयोग करके आयुर्वेदिक कंपनियां इसको आसानी से आपके यहाँ से खरीद सकती।
1: बिल्कुल, आपने बताया कि पिछली साल जो काली हल्दी लगाई थी वो किसान भाइयों को बीज के रूप में आपने बेच दी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे इसकी उपज होती है जो किसान भाई ले गए हैं और आपने ज्यादा क्षेत्रफल में इस साल काली हल्दी लगाई है, जो उसकी उपज होगी वो किस भाव से बिक जाती है?
0: इसकी उपज 300 से 400 रुपए किलो के हिसाब से लगभग जाती है। जब इसका बीज तैयार कर लेते हैं तो थोड़ा ये कॉस्टली हो जाती है। जो हमारा कॉन्टेक्ट है पिंजरापोल गौशाला जयपुर से, वो 300 रुपए के हिसाब से है। जितनी भी हल्दी यहाँ से प्राप्त होगी वो वहाँ वो 300 रुपए में, हमारी एलोवेरा है, हल्दी है और भी जो भी औषधियाँ हमारे यहाँ लगी हुई हैं वो सब उनसे हमारा कॉन्टेक्ट है, उन्हीं के निर्देशों में हम ये यहाँ पे आयुर्वेदिक औषधियों की खेती करते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कोई किसान भाई काली हल्दी की खेती करना चाहता है तो इसके बारे में आपसे मिल सकता है क्या?
0: हाँ बिल्कुल, अगर किसी को काली हल्दी की खेती करनी है तो उसका पूरा मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन कैसे लगाना है, कैसे करना है, कैसे देखभाल करनी है, इसमें किसी प्रकार का कोई कीड़ा वगैरह लगता नहीं है, कोई इंसेक्ट लगता नहीं है, ये स्वयं औषधि है, तो उस सारी जानकारियां मैं आपको आसानी से उपलब्ध करा सकता हूं। और इसके साथ भी अगर कोई किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहता है तो मेरे से पूरा वो पौध प्राप्त कर सकता है तथा पूरा किस तरीके से लगाएंगे और फल आने तक पूरा मार्गदर्शन, खाद और दवाई सारी चीजों का विवरण मैं उसे यहाँ आसानी से उपलब्ध करा दूंगा और वो यहाँ बुंदेलखंड में हमारी फसल भी देखिए। और मेरी आशा है और विश्वास है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से सफल हो सकती है।
1: बिल्कुल, ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में बताया कि आप ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और एक सफल खेती हो रही है आपके यहाँ। ड्रैगन फ्रूट के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इसके फल हैं वो आप कहाँ बेचते हैं और किस हिसाब से इसकी फलों की उपज आपको मिलती है?
0: ड्रैगन फ्रूट बहुत ही अच्छी फसल है जो किसान के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसमें एक बार खर्चा जरूर आता है लेकिन इसका पौधा 25 वर्ष तक आपको फल देने वाला है।

0: वर्ष उत्तरोत्तर जैसे इसकी पत्तियां बढ़ेंगी वैसे ही इसके फलों की वृद्धि होती चली जाती है। ये आपके यहाँ झांसी में या अन्य आसपास के क्षेत्रों में कलकत्ता से, बंगाल से या गुजरात से या विदेशों से ड्रैगन फ्रूट मंगाते हैं, जो जनरली अधकचे फल वहाँ से आते हैं और यहाँ आकर के पकते हैं, उनका स्वाद वो प्राप्त नहीं होते हैं जो ओरिजिनल आपको यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं या आपके खेतों से प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए ड्रैगन फ्रूट की खेती यहाँ पे बहुत आसानी से अच्छी तरीके से की जा सकती है। जहाँ तक मार्केट की बात है
1: जी,
0: पिछले बार हमारे यहाँ पहली बार 500-600 फल आए थे और मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ा। जिस किसी को वीडियो से माध्यम से, ऐप के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जिस किसी को पता चला उसने यहीं से प्राप्त हुआ, हमारा स्वभाव से लेकर के और 150 रुपए तक का फल गया है। हमारा फल आम फल जो होता है वो 300 ग्राम तक का होता है, 300-400 मैक्सिमम, हमारे यहाँ 750-800 ग्राम तक का फल आता है। और जिसके लिए कृषि यूनिवर्सिटी में भी डॉक्टर रंजीत पाल जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने ये ड्रैगन फ्रूट को आगे बढ़ाया है और निश्चित रूप से वो भी आश्चर्यचकित रहे और दूसरे वैज्ञानिक भी कि आखिर इस मिट्टी में इतना बड़ा फल कैसे प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से उच्च क्वालिटी का है, बुंदेलखंड की जमीन वीर योद्धाओं की वीर भूमि कहलाती है और इस वीर भूमि में निश्चित रूप से बहुत ही शानदार ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन होता है। हमारा तो ये सबसे अनुरोध है कि जो भी किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहता है वो वहां से फसल देख करके और निर्देशन लेकर के आराम से कर सकता है और 25 साल तक इससे इनकम प्राप्त होने वाली है। आपका मार्केट में भी बिकने वाला है और बाहर भी बिकने वाला है। ड्रैगन फ्रूट की मार्केट में इतनी डिमांड है कि जब गुजरात से या महाराष्ट्र से मंगा करके लोग यहाँ फल बेचते हैं और जब यहीं की धरा पे ये पैदा होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे इसकी अच्छी कीमत भी मिलेगी और आपका ताजा फल आसानी से खरीदा भी जा सकेगा।
1: बिल्कुल, ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सफल खेती हो रही है और अन्य किसान भाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, आम के, अमरूद के, आंवला के और औषधीय खेती भी कर रहे हैं, काली हल्दी आप लगाए हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे उर्वरक के बारे में, जैसा कि आप जैविक खेती पूरी कर रहे हैं तो आप बताएं जैविक खाद आप अपना खुद का बनाकर अपनी खेती में प्रयोग करते हैं या कहीं बाहर से मंगाते हैं?
0: हमारे यहाँ गौशाला है जिसमें 15-20 गाय और बछड़े सहित हैं। हमने एक गोबर गैस का प्लांट भी लगा रखा है। उस गोबर गैस की जो सलरी निकलती है उस सलरी में हमारा गोबर प्लस गोमूत दोनों ही मिक्स होता है और उसको पंप सेट के द्वारा हम खेत के हर पॉइंट पे पहुंचाते हैं। मेरे पूरे प्लांट में, चाहे वो फल वाले प्लांट हो, चाहे लकड़ी वाले प्लांट हो या चना गेहूं की खेती हो, एक्स वाई जेड कोई भी जो हमारे यहाँ खेती हो रही है उसमें केवल और केवल गाय आधारित यही गोमूत्र और गोबर की खाद ही प्रयोग करते हैं। हमने पिछले 8-10 साल से इस डीएपी और यूरिया को छोड़ रखा है। आप प्रायः देख सकते हैं कि हमारे किसी भी खेत में कहीं भी खोदेंगे तो तुरंत आपको केंचुआ मिल जाएगा। उसका मुख्य कारण यह है कि गोबर की सलरी जो हमारे खेतों में जाती है उससे मिट्टी की गुणवत्ता बहुत उच्च कोटि की हो गई है और उसमें हर प्रकार के उत्पादक जीवाणु जो है वो पैदा हो गए हैं।
1: आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो जैविक खाद आप डालते हैं वो खुद बनाते हैं, तैयार करते हैं और इसके लिए आपने गायें पाल रखी हैं, यानी खेती के साथ पशुपालन भी आप कर रहे हैं, वो भी वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं। हमने आपकी गौशाला को देखा तो बढ़िया व्यवस्था गायों के लिए आपने कर रखी है और बढ़िया देखभाल हो रही है, गायें अपनी बढ़िया स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं और गायों से जो दूध मिल रहा है वो भी आप बेच रहे हैं, घी भी बेच रहे हैं। यानी खेती जब जैविक किसान भाइयों को करना है तो उसके साथ पशुपालन बहुत जरूरी है, तभी आप शुद्ध जैविक खाद अपनी खेती बाड़ी में डाल सकते हैं और खेती बाड़ी की जो जमीन है उसको उपजाऊ बना सकते हैं। विनोद कुमार तिवारी जी, आपने जैविक खेती के बारे में और पशुपालन के बारे में, काली हल्दी के बारे में हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो देखो किसान भैया बहन, कितने उमदास अपन ने जो बतका सुनो, जैविक खेती कर रहे प्रगतिशील किसान विनोद कुमार तिवारी से, अमरजी भैया ने कितने उमदा से बतकाव करो कि देखो जैविक खेती में किस तरीके से। देखो भैया ने बताई कि देखो कोनो प्रकार को रसायन नहीं डाला था और रसायन के माध्यम के अलावा देखो जैविक जो उनकी जो गोबर की सल्ली है वो हर एक पौधे तक अपने आप में ही पहुंच जाती है। ये बात को भी हमारे किसान भैया बिल्कुल ध्यान रखते हैं। कहा से भैया देखो जैसे ही अपने जो फार्म हाउस पे जैसे भैया ने कल लगा कि देखो अपन भी बनाए, अपन

0: खेती करें। तो इनसे कछु हमारे किसान भैया इनको सीख लेना कि देखो हर प्रकार के इनके पास पौधा भी मिले हैं, ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा है, फलदार वृक्ष भी लगाएं, चंदन भी लगाएं, जो इमरती लकड़ी होते वाको भी लगाएं। तो ऐसी कई प्रकार की रखनी, और देखो सब वैज्ञानिक भैया की सलाह के माध्यम से ही देखो भैया ने बताया कि देखो काली हल्दी की जो खेती करवा चाह रहे तो वो इनसे भी ये जाकर संपर्क कर सके। तो देखो हमारे दीपन की तुम दास भत्का पूछो, तो जो हमारे किसान अपनों के वो जो इरत के देखो जो बतकाई के माध्यम से जो हमारे किसान भैया बहन हैं अपन खां चाहे कि देखो हम इनसे कैसे मिल सकते हैं, तो ई बात को भी हमारे किसान भैया को बिल्कुल ध्यान रखने, तो बिल्कुल उनसे जाके उधर संपर्क करना, अपन भी कोनो प्रशिक्षण लेने तो भैया से कैसे अपन करने हैं, बीज कैसे उपलब्ध, तो पूरी जानकारी उनसे भी अपन ले सकते हैं। तो एक दूसरे किसान भैया से ही अपन कछु न कछु सीखता है, तो अपन को इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखने। और बात आउ थे जो खरीफ में देखो अब हमारे जो किसान भैया बहन है तो उनमें देखत कि खरपतवार को प्रबंधन सोच करने हैं, काहे से भैया देखो अगर मूंगफली में कोनो प्रकार को ज्यादा खरपतवार हो जाए तो उनको काहे नियंत्रण हमारे किसान भैया का करत के देखो दवाई डाल दे, उन्हें कहूँ कहूँ कहा हो कि अपन ने दवाई डाली पानी नहीं बरसू, तो उन्हें अपनी जो मूंगफली की फसल है वो भी कहूँ कहूँ नुकसान हो सकते है। तो ऐसे हमारे किसान भैया से अपनों के बुजुर्ग के देखो अगर चौड़ी पत्ती वालों खरपतवार है और कौन है, तो विज्ञान भैया ने जितनी मात्रा बताई वही हिसाब से डालने, अगर अपन ने ज्यादा मात्रा डाल दी उन्हें कही भैया देखो इसके बाद पानी बरसो जरूरी है, अगर देखो अपन ने दवाई डाली तब तो अपनों हजारों जो चारों वगैरह हो जाते वो हाँ नष्ट हो जाए नहीं हो जाए, तो अपन ही बात को भी हमारे किसान भैया बिल्कुल ध्यान रखने। कैसे भैया अगर अपन ने ध्यान नहीं रखो अपने सी दवाई डाल दी तो अपनी फसल भी कहूँ कहूँ नुकसान हो जाए, तो फिर कल ना देखो भैया गलत दवाई दे दी वो अपन को क्या जरूरत के कोनो प्रकार की, जैसे अपने मूंगफली में किसी भैया ने औरदा मूंग बे दे थे और मैं अपन ने दवाई को छिड़काव कर दो, तो पता लोग अपन खरपतवार मारे वाली दवाई डाली अपने औरदा मूंग में नष्ट हो गए। तो ऐसा हमारे किसान भैया से अपन क्या बोलता है कि देखो जैविक तरीका से अपन खां ही निंदाई गुड़ाई खुरपी से कर लें और जो जो खरपतवार है तो उनको निकलवा दें, तो वो बहुत अपनी फसल का फायदा करें, और रसायन अगर डाले से देखो अपनी फसल तो नुकसान होती हो तो खेती को भी नुकसान हो जाते हैं। तो ये बात को हमारे बिल्कुल भैया बहन का ध्यान रखने, खरपतवार को नियंत्रण प्रबंधन अपन को जरूर करने। अब बात आउ थी भैया को देखो कछु और भी बतकाव करें, कहानी सुन लो जो कछु संदेश।
1: अरे भैया का करें जब खेती किसानी में कौन फसलन में कितने पानी देवे, खाद बीज कितने से ले आवे, किसे पूछ में कछु समझे ही में नहीं आऊ।
2: अब चिंता छोड़िए किसान भाइयों, क्योंकि आकाशवाणी झांसी प्रस्तुत करता है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के सहयोग से RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला। 24 कड़ियों के इस कार्यक्रम में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य आदि से संबंधित जानकारियां और व्यवहारिक अनुप्रयोग की विधियां बताई जाएंगी। यह कार्यक्रम 10 मई 2026 से प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे से प्रसारित किया जाएगा।
3: अरे सच में भैया?
2: हाँ बाबू बिल्कुल सच। हाँ
0: तो देखो भैया राज्य सुनो अपन ने एक संदेश, अब बात आउ थे भैया देखो बतकाव होगा और भैया देखो अपन संदेश भी सुन लो, तो काय नहीं भैया कछु मनोरंजन उमदास हो जाए तो अपन सुने उमदास देशभक्ति गीत, और जहाँ गाय वाले कलाकार है बद्दी प्रसाद परदेसी तो अपन सुने, वो अपने जो किसान भैया बहन है बिल्कुल सुने।
4: नी को लगे।

देखो भैया कितना उल्लास प्रपन्न है, देशभक्ति जो गीत सुनो है। और बिल्कुल गाय वाले कलाकार थे बत्ती प्रसाद परदेसी और इनके संगी साथी। अब देखो भैया का है कि अपने जो झांसी मंडी में आज के भाव का रहे हैं तो अपन को बता दें। देखो गेहूं को भाव रहा है 2350 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम रहा है 2450। और सरसों को भाव रहा है न्यूनतम रहा है 7285 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम 7350 रुपया प्रति क्विंटल। भैया देखो बाजरा को भाव रहा है 1783 रुपया प्रति क्विंटल। और प्याज को भाव रहा है ये देखो 1100 रुपया प्रति क्विंटल। और हरी मूंग को भाव रहा है 8768 रुपये प्रति क्विंटल। टमाटर का भाव रहा है 1550 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1600 रुपये प्रति क्विंटल। और आलू को भाव रहा भी है देखो 1000 रुपये प्रति क्विंटल। और नींबू को भाव रहा है 3000 रुपये प्रति क्विंटल। और हरी मिर्च को भाव रहा है झांसी मंडी में 2650 रुपये प्रति क्विंटल। और लहसुन को भाव रहा है 9000 रुपये प्रति क्विंटल। और मूंगफली को भाव रहा है आज को 4605 रुपये प्रति क्विंटल। तो देखो भैया ये तो होते अपने झांसी मंडी के बाजार भाव। अब बात आउट है कि देखो कल को अपनों मौसम झांसी में अधिकतम तापमान का रहे। तो देखो झांसी में अधिकतम तापमान रहे कल देखो 34 डिग्री सेल्सियस तक, और न्यूनतम तापमान जो है अपनों 27 तक रहेगा। और दिन में देखो आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ गरज चमक के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। और लगभग देखो 50 से लेकर 65% संभावना है अपने बारिश होने की, जो हवा में देखो नमी सोई बनी रहे। तो देखो जो तो होते देखो झांसी मंडी के बाजार भाव और कल को अपनों मौसम की जानकारी। अब बात आउट है कि जो हमारे किसान भैया बहन हैं उनको भी बिल्कुल ध्यान रखने के जो अपने चलत रहे कुमदाय सीख जा अपने राष्ट्रीय चिन्हों को प्रति सम्मान करने अपन हो जाने की। देखो अपने जो राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय चिन्ह है उनको अपन का सम्मान निकाल दे। अब देख रहे हैं कि अपना 15 अगस्त आवे वाले भैया देखो तो झंडा है अपनों, कई प्रकार के ऐसे अपने जो चिन्ह होते हैं राष्ट्रीय उनको बिल्कुल हमारे जो चाहे धरोहर हो चाहे अपने राष्ट्रीय चिन्ह हो तो उनको हमारे किसान भैया मेहनत से अपनों केवल वही रहते हैं कि देखो उन सबको अपन का सम्मान करने। और जैसे झंडा चढ़ाए के बाद जैसे कहीं उतारत हैं तो यथा

स्थान रखने, जिन्हें कि देखो अपन ने चढ़ावे के बाद अपन ने लिया झंडा, अपन कहीं उतर उधर नहीं फेंक रहे हैं। सो हमारे किसान अपने जो कोनो भी प्रकार के जो अपने राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं उनको हमारे प्रति अपन खा बिल्कुल जागरूक रहने, और उनको प्रति सम्मान अपन खा बहुत जरूरी है। अब ये का एक ठड़ी अपन को आगे बोलवे के ज्यादा नहीं दे रही, तो देखो अपन कार्यक्रम को पतो सोई नोट कर लो, कार्यक्रम को पतो है कार्यक्रम चौपाल द्वारा के निदेशक आकाशवाणी झांसी, पिन कोड है 284128। जय के संगे संगे विपिन भैया का दो आज्ञा, नमस्कार।

अभी किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है, FM 103 पर। श्रोताओं, संध्या के 6 बजे हैं। आइए अब हम आपको अपने केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा बता दें। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, नए पुराने गीत सुहाने। प्रादेशिक समाचारों को आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, समय रहेगा 7:19 का। खुशबू माटी की, बुंदेली लोकगीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे केंद्र से 7:31 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे से। शीर्षक गीत, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं रात्रि 8:15 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और न्यूज एट 9 का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 8:45 और 9 बजे से। रोजाना की तरह विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रात्रि 9:15 पर। पॉडकास्ट श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी, इसका भाग 7 आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे और रोजाना की तरह गैर फिल्मी गीत गजलों को आप सुन सकते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में रात्रि 10:30 से। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

समय कभी लौट कर नहीं आता, जो इसे समझे वही आगे बढ़ जाता। समय की जो कदर करता है, सफलता का स्वाद वही चखता है। धरती हमारी, जिम्मेदारी हमारी, स्वच्छ पर्यावरण है सबकी तैयारी। जल बचाएं, पेड़ लगाएं, धरती माँ को स्वर्ग बनाएं। मेरा देश मेरी पहचान, भारत पर हमको है मान। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है FM 103 पर। संध्या के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म यलगार का ये नगमा, उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाजों में। तो लीजिए सुनिए फिल्म यलगार से ये गीत।

उदित नारायण व सपना मुखर्जी को अभी आपने सुना फिल्म यलगार में। लीजिए अब सुनिए ए आर रहमान को स्लम डॉग मिलेनियर में।

आनंद बख्शी की शब्द रचना को अभी आपने सुना फिल्म ताल में। गीत में आवाजें उदित नारायण वालका याग्निक की थी, संगीत दिया था ए.आर. रहमान ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नए पुराने गीत सुहाने। लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान को फिल्म चमेली में। गीत के बोल इरशाद कामिल के हैं, धुन बनाई है संदेश शांडिल्य ने।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: मैं तुलसी तेरे आंगन की, लीजिए अब सुनिए इस फिल्म। इस फिल्म में आशा भोसले, लता मंगेशकर को, गीत के बोल अमीर खुसरो के लिखे हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अमीर खुसरो का लिखा ये गीत अभी आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। गीत फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की से था और गीत को आवाजें दी थी लता मंगेशकर व आशा भोसले ने। श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर व किशोर कुमार को फिल्म प्रेम कहानी में। आनंद

किशोर कुमार, लता मंगेशकर को सुन रहे थे आप फिल्म प्रेम कहानी में। और लीजिए अब सुनिए कुमार सानू व अलका याग्निक को फिल्म धरती पुत्र में। गीत समीर का लिखा हुआ है, धुन बनाई है नदीम शवण ने।

सुन रहे थे आप लता मंगेशकर व हरिहरन को फिल्म लम्हे में। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी शिव हरि ने। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रेडियो झांसी केंद्र है, FM 103 पर। आपसे बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचारों को।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी

0: नई अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी। चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम तीन नाम। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो को किया संबोधित। कहा, प्रदेश को बायो एनर्जी राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर को मिला पहला स्थान। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया पुरस्कृत। और प्रदेश में कल से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 18 अगस्त तक कई जनपदों में भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के व्यवस्था संचालन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया आज पूरी हो गई। उम्मीदवारों के इंटरव्यू और उनके अनुभव का आकलन करने के बाद चयन समिति अंतिम तीन नाम की सूची तैयार करेगी, जिस पर अंतिम फैसला ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: कल से शुरू हुई प्रक्रिया के दौरान 18 आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए। सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय चयन समिति ने कल पहले दिन करीब 10 आवेदकों का इंटरव्यू लिया था, जिनमें रिटायर आईएएस अधिकारी दिनेश चंद्र, रिटायर आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे भी शामिल रहे। सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू और उनके अनुभवों का आकलन करने के बाद चयन समिति अंतिम तीन नाम की सूची तैयार करेगी। ये नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को सौंपे जाएंगे, जिस पर अंतिम फैसला ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को बायो एनर्जी की राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो के दूसरे दिन आज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाही ने कहा कि कृषि प्रधान राज्य होने के नाते प्रदेश में 17 मिलियन टन कृषि अपशिष्ट की क्षमता है, जो ऊर्जा परिवर्तन और नए निवेश का सबसे बड़ा आधार बनेगी।
2: देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक इथेनॉल पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और अगले दिनों में, जैसा आज ही आपके अपने प्रेजेंटेशन में आया कि कंप्रेस्ड बायो गैस में भी हम देश में सर्वाधिक उत्पादन कर रहे हैं, ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश की तस्वीर।
0: कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा भी शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई 8 सितंबर से लगातार 3 दिन करने का निर्णय लिया है। जस्टिस एवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ ने कहा कि अभ्यर्थी लंबे समय से दुविधा की स्थिति में हैं, उनके भविष्य को लंबे समय तक अधर में नहीं रखा जा सकता। कल मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के वकील से कहा कि वह इस मामले से जुड़ी सूची तैयार करें, जिसमें यह सुनिश्चित हो कि किन किन पक्षों को इस मामले पर सुना जाना है। लोकसभा ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने व्यापक विचार विमर्श के लिए विधेयक को दोनों सदनों के सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम रैंकिंग में गोरखपुर जिले का बांसगांव विकासखंड नंबर 1 चुना गया है। यह जानकारी नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर की तरफ से प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे एक पत्र में दी गई है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए गोरखपुर को 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी मिली है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का जोर समावेशी विकास के जरिए नागरिकों के जीवन में सुगमता और गुणवत्ता की वृद्धि और समग्र रूप में जीवन स्तर के सुधार पर होता है। इसके अंतर्गत 5 थीम, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत ढांचा और सामाजिक विकास के कुल 39 संकेतकों पर संबंधित आकांक्षी ब्लॉकों का मूल्यांकन किया जाता है।

0: यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत प्रदेश के कई जिलों में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसी क्रम में लखनऊ में महापौर सुषमा खरकवाल के नेतृत्व में लखनऊ नगर निगम मुख्यालय से गांधी प्रतिमा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल ने साइकिल रैली का आयोजन किया। वहीं बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, संभल, अमरोहा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के मन में राष्ट्रीयता और एकता की भावना को मजबूत करना है।
1: तिरंगा यात्रा आज जो पूरे प्रदेश में देश में निकाली जा रही है, ये हमारे उन तमाम जो जिनकी बलिदानी हुई है स्वतंत्रता सेनानियों की याद में उनको नमन का दिन है। और ये तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं है बल्कि एकता, समृद्धि और विकास, 140 करोड़ लोगों का संबल है।
0: हापुड़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को 2.5 लाख झंडे बनाने का लक्ष्य दिया गया है। गांव अनवरपुर के एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हेमलता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस अभियान के लिए आभार जताया है।
2: हमारे SSG अधिकारियों ने हमें 10,000 झंडे का टारगेट दिया था बनाने के लिए, हमने वो लक्ष्य पूरा किया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में कुछ कार्य करने को मिला महिलाओं के लिए। और पहले गांव में महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, हम SSG से जुड़े तो हमें बाहर जाने का अवसर मिला और हम बहुत खुश हैं इस चीज।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राज्यपाल ने युवाओं को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की।
3: नशा किसी भी युवक की शक्ति नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। यह व्यक्ति से उसका विवेक, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, परिवार का विश्वास और जीवन का उद्देश्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान केवल एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र की युवा शक्ति को सुरक्षित रखने का जन आंदोलन है।
0: 16वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2026 के लिए उत्तर प्रदेश की महिला हॉकी टीम का चयन कर लिया गया है। टीम का कप्तान वंदना पटेल को बनाया गया है। प्रदेश में कल से एक बार फिर मॉनसून सक्रिय होगा, जिससे 18 अगस्त तक राज्य में व्यापक बारिश की संभावना है। उधर पहाड़ों पर लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण फरुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। जिलाधिकारी अंकुर लाठर ने बताया कि प्रशासन ने सभी इंतजाम किए हैं।
4: दिलीप की मड़ैया में कटान की शिकायत थी तो वहाँ कटान हुआ था, 25 जो मकान है वो भी बह गए थे, तो उन सभी को राहत धनराशि भी दी जा रही है 1,20,000 और उन लोगों को पट्टा भी दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है क्योंकि गांव में बच्चे हैं, स्कूल से बिल्कुल संपर्क मार्ग टूट गया है, तो कल से वहीं पे टीचर्स जाके बच्चों को पढ़ाएंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी। चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम 3 नाम। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो को किया संबोधित। कहा, प्रदेश को बायो एनर्जी राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर को मिला पहला स्थान। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया पुरस्कृत। और प्रदेश में कल से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 18 अगस्त तक कई जनपदों में भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: रेडियो की तरंगों पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का झांसी केंद्र FM 103 पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की। लीजिए सुनिए आलोक दीप मिश्रा को इस गीत में।

झला वो किसान को लला अपने हार खा चला, वो किसान को लला अपने हार खा चला, वो किसान कान्हे पे हर धर के हाथ लेके पोटला निकल पड़ा वह करने सारे देश को भला, वो किसान को लला अपने हार खा चला, वो किसान को लला अपने हार।

नंद किशोर वर्मा व साथियों को भी आपने सुना ये चौकड़िया गीत में। और अब सुनिए हर प्रसाद कुशवाहा का गाया ये देशभक्ति गीत।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की। लीजिए अब सुनिए शकुंतला शुक्लावा साथियों की आवाज में ये कजरी गीत।

0: वीरपाल सिंह यादव व साथियों का गाया अभी आपने ये वर्षा गीत सुना।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 पर। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 पर। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा।

ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा पर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया गया। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा

चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस विधेयक पर चर्चा के समय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित नहीं हैं। हालांकि उपसभापति ने उनकी ये आपत्ति खारिज कर दी। बाद में कांग्रेस सहित कई विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मोहोल ने कहा कि एनसीडीसी को सहकारिता क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अन्य बदलावों के अनुरूप बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सदैव राज्यों की सरकारों से सुझाव लिए हैं और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय

विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के अंतर्गत की गई थी। चर्चा में बीजू जनता दल की सोलता देव, डीएमके सदस्य के आर एन राजेश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, भारतीय जनता पार्टी के रामराव सखाराम वडकुते, अमरपाल मौर्य, सदानंद महालू शेठ तानवड़े, बंशीलाल गुर्जर, डॉक्टर अलका गुर्जर, एआईए डीएमके सदस्य एम थम्बीदुराई, डॉक्टर एन धनपाल, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, शिवसेना की ज्योति नागनाथ बागमारे, टीडीपी के विजय चिंता कायला, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा करने और पारित करने के लिए लिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में केरल के सदस्यों ने अपनी बात मलयालम में रखी तथा केरल की संस्कृति की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। कई सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि ये कदम राज्य के लोगों की इच्छा के अनुरूप उठाया जा रहा है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, सुधांशु त्रिवेदी, लहर सिंह सरोया, कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम, मनोनीत सदस्य सी सदानंद मास्टर, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डीएमके के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राय, एआईए डीएमके सदस्य एम थम्बीदुराई, शिवसेना की ज्योति नागराज बागमारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, टीडीपी के विजय चिंता कायला, केसीएम सदस्य जोस के मणि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य संतोष कुमार पी, आईयूएमएल के हारिस बीरन, यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी और डीएमके सदस्य एल के सुधीश ने भी भाग लिया। संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन की बैठक कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में दोनों विधेयकों को पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की है और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। ये स्पष्टीकरण उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के उस आरोप के सिलसिले में दी जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी सदस्य ने उन्हें बार बार लुंगी वाला कहा था। सवेरे 11 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने दोनों सांसदों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की पेशकश की। इससे पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद ब्रिटास ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भाजपा के एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब ये कथित घटना हुई थी तब वो सदन में मौजूद थे। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि वो संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति अनूठी है और विविधता में एकता हमारी विशेषता है जो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की संस्कृति को लेकर कोई भी आहत

करने वाली बात कहना ठीक नहीं है। सभापति ने कहा कि वो संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में सुष्मिता देव मौजूद थीं। इस बीच कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर देने की मांग की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की कथित चोरी को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने 12:20 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब आप सुनिए लोकसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन में हंगामे के बीच ही खान और खनिजों से संबंधित एक विधेयक पारित कर दिया गया और एफसीआरए विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने को मंजूरी दी गई। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश सदन चलते हुए दिखना चाहता है। श्री ओम बिरला ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हो। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है। गृह मंत्री भी अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं। उन्होंने आसन के समीप हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि देश की भावनाओं को समझना चाहिए, देश चाहता है कि संसद चले। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल चलने दें, इसके बाद सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि विधेयक गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एफसीआरए विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए तंज कसा कि यह सरकार आज तक ऐसा कौन सा विधेयक लाई है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। डीएमके नेता टीआर बालू ने भी विधेयक को वापस लेने की मांग की। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जो अल्पसंख्यकों या किसी भी समुदाय के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का सवाल नहीं उठता। श्री रिजिजू का कहना था कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को विधेयक के किसी बिंदु का विरोध करना है तो वो संयुक्त समिति के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कुछ समुदायों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति इस वर्ष शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह में लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके सदस्य विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 वापस लेने की मांग करते हुए भी

0: हंगामा करते रहे। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का विरोध करते हुए कहा कि संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है। हालांकि सदन के हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ विपक्षी सदस्यों के प्रदर्शन के तरीके के इशारा करते हुए आसन से मांग की कि विपक्ष के वरिष्ठ साथियों को अनुशासन के साथ प्रदर्शन करने के लिए समझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता सही नहीं है, विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर चले जाएं तो हम विद्यार्थियों के मुद्दे पर अभी चर्चा शुरू करने को तैयार हैं, 80% सदस्य चर्चा चाहते हैं। रिजिजू ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से फिर से अनुरोध किया है, नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का जो आंदोलन हुआ है उस पर तत्काल चर्चा शुरू करने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते विपक्ष के सदस्य शांति से बैठें। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा, सरकार इसके लिए तैयार है कि इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ किया जाए। आपकी मांग थी कि गृहमंत्री इस पर जवाब दें, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, गृहमंत्री हर बिंदु पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल इसका अंतिम कार्य दिवस है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरे सत्र में सदन में गतिरोध बना रहा और अब तक एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चला है। निचले सदन ने पिछले कुछ दिनों में हंगामे के बीच ही कुछ विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी है। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। उस समय वो दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा का मानसून सत्र 2026। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है FM 103 पर। अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम शीर्षक गीत। शीर्षक गीत के इस कार्यक्रम में हमारा आज का शीर्षक है घुंघरू। श्रोता दोस्तों, जब घुंघरू छनकते हैं तो कदम थिरकते हैं और जब कदम थिरकते हैं तो महफिल अपने आप खुशनुमा हो जाती है। जी हाँ, यही तो खासियत है घुंघरुओं की। और लीजिए सुनिए इसी पर आधारित हमारे ये पहला गीत।

लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में अभी आपने ये गीत सुना फिल्म अर्पण से। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं शीर्षक गीत और हमारा आज का शीर्षक है घुंघरू। जी हाँ दोस्तों, वही घुंघरू जो पैरों में बंधते हैं तो इंसान की चाल और उसका हाल दोनों बदल जाते हैं। जानिए कैसे।

0: देखा, हमने कहा था ना कि घुंघरू जब पैरों में बनते हैं तो हाल और चाल दोनों बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने ये गीत सुना फिल्म संघर्ष से, मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल शकील बदायूनी के थे और संगीत दिया था रोशन ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं शीर्षक गीत। कार्यक्रम में हम सुनेंगे अगला गीत इस छोटे से अंतराल के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: 生だ。
1: श्रोताओं, अंतराल के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं और हम बात कर रहे थे घुंघरू की। जी हाँ, हर छन छन में एक कहानी कहते हैं घुंघरू, हर ताल में एक एहसास है। घुंघरुओं के रुंझुन में छिपा जीवन का हर राज है। ये सिर्फ पैरों की शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि सुर, लय, ताल और भावनाओं की आवाज भी बन जाते हैं।

आप सुन रहे हैं घुंघरू शीर्षक पर आधारित गीत। अब ये गीत आपने सुना फिल्म वॉर से अरिजीत सिंह व शिल्पा राव की आवाजों में। और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर व सखियों को फिल्म गंगा जमुना में।

0: चोर मचाए शोर। इस गीत में आप सुन रहे हैं किशोर कुमार को और गीत संगीत रविंद्र जैन का है। श्रोताओं, आज आपने शीर्षक गीत पर आधारित कुछ गीत सुने जिसमें हमारा आज का शीर्षक था घुंघरू। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है FM 103 पर। अब से बस थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। तत्पश्चात होंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते।

0: अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
3: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
4: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि

0: के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
1: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 ट्रिलियन की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
2: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहाँ पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को जयपुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है।

0: मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढककर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारीशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill to enhance funding and development of cooperative sector, also gives nod to legislation to rename state of Kerala as Keralam. Both houses refer Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. Home Minister Amit Shah says he is ready for detailed discussion on NEET paper leak related issue, writes letter to Lok Sabha Speaker. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for greater private capital mobilization in BRICS economies for global growth. Heavy to extremely heavy rainfall likely over parts of Odisha and Gangetic West Bengal for next 2 days as low pressure forms over Bay of Bengal. And Indian fencing team clinches 5 medals, including 3 gold on 3rd day of Commonwealth Championship in Nigeria. Parliament has passed the

कच्चे धागे इस फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

नौशाद की तर्ज शकील बदायूनी का लिखा गीत था। आशा भोसले की आवाज में फिल्म थी दिल दिया दर्द लिया।

रवि की तर्ज थी शकील बदायूनी का लिखा गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म थी चौदहवीं का चांद, गेटवे ऑफ इंडिया। इस फिल्म का गीत है लता मंगेशकर मोहम्मद रफी का गया।

राजेंद्र कृष्ण की का लिखा ये नगमा था मदन मोहन का, संगीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी के गाए। फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम आपके लिए अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब सुनिए पॉडकास्ट श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी का भाग 7।
2: ये आकाशवाणी है पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
3: साहस, अनुशासन, राष्ट्र सेवा, ये वो गुण हैं जो हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बलों की पहचान है। और जब इन मूल्यों में नारी शक्ति का अदम्य साहस और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जुड़ जाता है तो एक प्रेरक गाथा बन जाती है। ऐसी ही एक प्रेरक गाथा के बारे में आज हम बात करेंगे IASV त्रिवेणी समुद्र प्रदक्षिणा की, जिसमें पहली बार सेना के तीनों अंगों की महिलाओं ने हिस्सा लिया और समुद्र प्रदक्षिणा की। तो ये अभियान कैसा रहा, क्या

0: चुनौतियां रही, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और साथ में है मेजर प्राजक्ता पी निकम। आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: शुरुआत करें, आगाज करें इस कार्यक्रम का। तो सबसे पहले जब आपको एक्सपीडिशन के बारे में, इस अभियान के बारे में पता चला, तो व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट इन योर माइंड
1: कि ऐसा भी कोई एडवेंचर होता है क्या? टू इमेजिन कि आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएंगे और उससे पहले कभी फॉरेन कंट्री तक नहीं गए थे, तो वो जो ख्याल है कि पूरी दुनिया का चक्कर, वो नाम ही इतना बड़ा था कि लगा कि नहीं, ये तो करके देखने की ये चीज क्या होती है।
0: विभा जी और वैशाली जी, वायुसेना से आप हैं, तो आपने हमेशा बादलों के बीच उड़ान भरी है, लेकिन इस बार समुद्र के बीच लहरों के साथ आपको सफर करना था। तो वैशाली जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या वो हलचल रही मन में जब आपको पता चला?
2: तो एक नॉर्मल डे की बात है, हम ऑफिस में बैठे हैं, ये सिग्नल आता है कि सेलिंग के लिए चुनाव हो रहे हैं और 3 सर्विसेज से लिया जा रहा है। पहले तो वो ही अविश्वसनीय था मेरे लिए। रही बात भाई एयरफोर्स से सेलिंग की, हर कोई नहीं समझ पाता, यही पूछते हैं कि एयरफोर्स से होकर सेलिंग कर रहे हो, वो भी इंडियन आर्मी के साथ, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यही एक मैसेज है सबके लिए कि ये पॉसिबल है। और यही नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल आज के टाइम में हमारे देश में और ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है
0: जी, और टीम स्पिरिट से ये सब पॉसिबल हुआ। प्राजक्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मन में क्या उस समय जहन में था जब आपका सिलेक्शन हुआ? तो ये सिलेक्शन कैसे आपको एकदम से बताया गया, या आपने अपने बारे में बताया कि आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं इस अभियान के लिए?
3: एक्चुअली ये जो एक्सपेडिशन है, इसकी प्रिपरेशन 3-4 साल पहले स्टार्ट हुई है। तो 3 साल का हमारा सिलेक्शन रहा है, एंड 1 ईयर आप ले लो 10 मंथ्स फॉर आर एक्सपेडिशन टू यू नो स्टार्ट एंड फिनिश। तो इनिशियली इट वॉज ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस, तो 41 वुमेन ऑफिसर्स एंड एक अग्निवीर हमारे साथ थे, और हम 42 टोटली थे फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज, जिन्होंने 3 फेजेज ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स कम्प्लीट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो उसके बाद जाके फिर ये फाइनल टीम सेलेक्ट हुई है 9 वुमेन ऑफिसर्स की फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। पहले तो चलो हमारा ट्रेनिंग ही चल रहा था, बट जिस दिन पता चला कि अब जाने का टाइम आ गया है, तो उस टाइम ऐसे लगा कि अब तो गए। तो लिट एक्चुअली बिकॉज इट इज अ मैसिव थिंग, इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग टू यू नो गो अराउंड द वर्ल्ड, तो इनिशियल फियर तो रहता ही है।
0: आपसे जानना चाहूंगी विभा जी, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग का पार्ट, क्योंकि आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो आपको आर्मी के जब आपने ट्रेनिंग ली होगी तब भी आपको मिली होगी, लेकिन इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई?
1: देखिए, अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो जो हमारी सेलिंग थी वो छोटी मोटी सेलिंग नहीं थी, हमें समुद्र में 9 से 10 महीने रहना था। इसका मतलब कि हमको तैयार करना था मानसिक, शारीरिक एंड एज अ टीम ऑल्सो। तो जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो एकेडमी की जो हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर एज डिफेंस फोर्सेस जिस तरीके से हमको ट्रेन किया जाता है, यस, वो काफी हद तक हमारे काम आई, क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत कॉमन होती है। लेकिन समुद्र में इस एक्सपीडिशन को करने के लिए एडिशनल हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई। जैसे हम सबको याद है कि हम सुबह 5 बजे उठते थे और 1.5 घंटे तक भागना, दौड़ना, रस्सी चढ़ना, पुशअप, पुलअप, मतलब हर बॉडी की एक एक मसल को इतना स्ट्रांग बनाया गया कि जब आप समुद्र में रहोगे तो आपको किसी तरीके की तकलीफ ना आए। फिर दूसरा, ट्रेनिंग को इतना कठिन इसलिए किया गया बिकॉज समुद्र में आप खुद हो, आपके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। फिर रही बात, हम सब में से किसी को सेलिंग आती नहीं थी, तो इसका मतलब हमें बोट क्या होती है, कैसे चलाते हैं, हवा को कैसे पढ़ते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं, समुद्र में अगर दूसरे शिप्स हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये एक एक चीज हमें पढ़ाई गई। और उसके बाद टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज अ टीम आप वहां पे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारी टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइजेज हुई
0: जी। स्क्वाड्रन लीडर वैशाली, आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो दी गई और थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिव दी गई इसमें, लेकिन जो सबसे जरूरी होती है आपकी मेंटल ट्रेनिंग, क्योंकि आप कई बार आपको ट्रेन किया जाता है लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको लगता है शायद दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, तो कुछ ऐसा अलग रहा आपको, तो मेंटल ट्रेनिंग भी फिजिकल ट्रेनिंग किस तरह से काम आई आपके एक्सपेडिशन में?
2: बीइंग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड और वेयरिंग अ यूनिफॉर्म इटसेल्फ, बी इट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, मेंटली

0: होने की हमें ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जाती है, तो यहाँ पे भी वही चीज काम आई। थोड़ा सा मैं ये बोलूंगी कि एंड्योरेंस और स्टेमिना, कि महीनों महीनों तक कुछ ना दिखना, कोई कलर ना दिखना, कोई पक्षी ना दिखना, इंसान ना दिखना, और महीनों बाद कोई एक शिप भी दिख जाती है तो उसमें भी बहुत खुशी होती है कि आज हमने एक शिप देखी, और उसकी बात पूरे एक डेढ़ दिन तक करते रहना कि आज हमने रेड कलर की एक शिप देखी करके। तो वो चीज ट्रेनिंग करते करते, सेलिंग करते करते बढ़ाई गई। अकेलापन फील होना, उसकी जो फाइट होती है वो हमने सेलिंग करते करते ही सीखी। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस आई फील की था, बाकी सेम।
1: मेजर प्राजक्ता, आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि जैसे अब आप फिजिकल ट्रेनिंग भी, मेंटल ट्रेनिंग भी, फिर भी उसको सस्टेन करना और अपने एक ना आत्मविश्वास बनाए रखना, नहीं हम कर लेंगे, तो ऐसे भी कुछ पल आए उस समय जब आप एक्सपेडिशन पर थी?
0: ऐसा नहीं था कि हम हर रोज जब उठ रहे हैं कि हम मोटिवेटेड फील करें कि आज तो भाई एकदम जोश में है हम, ऐसा नहीं था। बहुत सारे दिन थे जब हम इतने टायर्ड थे, रात रात तक हम कुछ रिपेयर कर रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, अगले दिन इतना फटीग है हम में। एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन, इनफैक्ट पहले भी, बिफोर फ्लैग ऑफ हुआ हमारा, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जब हमें लगा है कि हम जा पाएंगे या नहीं, क्या हम कर पाएंगे या नहीं। बट बिकॉज 9 लोगों का एक ही मिशन था, एक ही गोल था, सो दैट यू नो मोटिवेट्स यू। इवन अगर आप एक दिन, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, तो आई नो कि बाकी हैं हु विल लिफ्ट मी अप।
1: टीम वर्क काम
0: यस
1: आई इस पूरे
0: यस
1: एक्सपेडिशन में। विंग कमांडर विभा जी, जैसे उन्होंने कहा कि वैशाली जी ने कि शिप एक दिख जाती थी तो बहुत
0: जी
1: अच्छा लगता था, और हम सभी के जहन में ये है कि आप लोग एक शिप में गए हैं, बहुत आरामदायक थी जिसमें सभी सुविधाएं थी,
0: जी
1: तो क्या वाकई में ऐसा था या आपको और भी कई इसको लेकर भी, उठने जागने सोने को लेकर भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
2: जनरली हम फोर्सेस में हैं तो हमारे पास खाना खाने के लिए एक मेस होती है, हमें एक अकोमोडेशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसे जब मेरे घर वालों पूछते थे कि अच्छा आज मेस में क्या बना है, तो शिप में भी एक मेस होती है, डाइनिंग हॉल होता है जहाँ आप खाते हो, तो मैंने कहा मेस नहीं है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ एक खड़े होने की जगह होती है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कुक अच्छा खाना बनाता है, हमने कहा कोई कुक नहीं होता है। हमारा लिविंग एरिया था एक 50 फीट लंबी बोट और 15 फीट चौड़ी, इसी में हमारी पूरी दुनिया थी। और धीरे धीरे जब हम उस बोट में रहे तो हमको ये भी इतना लंबा लगता था कि अरे वाह हमारे पास कितनी ज्यादा जगह है। और अगर दिनचर्या की बात करेंगे तो वो जो बोट है वो बहुत छोटी है, तो जब समुद्र की लहरें या विंड होता है तो बोट कभी सीधी नहीं चलती है। तो उसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक दिन बताइए, तो उसमें सोना खाना पीना जागना कुछ भी एक जो नॉर्मल इंसान करता है वैसा नहीं होता है। एक तो समुद्र में वैसे ही आपकी बॉडी के रिएक्शंस बहुत स्लो हो जाते हैं बिकॉज कंडीशंस बहुत हार्श होती है, और उसमें हम खुद ही खाना बना रहे हैं, तो मौसम अच्छा हो खराब हो उसके हिसाब से खाना बनता था। धरती पे खड़े होने का, सीधे खड़े होने का जो आनंद है, और वो 6 घंटे की नींद लेने का जो आनंद है, और वो कहते हैं ना जॉय ऑफ लिटिल थिंग्स, ये हमने बोट पे रह के सीखा।
1: जैसे खाने के बारे में आपने बताया, आप लोग तीनों अलग अलग कोने से हैं तो सबका जो उसका जो टेस्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा, तो किसकी पसंद का खाना बनता था, कैसे बनता था?
2: फॉर्चुनेटली हमारी बोट में ऐसे टीम मेंबर्स थे जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। और जब हम कहते हैं बहुत अच्छा, वो ऐसा नहीं कि खाना बनाना चाहता है, वो उनका पैशन था। तो यहाँ पे जो ये प्राजक्ता जी बैठी है, हम वेट करते थे कि ये मदर ऑफ द बोट, मतलब वो क्रू मेंबर जो उस दिन तीनों टाइम का खाना बनाएगा। तो जब पता चलता था कि हाँ भाई आज प्राजक्ता जी की ड्यूटी है, तो पूरा दिन सब यही पूछते थे आज क्या बनेगा आज क्या बनेगा। प्राजक्ता जी ने बोट में, समुद्र में हालत खराब है, सबको सी सिकनेस हो रही है, मतलब उल्टियां लग रही है, बट इन्होंने हमें छोले आलू टिक्की चाट खिला दी और हम
1: दिन बन गया,
2: दिन महीने बन गए।
1: ये है, मतलब जब आप ट्रैवल करते हैं तो जैसे सी सिकनेस की बात की तो इस तरह से कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आप बताएं वैशाली जी किस तरह से उसको आपने हैंडल किया? तो कोई वहां पे कोई स्वास्थ्य चिकित्सक भी था आपके साथ जिसने आपको मदद की इस दौरान?
0: हमने मेडिकल वाइज जो हमने इश्यूज फेस किए हैं, मोस्टली इट इज विद रिस्पेक्ट टू, पहले तो सी सिकनेस है, फीवर है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस है उसमें जो तबीयत खराब होती है, और इट इज योर मंथली साइकिल। दीज आर द काइंड ऑफ इश्यूज दैट वी हैव फेस्ड, एंड वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी एक क्रू मेंबर, एक मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है,
3: हु इज ट्रेन्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स. तो बिसाइड्स वो सेलिंग तो कर ही रहे हैं लेकिन उसके साथ

0: साथ ही उनकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबका बोट में ख्याल रखना। वो उनका रहना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता था, वो उस हालत में आने ही नहीं देती थी हमें कि हम बिल्कुल ही बेड में पड़ जाएं। शी यूज्ड टू टॉक टू अस, पता करना एवरी डे आज कैसा फील हो रहा है, आज कैसा फील हो रहा है। प्लस थैंक गॉड ऐसी कोई आपदा नहीं आई, मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई जिसकी वजह से हमें डिटोर करना पड़े या कोई बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाए।
1: तो आप कुल 9 लोग थे, मेजर प्रोजेक्ट था, तो किस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, क्योंकि आपको 24 घंटे रात दिन काम करना है, सेलिंग करनी है, तो कौन कैसे किस तरह से जिम्मेदारी निभाता था?
2: तो बोट पे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 6 ऑफिसर्स होते थे, उसमें से एक मतलब एवरी डे देयर वाज अ मदर ऑफ द बोट, तो हम 6 में से वो रोटेट होते रहते थे। बाकी जो 5 बचे उनमें से 2 ऑफिसर्स, मतलब 2-2 ऑफिसर्स की ड्यूटी होती थी, तो वो रोटेशनल बेसिस पे होती थी। एंड ऐसा नहीं है कि किसी एक, जैसे कि आई एम स्पेशलाइज्ड इन समथिंग और मैम इज स्पेशलाइज्ड इन समथिंग, वी ऑल नो एवरीथिंग, तो हमको सब चीज में ट्रेनिंग दी गई है, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो साफ सफाई हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, हम सबको सब आता है। तो वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता था, इट वॉज नॉट कि एक ही पर्सन पे लोड आए।
1: तो दिस वाज द बेस्ट पार्ट कि सबको सब कुछ मालूम था, किसी तरह की दिक्कत ना आए।
2: यस।
1: तो आपका जब ये एक्सपीडिशन था तो आप किन किन जगहों से गुजरी, कहाँ कहाँ से गए आप?
3: देखिए, जब हम सरकम नेविगेशन की बात करते हैं तो सरकम नेविगेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मीट करने होते हैं। उन्हीं क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना रूट प्लान किया था। तो हम इंडिया से सबसे पहले गए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां पे हमें केप लुइन क्रॉस करना था। ऑस्ट्रेलिया में हम गए फ्रीमेंटल, फिर फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया से हमारा अगला था पोर्ट ऑफ कॉल लिटिलटन न्यूजीलैंड में। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, जब हम जा रहे थे हम एक स्टॉर्म में फंस गए और हमारा सेल फट गया और उस सेल के बिना हम आगे नहीं जा सकते थे। तो लकीली हमने एक पास में एक आइलैंड था तस्मानिया करके, वहां पे हमने हॉल्ट लिया, वो अनप्लान्ड था बट वहां पे हम रुके, हमने अपना सेल रिपेयर किया और फिर हम आगे बढ़े न्यूजीलैंड की तरफ। न्यूजीलैंड से फिर हम गए अर्जेंटीना, ब्यूनोस आयरिस, क्योंकि हमें सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका में केप हॉर्न करके एक जगह है जिसको ड्रेक्स पैसेज भी कहा जाता है, वो क्रॉस करना अगेन मैंडेटरी होता है। उसको क्रॉस करते हुए हम ब्यूनोस आयरिस पहुंचे अर्जेंटीना में, फिर वहां से हम गए साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। केप टाउन से इंडिया आते हुए जो हमारा थर्ड ग्रेट केप होता है जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उसको क्रॉस करते हुए फिर हम वापस इंडिया में मुंबई आ गए। तो हमारा एक्सपीडिशन मुंबई से शुरू हुआ और फिर मुंबई पे ही आके खत्म हुआ।
1: विभा जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने 2 बार इक्वेटर को पार किया, सदर, एक बार सदर्न हेमिस्फेयर फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रही होंगी आपने, बहुत ह्यूमिड भी, गर्मी का मौसम भी देखा होगा और बहुत ही ठंड का मौसम भी देखा होगा, तो उस जो वेदर कंडीशंस को फेस किस तरह से किया और मन में क्या दुख दुखी चल रही थी?
3: अभी भी जैसे हम आए हैं, कोई हमसे पूछता है कि आप सब तो एक साल सेलिंग करके आ गए बट आपके चेहरों में कहीं लग नहीं रहा है कि आपको टैनिंग हुई है, हम उसका यही आंसर देते हैं कि हम 8 महीने इतने लेयर ऑफ क्लोथ्स हम पहन के सेलिंग करके आए हैं, हमारे शरीर का कोई हिस्सा एक्सपोज ही नहीं हुआ। हमने जब इंडिया से शुरू किया तो मौसम गर्म था लेकिन रात को हल्की हल्की ठंड होती थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले थे उस टाइम पे ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी, तो हम 2-2 लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनते थे। उसके बाद आप ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से अर्जेंटीना जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में गए थे, वहां पे इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैं आपको बताती हूँ, हम सर पे जितने कपड़े आ सकते थे हम उतने पहनते थे, और अब वो अगर हम काउंट करेंगे उनको तो सर पे 3 लेयर, हाथों में ग्लव्स की 3 लेयर, ऊपर 5 लेयर, 3 लेयर इनर की, उसके ऊपर फ्लीस एंड विंटर एंड वाटरप्रूफ जैकेट, तेम नीचे सॉक्स के 3 पेयर और शूज। जब हम अपनी ड्यूटी करने जाते थे तो हम इतने पैक हो जाते थे कि हम चल भी नहीं पाते थे, और उस वेदर में जैसे ही आप बाहर जाओगे, बाहर आप मानिए कि हवा की गति 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलमोस्ट, और 0 डिग्री की हवा जब आप पे लगेगी 5 मिनट में हमारे हाथ सुन्न हो जाते थे। अगर हम अपनी ड्यूटी को एक्सटेंड भी करना चाहते थे, मान लीजिए 1 घंटा, हमारे हाथ इतने सुन्न होते थे कि हम वापस अंदर आते थे, गैस पे अपने हाथ सेकते थे ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो बन पाए। एक इंसिडेंट मैं आपको इस चीज का बताना चाहूंगी, हमारा सेल फट गया था, तो जब हमारा सेल फटा तो हमें वो चेंज करना था। चेंज करने के लिए अब क्या है कि उसमें आपको हुक्स लगाने पड़ते हैं, मैन्युअली वो चेंज करनी थी, और हुक्स हमने जब ग्लव्स से लगाने की कोशिश की तो नहीं लग पाए क्योंकि ग्लव्स में फिंगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, 3 ग्लव्स है।

0: ग्लव्स उतारे और हाथ एकदम सुन। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ठंड कभी महसूस नहीं की कि मेरे हाथ सुन हो जाए। और कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, ऊपर से कॉन्टिन्यूस आपके ऊपर पानी गिरता है, तो जितने भी आपने लेयर्स पहने हैं वो हमेशा अंदर तक भीगे रहते हैं। तो हमने फाइनली फिर हाथों में पैरों में पॉलिथिन्स पहनना शुरू किया कि पानी और स्किन का थोड़ा सा टच बचे और हमारे हाथ थोड़ा लेट नंब हो। तो ये वेदर था एक्सट्रीम,
1: मतलब एक तो पानी की लहरें, हवा और उसके बाद अगर बरसात आ जाए तो बताइए वैशाली जी, उस समय कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा हो कि ऐसा भी कुछ हुआ था? और जैसे अभी तो हम हंस रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या हाल था?
2: नहीं नहीं, उस समय हमने ऐसे दिन देखे हैं जब हफ्तों हफ्तों बारिश हो रही थी, तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हाँ ठंड थी, लेयर्स पहने हैं, गीले हो गए हैं, अभी आप 4 घंटे की ड्यूटी करके गए हो और 6 घंटे बाद आपको दोबारा ड्यूटी पे आना है, क्योंकि रोटेशन ऐसे ही चलता है, 6 घंटे में आपके कपड़े नहीं सूखेंगे, तो आपको वही गीले कपड़े पहन के फिर 4 घंटे आना है, फिर आपको गीला होना है, फिर अगले 6 घंटे आपके वो कपड़े नहीं सूखेंगे। तो हमने शायद हफ्ता ऐसे ही निकाला होगा कि बारिश भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, बट आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप वैसे ही पहन के बैठे रहो, और जब आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है तो विद इन 2 मिनट्स यू हैव चेंज्ड और आप एक गर्म कपड़े में आके, आपको कोई भगवान आके गरम गरम चाय पिला देता है। ऊपर से अगर बारिश पीछे से आ रही है तो इट इज स्टिल फाइन, आपको डायरेक्ट नहीं लग रही, बट अगर आपको सामने से बारिश आ रही है एंड यू आर गोइंग एट अ स्पीड, तो वो एकदम सुई की तरह चुभती है। अब आप आंख भी नहीं खोल पा रहे हो, तो आप देखोगे क्या? तो विजिबिलिटी वैसे ही पुअर है क्योंकि बारिश हो रही है, उसमें आप जो बचा कुचा दिख रहा है वो भी आप पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे हो क्योंकि बारिश का पानी आपको आंखें खोलने ही नहीं दे रही है। तो आप मतलब ऐसा था कि 15 सेकंड आप ऊपर देखोगे फिर नीचे देखोगे, उस तरह से हमें 4 घंटे बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था।
1: तब नेचर प्राजक्ता, आपका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि जैसे अगर हवा आ रही है सामने से बहुत तेज आ रही है तो आपको शायद कई बार ऐसा भी हुआ होगा डायरेक्शन चेंज करनी होगी, लंबा रास्ता भी तय करना पड़ा होगा, तो इस तरह की भी आपने समस्या देखी?
3: हमारी बोट चलती ही सिर्फ विंड पावर पे, तो हम अपना डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज ही करना पड़ता था। तो काफी बार ऐसा हुआ है कि हम बहुत नॉटिकल माइल्स दूर चले गए हैं अपने जहाँ पे हमने पहुंचना है एग्जैक्ट वे पॉइंट से, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कभी उल्टा भी निकल गए बिकॉज हवा ही नहीं है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन फील होता था, बट फिर हम कुछ कर नहीं सकते। उस
0: एक्सट्रीम देखा है हमने, एक्सट्रीम मतलब जीरो हवा भी देखी है, जैसे इन्होंने बताया कि हम पीछे जा रहे हैं, पानी हमको पीछे धकेल के ले गया, और हमने 60 नॉट्स ऑफ विंड मतलब ऑलमोस्ट 100 प्लस किलोमीटर पर आर का विंड भी देखा जब हमारी बोट ऑलमोस्ट पानी के अंदर जाने वाली थी, तो और मतलब एकदम इतनी गर्मी भी देखी है कि हम सब एकदम पसीना पसीना, और इतनी सर्दी भी देखी है कि हम हमारे हाथ जम गए।
3: ये गर्मी और सर्दी वाला मैं आपको जस्ट एक्सट्रीम का आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल दिस थिंग, सदर्न ओशन में जब हम थे, मैम ने जैसे बताया इतनी ठंडी थी कि हमारे बोन्स तक दर्द होने लग जाते थे। आई हैव सर्वड इन 3rd stage हाई ऑल्टीट्यूड, उधर भी बहुत ठंडी होती है, आई हैव सर्वड इन लद्दाख, वहां पे मैंने ठंड देखी है, बट वो ठंड मेरे को बहुत कम लगी कम्पेयर टू व्हाट वी विटनेस्ड हियर। एंड एक्सट्रीम गर्मी का मैं बताऊं, हमारे लिए पाउडर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया था, हम गले से लेके एंकल तक सिर्फ पाउडर में ही होते थे।
1: आप बताएं स्क्वाड्रन लीडर वैशाली की, नाउ वुमेन आर दे आर अनस्टॉपेबल, ठीक है, तो बीइंग अ वुमन व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू फेस्ड?
2: मैं फ्रेंकली ये बताना चाहूंगी, नॉट टू एग्जैजरेट, मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसी कोई डिफिकल्टी आई है, जो मैंने लड़कों को करते हुए देखा है वही एग्जैक्ट चीज हमने करी है। हाँ, अगर मैं पहले से ये बना के चलती कि अब मैं पीरियड्स में कैसे करूंगी, मुझे एक कम्फर्ट जोन चाहिए, और नहीं मुझे नहाना है, अगर इफ आई एम ट्रेन्ड इन दैट मेंटेलिटी एंड इफ आई कंटिन्यू टू वर्क इन दैट मेंटेलिटी, ऑब्वियसली इट बी इट सेलिंग और एनी अदर एक्टिविटी आई विल नेवर बी एबल टू डू इट। बट हम हमेशा से ट्रेन ही लड़कों के साथ हुए हैं, हम ट्रेन ही वैसे हुए हैं एज लाइक वी आर इक्वल, इट इज जस्ट अबाउट दैट मेंटल स्ट्रांगनेस टफनेस विच वी से, वो हमने कंटिन्यू रखी।
1: विंग कमांडर, जैसे आप लोग वायुसेना से हैं, आप थल सेना से हैं, तो वहाँ का भी जो कुछ अनुभव आपके सेलिंग के दौरान काम आया हो, एक्सपेडिशन में काम आया हो?
0: अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो अनडाउटली इंडियन नेवी का पानी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो उन्होंने मैं काफी हेल्प की, गाइड किया कैसे करना है क्या करना है। इंडियन आर्मी का अगर कहेंगे तो भारत में जो सेलिंग की शुरुआत हुई थी वो इंडियन आर्मी से ही हुई थी, पहला जो दुनिया का चक्कर लगा के बोट आई थी वो इंडियन आर्मी की ही थी, तो इंडियन आर्मी के पास वो एक्सपीरियंस भी था। और अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं

0: तो जो जिस तरीके का मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग इनकी होती है, अनडाउटली वो हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमें उसी तरीके से ट्रेन किया गया। ट्रेन इस तरीके से किया गया कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं। तो ये जो तीनों सर्विसेज का आपस में जो कोर वैल्यूज लेके टीम बना के गए थे, कहीं ना कहीं इन सब ने मिलके इस एक्सपीडिशन को सफल बनाया है।
1: तो जैसे इतनी चैलेंजेस थे इस आपाधापी में, आपने क्या अपने परिवार वालों से बात की मेजर प्रोजेक्ट का? मतलब ऐसा भी कुछ मोमेंट आया कि शायद अब याद आ रही है उनकी?
2: हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे बोट पे, एक तो था हमारे पास सैटेलाइट फोन था, एंड प्लस वी हैव समथिंग नोन एज फ्लीट ब्रॉडबैंड जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। बट एक महीने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 GB डेटा होता था, एंड उसमें हमें रिपोर्ट्स भेजनी होती थी, हमारी ऑल ओके रिपोर्ट या कुछ खराब हो गया उसका रिपोर्टिंग होती थी, एंड प्लस हम उस पर वेदर अपडेट लेते थे अपना। एंड फिर बचा हुआ कुछ टाइम हम अपने हर ऑफिसर को 5-5 मिनट या 10-10 मैक्सिमम मिल जाता था घर पे बात करने के लिए। बट ऐसे भी बहुत बार दिन हुए कि नेटवर्क ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, एंड बात नहीं हो पा रही है। तो रहा है, बहुत बार टाइम लगा है ऐसे कि यार घर वाले क्या सोच रहे होंगे, बट फिर उनको खुशी होती थी कि अगर कॉल नहीं आया है, बिकॉज अगर कॉल आया और अगर हमने बोला कि आज ऐसा ऐसा हो गया तो उनको और टेंशन हो जाती थी। तो इट वॉज बेटर फॉर देम कि वी हैव नॉट गिवन देम अ कॉल।
1: तो आपने, वैशाली जी, आपने कभी अपने पेरेंट्स से बात की और बताया कि आज ऐसा हुआ, आपका मन किया मैं बताऊं?
3: नहीं, बिल्कुल भी नहीं। What happens on the boat stays on the boat.
1: तो strong लेडी, मतलब ये है नारी शक्ति आज की नारी है, जो अपने एक्सपीरियंस को, अपने साहस को साथ लेते हुए अकेले लड़ना जानती है और अकेले चलना जानती है। टीम भावना जब हो तो उसके साथ सबको लेकर साथ चलते हैं। मतलब आपका पड़ाव भी था, जैसे पोर्ट कॉल कहते हैं, जिसको 4 देशों में रुका, तो उस दौरान क्या किया गया, कैसा आपको, क्योंकि आप ऐतिहासिक अभियान पर थी, तो उस समय कैसा गर्व की भावना आप में आई?
0: देखिए, पोर्ट ऑफ कॉल जो हमने हॉल्ट्स लिए थे, जैसा हमने आपको अपनी बोट के बारे में बताया कि लिमिटेड स्पेस है और एक्सपीडिशन बहुत लंबा था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बोट के जो रिपेयर, रिप्लेनिशमेंट, राशनिंग एंड रेस्ट एंड रिकूप ऑफ द क्रू, ये चीजों को ध्यान में रख के हमने पोर्ट ऑफ कॉल्स लिए थे। अब वो जो पोर्ट ऑफ कॉल में जब आप जा रहे हैं, देखिए, जैसे हर भारतीय का सपना होता है कि जब आप अपने राष्ट्र ध्वज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें, तो जब हम इन 4 कंट्रीज में गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका, और वहां पे आप अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा प्राउड मोमेंट हमने अपनी लाइफ में फील नहीं किया। जैसे जब हम अर्जेंटीना में गए थे, वहां पे जो उनका नेवल बैंड था, उन्होंने हमारे लिए राष्ट्रगान बजाया था, और हम सब की आंखों में गर्व था और खुशी के आंसू थे कि आज हमने अपने राष्ट्र को दूसरे कंट्री में प्राउड फील कराया है। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि भारत ऑफशोर सेलिंग जैसे इस तरीके के एक्सपीडिशंस में हमारे बहुत ज्यादा कल्चर नहीं है, और फॉरेन कंट्रीज में इसका बहुत कल्चर है। तो आप इंडिया से उनके कंट्री में जा रहे हो, और हमने किया ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज, तो वो जो लोग थे वो हक्के बक्के थे कि इंडिया में विमेन को पूरे दुनिया का चक्कर लगाने भेज दिया। तो वो जो एक स्टेटमेंट होता है ना कि हम अपने कंट्री को एज अ विमेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो उनके देश ने भी नहीं की, वो अमेज थे। तो वो फीलिंग जो होती है कि आई एम अ इंडियन एंड आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, ये एक लाइफ लॉन्ग फीलिंग और एहसास है जो हम पूरी जिंदगी अपने साथ रखेंगे।
1: आपने ये एहसास उस समय फील किया, आप मुझे बता रही है, मतलब आई हैव गूज़बम्प्स कि आप सोचो आपको कितना अच्छा लगा होगा। और जैसे वैशाली जी खुशी के आंसू कह रहे थे, मतलब खुशी के आंसू आए दर्द से और कठिनाई से, चुनौतियों का सामना करते हुए, वो आंसू नहीं
3: उसके।
1: नानी संदेश साहस का, आपने आत्मविश्वास का परिचय दिया इस अभियान में, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो मरीन पोल्यूशन को लेकर, आप बताएं मेजर प्रोजेक्ट का किन बातों का ध्यान रखा?
2: सो मेनली हमारा जो वेस्टेज होता था वाज आप मान लो सैनिटरी वेस्ट वन, एंड मेजरली इट यूज्ड टू बी हमारा फूड या जो भी हम पानी पी रहे हैं। तो हमारे पास प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होती थी, तो हम उसको क्रश करते थे एंड उसको हमारे पास अभी जब हम हर एक पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे तो हमारे पास 4 बड़े बड़े गार्बेज बैग्स भर जाते थे, क्योंकि हम फेंकते नहीं थे वो प्लास्टिक को पानी में। एंड जब हम पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे वहां पे हम डिस्पोज ऑफ करते थे।
1: तो ये बहुत बड़ा संदेश है, मतलब सभी के लिए। जी वैशाली जी, 314 दिन लंबा आपका ये एक्सपीडिशन था, तो उस दौरान ऐसा कुछ मेमोरेबल आपका जो क्षण रहा हो, यादगार क्षण जो आप बताना चाहें?
3: बहुत सारे ऐसे दिन होते थे वेदर खराब है,

0: कभी तबीयत खराब है, कभी कुछ टूट गया है, कभी बादल है, बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, वो लगातार चलता रहता था। तो जो मिजरी है ना, वो इतनी कॉमन हो गई थी कि वो बुरा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन जिस दिन सूरज निकलता था और हवा बिल्कुल एप्ट, जो बोलते हैं ना कि ना कम है ना ज्यादा है, जो एंजॉय करने लायक वो हवा है, वो होती थी। वो मुझे याद है, वो सनसेट, वो हाथ में एक कॉफी और गाना, क्योंकि उस दिन धूप निकली थी तो हमारे पास पावर थी कि हम एक गाना सुन सके। वो एक 5-10 मिनट का जो टाइम था, और बोट बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रही है, वेदर खराब नहीं है, क्रैश नहीं हो रही, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही, वो दिन बहुत ही अच्छा यादगार दिन था। और वो मेरे ख्याल से वो लाइफ लॉन्ग आगे जाएगा।
1: आपका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऐसा कुछ मोमेंट जो यहाँ रहा हो?
2: हम मैम और मैं दोनों साथ में ही थे उस टाइम पे, एंड दिस वॉज वेन वी वर कमिंग टू मुंबई
1: कमिंग टू
2: फ्रॉम केप टाउन। एंड मॉर्निंग आई थिंक 5:30 6 o'clock की बात है, हमें होराइजन पे सनराइज होता हुआ दिख रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे को आवाज़ आती है, बहुत कुछ तो उछल रहा है पानी में, और बहुत ही दूर है ये क्योंकि एकदम शांत है, हवा भी नहीं चल रही थी उस टाइम पे। तो दूर हमने देखा ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉल्फिन्स, एक लाइन से हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ तो उछलता उछलता उछलता हमारे सामने से वो ऐसे निकले। दे आर प्रोबेबली माइग्रेटिंग, क्योंकि इतने सारे थे, हमने कभी इतने सारे देखे ही नहीं है। हम
1: सच अ ब्यूटिफुल
2: ब्यूटिफुल
1: मोमेंट,
2: एक्सपीरियंस।
1: टू आईज। तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि आप आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: मेरे हिसाब से ये कि जिंदगी में सपने देखना बहुत जरूरी होता है और सपने सच भी होते हैं, बस आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
1: वैशाली जी, जो सरकार है वो महिला नेतृत्व विकास पर जोर दे रही है और वो हर फील्ड में दिख रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: लड़के लड़कियां, मैं सबके लिए मेरा एक ही संदेश है, फौज ज्वाइन करनी चाहिए, बी इट आर्मी नेवी और द एयरफोर्स, किसी को भी सर्व करो, यू सर्व द नेशन, यू कम यू एक्सपीरियंस दिस। सो फॉर ऑल द यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां, एवरीवन, दे शुड ज्वाइन द फोर्सेस।
1: जी, आप क्या कहना चाहेंगी मेजर प्राजक्ता, आपके शब्द?
2: आई वुड लाइक टू से कि सक्सेस कम्स विथ हार्डवर्क, परसिवेरेंस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉट हैविंग एन ईगो। दिस इज समथिंग विच माई फादर यूज टू टेल मी, एंड दिस हैज स्टेड विथ मी बिकॉज आई हैव अ लेटर जो उन्होंने मेरे को दिया था, एंड जब मैंने ये एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था तो मैंने वो लेटर लेके गई थी, एंड दैट इज वॉट केप्ट मी गोइंग थ्रू दिस एंटायर।
1: मतलब अच्छा था आप लोगों का एक्सपीडिशन, आप लोगों की गाथा सुनने से निसंदेह सभी को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, उनको भी जो आगे अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। आप तीनों का धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आकाशवाणी से जुड़ी और अपने अनुभव हमसे साझा किए।
4: पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं प्रियंका अरोड़ा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
5: अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट श्रृंखला का भाग 7, पर्सन बिहाइंड द स्टोरी। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है FM 103 पर। रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनिए किशोर कुमार को फिल्म गैम्बलर में। गीत के बोल नीरज के हैं, धुन बनाई है SD वर्मन ने।

गैम्बलर फिल्म में अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। गीत के बोल नीरज के थे, संगीत दिया था SD वर्मन ने। और लीजिए एक बार फिर सुनिए किशोर कुमार को फिल्म समाधि में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है जिसकी धुन बनाई है RD वर्मन ने।

समाधि फिल्म में किशोर कुमार को भी आपने सुना, और लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी व आशा भोसले को फिल्म तीसरी मंजिल में। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, धुन बनाई है आर डी वर्मन ने।

0: तीसरी मंजिल, अभी आपने सुना इस फिल्म में मोहम्मद रफी व आशा भोसले को, और लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी व किशोर कुमार को फिल्म स्वयंवर में। गीत गुलजार का है, धुन बनाई है राजेश रोशन ने। लीजिए सुनिए स्वयंवर फिल्म से ये नगमा।
1: एक महल माँ छम छम करती रहती दुई सहजादी, एक हो

چم چم کرتی رہتی تو شہزادی، ایک ہے تن کی سونے جیسی، دوسری من کی

बिनमाला के हुआ स्वयंवर, बिनमाला के हुआ स्वयंवर, बिनमाला के हुआ स्वयंवर, बिन स्वयंवर की शादी एक वतन की सोने जैसी, तुझ मन की चांदी।

स्वयंवर फिल्म में अभी आपने किशोर कुमार और मोहम्मद रफी को सुना। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मेला से। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत दिया है RD वर्मन ने।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी रिश्ता कागज का। गीत के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है FM 103 पर। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं तलत अजीज की गाई चंद गजलें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं तलत अजीज को। लीजिए सुनिए कतिल शिफाई की लिखी हुई एक और गजल उन्हीं की आवाज में।

अभी आपने सुना गुलाम अली को। गुलाम अली की गाई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है FM 103 पर। रात्रि के 11 बजने को है। अब से बस थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे

सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं